सुप्रभातम। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्स पर, साथ ही एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्स पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 जून सन 2026। सुबह के 5:52 हो चुके हैं। आरंभ होती है आज की हमारी ये प्रसारण सभा।

0: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। खेत खलिहान कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है वार्ता हरी खाद की उपयोगिता।
1: और असंतुलित रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण दिनों दिन मृदा उर्वरता में ह्रास हो रहा है। रासायनिक उर्वरकों के व्यवहार से 16 पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिसकी पौधों को जरूरत होती है। फलस्वरूप पौधे मिट्टी में उपस्थित सारे पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। हरी खादों का यदि प्रयोग किया जाए तो ये समस्या कम हो जाती है। हरी खाद जैविक खाद के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण।
2: किसान भाइयों नमस्कार। नेनुआ एक महत्वपूर्ण सब्जी की फसल है। नेनुआ की खेती संपूर्ण भारत में की जाती है। अपने यहीं भी नेनुआ की खेती दोनों मौसम में की जाती है, एक तो गर्मा मौसम में और बरसात के मौसम में भी इसकी खेती की जाती है। नेनुआ की किस्मों में घिया तुरई प्रमुख है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा यह प्रस्तावित है किस्म है। पूसा चिकनी 45 दिनों में फूलती है। काली तुरई में पूसा नसदार प्रमुख किस्म है, जो 60 दिन में तैयार होती है और पंजाब सदाबहार किस्म भी है। काली तुरई में एक द्विलिंगी किस्म भी है, जिसमें सतपुतिया भी कहा जाता है। इसकी बुआई वर्षा ऋतु में जून जुलाई के मौसम में की जाती है। लाइन से लाइन की दूरी 1.5 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर रखें। अधिक फैलने वाली किस्मों के लिए 4 मीटर की दूरी पर पौधों को लगाना चाहिए। एक जगह पर 2 बीजों की आप बुआई करें। सामान्य रूप से 20 से 25 टन गोबर या कंपोस्ट की खाद खेत तैयार करते समय मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके बाद 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। फास्फोरस की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बोते समय तथा बची हुई नाइट्रोजन की आधी मात्रा बोने के 1 से 1.5 महीने बाद खड़ी फसल के रूप में जड़ों के पास देनी चाहिए। निकाई करके पौधों के पास से खरपतवार हरदम निकालते रहना चाहिए। वर्षा ऋतु में सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन गर्मियों में सिंचाई हर 5वें दिन पर करनी चाहिए। फली की छोटी अवस्था में ही तुड़ाई करते रहना चाहिए, क्योंकि फल जब कड़े हो जाते हैं तो उस समय जो है इनकी गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है और बाज़ार भाव भी आपको कम मिलते हैं। इस तरह से जो आप नेनुआ की खेती करते हैं तो उस पर कुछ कीड़ों के भी आक्रमण करने की संभावना होती है। कीड़ों में रेड पंपकिन बीटल, एपिलेकना बीटल, माहू, कैटरपिलर और स्टिक बग्स प्रमुख हैं। रेड पंपकिन बीटल जो कीड़ा होता है उसके प्रौढ़ पत्तियों को खाते हैं, अनियमित सुराग उसमें बना देते हैं। लार्वे भूमि में पड़े रहते हैं जो लताओं और फलों को प्रभावित करते हैं, इससे फल जो हैं सूख जाते हैं। इसके लिए आप कीटनाशक दवा का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें डिप्टेरिक्स दवा है, इसका छिड़काव आप कर सकते हैं। और पंपकिन फ्रूट फ्लाई जो है, इस कीड़े की तितलियां फलों में सुराख कर देती हैं, जिससे उनमें सड़न हो जाती है। इसके लिए भी डिप्टेरिक्स दवा का आप प्रयोग कर सकते हैं। माहू कीड़े से आप भलीभांति परिचित हैं। माहू कीड़े रस चूसते हैं, लेकिन ग्रीष्मकालीन फसल में इनका ज़्यादा आक्रमण होता है, वर्षाकालीन फसल में कम आक्रमण होता है। कैटरपिलर पत्तियों को खा जाते हैं और पत्तियों की नसों को खा करके जालीनुमा बनावट छोड़ जाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए भी कीटनाशक दवाओं का आप प्रयोग करें। पाउडरी मिल्ड्यू सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है।

0: इस बीमारी को रोकने के लिए कैराथेन दवा का या प्रयोग करें या सल्फर चूर्ण का भुरकाव भी कर सकते हैं। डाउनी मिल्ड्यू रोग में पत्तियों की निचली सतह पर धब्बे पड़ जाते हैं और ये ऊपरी सतह पर भी धब्बे होते हैं, पीले रंग के बन जाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए आप बोर्डेक्स मिश्रण का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप
1: नेनुआ की खेती खेत खलिहान में अभी किसान भाई श्रीनिवास सहाय से ये जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
3: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
2: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर, साथ ही एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्स पर। प्रातः 6:05 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए आज का चिंतन मनन।
4: कहा गया है विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, यानी विद्या सभी धनों में बड़ा धन है। विद्या की महत्ता जितनी ही बताई जाए कम होगी। आज के समय में शिक्षा का महत्व तो और भी अधिक हो गया है। सारी दुनिया सिमट कर एक गांव की तरह हो गई है और इसमें ज्ञान का महत्व बहुत ही बढ़ गया है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य को अंधों के बराबर माना जाता है। विद्या सबसे ऊपर है। विद्या मनुष्य के गुण, कर्म, स्वभाव और व्यक्तित्व का विकास करती है। प्रतिभा को समुन्नत, सुसंस्कृत बनाती है। कोरी शिक्षा तो भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचरण के द्वारा मनुष्य को और खतरनाक बना देती है। आज की शिक्षा में हो क्या रहा है? व्यक्तित्व निखारने वाले, व्यवहारिक सभ्यता के सांचे में ढालने वाले और प्रतिभा को प्रखर बनाने वाले लक्ष्यों का समावेश नहीं हो पा रहा है। लोग बहुज्ञ हो जाते हैं लेकिन अहम मान्यता से संबंधित दुर्गुण उनके भीतर चले आते हैं। तो ऐसे स्वभाव वाले लोग हर किसी का हित करेंगे, ऐसा कभी सोचा जा सकता है? आज की जो शिक्षा है उसमें विद्या के समुचित समावेश की आवश्यकता है। अगर हम ध्यान दें तो हम पाएंगे कि हमारे देश में बहुत सारे कॉलेज खुले हैं, तकनीकी गैर तकनीकी दोनों ही क्षेत्रों में। भारत की शिक्षा का डंका बज रहा है। हम प्रबंधक बना रहे हैं, इंजीनियरिंग के ज्ञानी तैयार कर रहे हैं, आईटी स्नातक बना रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें हम जीवन मूल्य दे पा रहे हैं जिनसे वे स्वकेंद्रित दृष्टि से अलग हटकर राष्ट्रोन्मुखी तनाव युक्त जीवन से हटकर आध्यात्मिक बोधियों से भरा मस्ती भरा जीवन जी सके? शिक्षा के इतने संसाधनों के बावजूद बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। आज के विश्वविद्यालय राजनीति के केंद्र हो गए हैं। मनुष्य की शिक्षा सभ्यता और सुसंस्कारिता सिखाए तभी वो सच्ची शिक्षा होगी। सभ्यता शरीर को और सुसंस्कारिता मन को प्रभावित करती है। ये पक्ष आज उपेक्षित हो रहा है। पढ़ना, करना और सोचना एक छोटी परिधि में सीमाबद्ध है। आत्मा कोई चीज है, इस दिशा में सोच कौन रहा है? जबकि सर्वाधिक जरूरत इसी की है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान यानी हम अपने आत्मस्वरूप में जैसे हैं उसमें और अच्छे और श्रेष्ठ हो सके, इसकी ज़रूरत पर बल नहीं दे पा रहे हैं। आज की शिक्षा में हमें विद्या के तत्वों को शामिल करने की ज़रूरत है। कहने का आशय यह है, भारत का एक औसत नागरिक, एक आम नागरिक बचपन से ही ऐसा कुछ सीखे जिससे उसमें नैतिक मूल्य, सुसंस्कार, सादगी, सभ्यता, राष्ट्रभक्ति आदि के गुण विकसित होकर उभर सकें। धन और ऐश्वर्य जीवन के लिए जरूरी हैं। आज के युग में उनका भी महत्व कम करके आका नहीं जा सकता। बिना धन के हम एक कदम चलने की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन क्या शिक्षा का अंतिम उद्देश्य

0: यही होगा कि हम सिर्फ धन कमाएं। आज इस दिशा में विचार करने की आवश्यकता है और जितने भी मनीषी विचारक चिंतक हैं उन सब लोगों को सोचकर कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे शिक्षा में विद्या के गुणों का समावेश किया जा सके। आने वाले समय में विद्या के और भी महत्व को देखते हुए हमें इस दिशा में चिंतन करने की जरूरत है।
1: ये था आज का चिंतन मनन। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। वंदना में निवेदित हैं कुछ भक्ति रचनाएं। आरंभ में ये देश वंदना।

सुरम्य वादियाँ, सुरम्य घाटियाँ, कल कल बहती नदियाँ हैं। ऊँचे ऊँचे पर्वत, ऊँचे ऊँचे धाम, माँ भारती तेरी धरा को है शत शत प्रणाम।

श्रोताओं, हिंदू जीवन दर्शन को चार भागों में विभक्त किया गया है। ब्रह्मचर्य श्रमम समाप्य गृह भवेत, गृह भूत्वा वनी भवेत, वनी भूत्वा प्रवर्जेत। अर्थात ब्रह्मचर्य श्रम पूरा करके लोग गृहस्थ बनते हैं, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आश्रम आता है और वानप्रस्थ आश्रम के बाद संन्यासाश्रम की का प्रारंभ होता है। अर्थात जीवन से मुक्त होकर लोग अपने कर्मों का लेखा जोखा करके, अच्छे कार्य को करके प्रभु के शरणों में, प्रभु के चरणों में जाने के लिए उत्प्रेरित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जीवन दर्शन चार भागों में बांटा गया है। प्रथम अवस्था है जन्म से लेकर 25 वर्ष तक की अवस्था, जिसमें लोगों को स्वाध्याय की ओर प्रेरित किया गया है, जिसमें विद्या अध्ययन और अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़े होने के सामर्थ्य को बनाने की बात कही गई है। यानी ये पूरा जीवन काल 25 वर्ष की अवस्था सिर्फ और सिर्फ स्वाध्याय के लिए अर्पित है। पुनः 25 से 50 वर्ष की अवस्था को गार्हस्थ जीवन कहा गया है, जिसमें लोग अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हैं और अपने दैनानुदिन जीवन का उपभोग करते हैं और अपने समस्त जनों के प्रति जो कर्तव्य होता है उसका पालन करते हैं। उसके बाद की अवस्था वानप्रस्थ अवस्था होती है, जो सबसे कठिन होती है। धीरे धीरे गार्हस्थ जीवन को छोड़ते हुए लोग अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए ईश्वर के प्रति समर्पित होते जाते हैं। शांति शतकम में भी कहा गया है, वनेषु दोषाः प्रभवन्ति रागिणां, गृहेषु पञ्चेन्द्रियाः निगृहस्तपः अकुत्सुते, वर्तमनि यः प्रवर्तते निवृत्तिरागस्य गृहं तपोवनम्। अर्थात जिसमें आसक्ति का भाव होता है उसमें जंगलों में भी दोष उत्पन्न हो जाता है। अतः घर में रहकर भी पांचों इंद्रियों, आँख, नाक, जिह्वा, कान और त्वचा पर नियंत्रण ही तपस्या है। जो आनंद के रास्ते पर चलता है उस राग द्वेष रहित व्यक्ति के लिए घर ही तपोवन के समान हो जाता है। अर्थात अपने कर्तव्यों को करते हुए भी इंसान अगर चाहे तो प्रभु के चिंतन, प्रभु के स्मरण से गृहस्थ जीवन को गुजारते हुए भी प्रभु को स्मरण कर सकता है। तो इस जीवन की कठिनता बहुत अधिक है, इसमें कर्तव्यों को भी करना है और ईश्वर के प्रति भी उन्मुख हो जाना है।

जी हाँ साथियों, गार्हस्थ जीवन से ऊपर जाने के बाद ही इंसान को अपने जीवन का सार समझ में आने लगता है। इस जीवन में अधिकार के ऊपर कर्तव्य का भाव समाहित हो जाता है। धीरे धीरे तितिक्षा का भाव उत्पन्न होने लगता है। शरीर की नश्वरता का भाव समझ में आने लगता है। तब प्रभु की सत्ता के प्रति अधिक अनुराग उत्पन्न हो जाता है।

0: सारी प्रतिष्ठा, सारी धन संपदा, सब चीज़ों के प्रति एक तरह से इंसान विमुख होने लगता है और ईश्वर के प्रति जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, ईश्वर के प्रति जो भक्ति भाव उत्पन्न होता है, जो प्रेम उत्पन्न होता है, वो सारी धन संपदा, सारी प्रतिष्ठा के ऊपर आ जाती है और लोग अपने आप को धन्य समझते हैं कि उन्होंने अनमोल रतन पा लिया।
1: तत्सत का अर्थ है हरिओम ही सच्चा है।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। वंदना में आज आपने जिन कलाकारों को सुना हुए थे, ओम व्यास, अनुराधा पोडवाल और साथी, प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। स्वास्थ्य चर्चा के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं राजेश प्रसाद यादव की वार्ता तनाव और योग।
1: तनाव किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, आज पूरी दुनिया में किसी न किसी रूप में सभी लोग इससे पीड़ित हैं। इस सदी का सबसे गंभीर और जानलेवा रोगों का कारण है मानसिक तनाव, जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पार्किंसन, अनिद्रा, रक्तचाप इत्यादि। तनाव मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। जब शरीर में तीनों प्रकार के तनाव संचित होने लगते हैं, तब ये प्रारंभ में छोटे छोटे रोगों को जन्म देते हैं, जैसे कब्ज और वायु की शिकायत, समय पर मल का निष्कासन नहीं होना इत्यादि। पाचन तंत्र की ये स्थिति जब बराबर बनी रहने लगती है, तब यही स्थिति आगे चलकर दूसरे गंभीर रोगों में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर इस बात को हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि तनाव का सीधा प्रभाव सर्वप्रथम हमारे पेट और पाचन तंत्र पर ही पड़ता है, क्योंकि पेट और मन दोनों के बीच एक घना संबंध है, दोनों एक दूसरे से प्रभावित होता है। यदि कोई तनावजनित विचार आपके मन में चल रहा है और उसका कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तब आपकी ये स्थिति क्रमशः भूख, प्यास, मल निष्कासन आदि पर दिखाई पड़ता है। एक दूसरा उदाहरण ले, मान लीजिए कि खान पान में अनियमितता या किसी आकस्मिक कारणों से सुबह आपको शौच नहीं हो पाता है, तब पूरा दिन आपका मन बोझिल रहेगा, किसी काम में आपको मन नहीं लगेगा। आधुनिक मनोचिकित्सा विज्ञान में रोगों के कारणों को समझने के लिए मनोशारीरिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इस सिद्धांत का ये मानना है कि मानसिक तनाव, दीर्घकालिक दुश्चिंता, अवसाद आदि मनोरोगों के कारण अनेक गंभीर शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं, इसे मनोशारीरिक रोग कहते हैं। उदाहरण के लिए दमा, मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, एलर्जिकल विकृति, पेप्टिक अल्सर, लंबी अवधि तक रहने वाला कब्ज इत्यादि। इन सभी रोगों के संदर्भ में इसका सबसे दुखद पहलू यह है कि ये रोग केवल दवाई से पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता है, अर्थात दवाई आपको जीवन भर लेते रहना होगा। इन रोगों के लिए अब तक जो औषधि इजाद की गई है, वह केवल लक्षणों को दबाए रखने के लिए है, रोगों को मिटाने के लिए नहीं। ये सभी तनावजनित रोग हैं, जिनकी जड़ें अवचेतन मन में होता है और लक्षण शरीर में। पारंपरिक औषधि का प्रभाव केवल शरीर तक ही पहुंच पाता है, मन तक नहीं। आज दुनिया में अस्थमा, मधुमेह, रक्तचाप, हृदय रोग इत्यादि के कारण लाखों लोगों की असामयिक मौत हो रही है। जब कोई रोग मानसिक तनाव के कारण विकसित होता है, उसे मनोशारीरिक रोग कहते हैं, यह पूरी तरह अस्पष्ट है। इसलिए इन रोगों का अस्थायी उपचार या चिकित्सा का दृष्टिकोण भी मनोशारीरिक होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से वैकल्पिक योग चिकित्सा विधि एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, क्योंकि किसी भी प्रकार के रोगों की चिकित्सा के लिए योग में जो नियम निरूपित किया गया है, वह शारीरिक और मानसिक दोनों पक्षों को ध्यान में रख कर योग की विधि अकेले भी कारगर है, परंतु पारंपरिक चिकित्सा के साथ यदि योग निद्रा, मेडिटेशन और प्राणायाम का उपयोग किया जाए, तो तनावजनित रोगों के उपचार के लिए यह विधि और भी सशक्त और प्रभावी सिद्ध होगा। तनाव और जीवन के बीच अटूट संबंध है, जहाँ भी जीवन है वहाँ तनाव है, अतः इससे बच पाना नामुमकिन है। तनाव से लड़ने के लिए हमें अतिरिक्त शक्ति चाहिए, ये शक्ति हमें केवल योग साधना के नियमित अभ्यास से प्राप्त हो सकता है। योग में अनेक ऐसी विधाएं प्रचलित है जो तनाव जनित रोगों के उपचार और तनाव प्रबंधन के लिए विशेष उपयोगी है, जैसे अजपाजप ध्यान, चिदाकाश धारणा, योग निद्रा इत्यादि। योग निद्रा अकेले अनेक मनोशारीरिक रोगों की चिकित्सा में एक कारगर विधि है। योग निद्रा की विधि आज पूरी दुनिया में चिकित्सा क्षेत्र में शोध और अध्ययन का विषय बना हुआ है। इस दिशा में इसके जो परिणाम आए हैं, वह अत्यंत चौंकाने वाला है। यह विधि व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर संचित तनाव और दमित विचारों तथा भावनाओं से पूरी तरह मुक्त कर देता है। सभी सामाजिक संस्थाओं और चिकित्सा शास्त्रियों से अपील है कि जन कल्याण के लिए इस विधा को आजमा कर देखें तथा इसे सर्वसुलभ और जन सामान्य लोगों तक लाने के लिए इसे अधिक से अधिक व्यावहारिक बनाया जाए।
0: तनाव और योग। इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे राजेश प्रसाद यादव की वार्ता। इसके साथ ही स्वास्थ्य चर्चा का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की अगली कड़ी। मुख्य गायन स्वर है रविंद्र साठे, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की।

शूर्पणखा से खर दूषण समेत राक्षसी सेना के विध्वंस का वर्णन सुन रावण के अंग प्रत्यंग जल उठे। बालक दिखने वाले दशरथ पुत्रों की वीरता और उनके साथ एक अत्यंत सुंदर स्त्री के होने का समाचार जान रावण सोच में पड़ जाता है। वो जानता है कि देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, किसी योनि में कोई ऐसा प्राणी नहीं जो उसके सेवकों का भी सामना कर सके। यदि पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए स्वयं भगवान ने ही अवतार लिया है तो वो हठपूर्वक उनसे वैर मोल लेगा और स्वयं प्रभु के वाणों से मारा जाकर मुक्ति प्राप्त करेगा। ऐसा निश्चय कर वो रथ पर अकेला सवार होकर वहां चला जहां सागर तट पर मारीच रहता था।

आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान की अगली कड़ी। गायक कलाकार थे रविंद्र साठे, कविता कृष्णमूर्ति और साथ ही संगीत रचनाकार थे सतीश भाटिया। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया।

कार्यक्रम विवरण। इसमें सुनिए आज यानी 16 जून दिन मंगलवार को हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। दोपहर बाद 3:25 से शाम के 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय सेवा का प्रसारण। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रातः 7 बजे रोज की तरह पेश होगा मॉर्निंग इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम में 7:20 पर स्मृति संवाद के चंक में आज आप सुनेंगे सेवानिवृत्त शिक्षक श्री योगेश्वर झा से ली गई भेंट वार्ता। प्रातः 9:30 पर पेश होगा हमारा हफ्तावार उर्दू कार्यक्रम बज़्मे उर्दू। इसमें आज आप सुनेंगे मकाला जदीद अफसाने के फितरी अनासिर, मकाला निगार होंगी फरजाना खातून। कलाम शायर में आज आप सुनेंगे मोहम्मद आफाक अहमद को। एक अफसाना सुनिएगा कोई अपना सा, अफसाना निगार होंगे मोहम्मद रफ़ी हैदर। इसके अलावा एक इंशाइयाँ समात फरमाएंगे आप गधा हूँ मैं, इंशाइयाँ निगार होंगे मोहम्मद कमर आलम। दिन के 12 बजे बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम नारी लोक। 1:30 पर आज आप सुनेंगे रेडियो धारावाहिक गंगा के सुरताल की 5वीं कड़ी। लेखक होंगे रमेश रमन, प्रस्तुतकर्ता दासमती चत्तार और अशोक शरण। संध्या 5 बजे युवा साथी अपना प्रिय कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी। शाम 6 बजे ग्राम जगत खेती गृहस्थी का प्रसारण किया जाएगा।

0: संध्या 7:10 पर साप्ताहिक हमारा पर्यावरण कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे विनय कुमार सिंह की वार्ता, जैविक खेती की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य में इसकी संभावनाएं। रात्रि 9:30 पर नाटक प्रसारित किया जाएगा फैसला। लेखक होंगे श्री प्रकाश सूर्यवंशी, प्रस्तुतकर्ता होंगे संतोष अवस्थी निर्मल। प्रातः 7:00 गुड मॉर्निंग विक्रमशिला के सुगम संगीत के चंक रसरंग के आज के कलाकार होंगे अभय कुमार सुमन। दिन के 3:00 तरंग में चंद गजलें पेश होंगी, फणकार होंगे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। संध्या 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी की आज की कलाकार होंगी शर्मिला गुप्ता। देशभक्ति गीत का प्रसारण होता है प्रतिदिन हमारे केंद्र से दोपहर बाद 3:20 पर। प्रातः 10:30 पर लोकगीत की कलाकार होंगी संगीता कुमारी। दिन के 1:00 और 1:20 पर लोकरंग में आज आप सुनेंगे नूतन कुमारी को। रात्रि 10:00 गूंजे बिहार का प्रसारण किया जाएगा। और साथियों, फिल्मी गाने लेकर हम आज आपके लिए हाजिर होंगे प्रातः 7:30 पर और संध्या 5:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। प्रातः 9:06 पर पेशा खिदमत होगा 90 नए पुराने। प्रातः 11:00 लुत्फ उठाएं नए तरानों का, विशेष फिल्मी गानों का गुलदस्ता सजेगा रोज की तरह 11:30 पर। दिन के 2:30 आनंद लीजिएगा चित्रपट से कार्यक्रम का। रात्रि 8:00 रोज की तरह अपनी खुशबू लेकर आएगी रजनीगंधा। और रात 10:30 पर आप सुनेंगे भाव गीत कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। 6:55 होने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: भारत स्लोवाकिया देशयोः सम्बन्धः समग्र सहभागित्वेन संवर्धितः अस्ति। ब्रातिस्लावा नगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य स्लोवाकिया समकक्षीयेण रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह वार्तालापस्यानन्तरं श्रम, प्रवास, डिजिटल, तंत्रज्ञान, रक्षादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं उभौ पक्षौ समग्र 11 सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। पश्चात् संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् सम्बन्धानां उन्नतिः सह विश्वासानां प्राथमिकतानां भविष्यस्य च प्रतीकः अस्ति। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः यूरोपीय राष्ट्रस्य प्रथमायां यात्रायां श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ देशौ रक्षाक्षेत्रे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ।
2: AI का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिना पीटर पेलेग्रेनी इत्यनेन स्लोवाकिया देशस्य सर्वोच्चं प्रशासकीय सम्मानं द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास इति प्रधानमन्त्रिणं श्रीमोदिनं प्रदत्तम्। श्रीमोदी स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपत्ये सर्वकाराय नागरिकेभ्यश्च विशिष्ट सम्मानाय कृतज्ञतां प्रकटितवान्। द्वयोः राष्ट्रयोः यात्रायाः तृतीये चरणे G7 शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अद्य फ्रांस देशस्य एवियन नगरं सम्प्राप्ष्यति। तस्य आगमनावधौ फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन औपचारिक रूपेण तस्य स्वागतं क्रियते। 50वें G7 शिखर सम्मेलनं ह्यः एवियन नगरे समारब्धम्, यत्र विश्वस्य प्रमुखानां अर्थव्यवस्थानां नेतारः प्रमुखेषु वैश्विक समाह्वानेषु विचार विनिमयं कुर्वन्ति। राष्ट्रपतिः मैक्रों वर्यः प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय समाह्वानान् निवारणाय संयुक्तरूपेण कार्याचरणस्य विषये कार्यरात्रिभोजस्य आयोजनम् अकरोत्। ततः पूर्वं सः अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प, यूके देशस्य प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर इत्यादिभिः नेतृभिः सह G7 देशानां नेतृणाम् औपचारिकरूपेण स्वागतं विहितवान्। यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला फोन डेर लेयेन, यूरोपीय परिषदः अध्यक्षः एंटोनियो कोस्टा च शिखर सम्मेलने भागं भजन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः ह्यः फ्रांस देशे मोनाको देशस्य राज्यमन्त्रिणा क्रिस्टोफ मिरमेंड, विदेश कार्य सहकार मन्त्रिणा इजाबेल बेरो आमादेई, वित्त अर्थव्यवस्था मन्त्रिणा फेडरिक कोटालोर्डा इत्येतैः सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीगोयलः अवदत् यत् द्वैपाक्षिकव्यापारं सुदृढं कर्तुं नूतनान् निवेशावसरान् अन्वेष्टुं भारत मोनाको देशयोः मध्ये उपवेशनम् आर्थिक सहकारं सुदृढं कर्तुं च केन्द्रितम् आसीत्। संघलोक सेवा आयोगेन UPSC इत्यनेन अस्य वर्षस्य लोक सेवा प्राथमिक परीक्षायाः परिणामाः घोषिताः। UPSC ह्यः सूचितवान् यत् अस्मिन् वर्षे 1,000+ रिक्तस्थानेषु लोकसेवा मुख्यपरीक्षायाः कृते आहत्य 13,000+ अभ्यर्थिनः चिताः सन्ति। परीक्षार्थिनः UPSC इत्यस्य आधिकारिक वेबफलके upsc.gov.in इत्यत्र प्राथमिक परीक्षाफलं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इति वार्ताः।
0: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर, साथ ही FM बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्स पर। प्रातः के ठीक 7 बजे हैं। पेश है मॉर्निंग इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने दोस्तों, इष्ट मित्रों, परिजनों के साथ बहुत ही आनंद और सुकून का समय गुजार रहे होंगे। इस प्रोग्राम रूपी पिटारी को लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त संगीता। दोस्तों, रोज़ की तरह इस कार्यक्रम में आपके लिए हैं ढेर सारे इंटरटेनमेंट और ढेर सारी सूचनाएं। रोज़ की तरह हैं अखबारों के पन्नों से हम आप तक न्यूज़ पहुंचाएंगे। दोस्तों, रेल सूचना आप सुनेंगे, मौसम की जानकारियां आपको दी जाएगी, मौसम का मिजाज आज कैसा है आप देखेंगे, साथ ही रेलगाड़ियों की रफ्तार भी हम जानेंगे। साथ ही आज मंगलवार है, आज हम किसी अवकाश प्राप्त व्यक्ति से आपको रूबरू कराते हैं और साथ ही साथ हम फिल्मी गानों का भी आनंद लेते हैं। साथ ही साथ आपके साथ हम और आप चलेंगे सुकून भरी सुबह में सुगम संगीत के साथ। लेकिन दोस्तों, इस कार्यक्रम का आरंभ करते हैं एक अच्छे से सुविचार से। दोस्तों, कबीरदास ने कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। जी हाँ दोस्तों, कितनी अच्छी पंक्ति है ये। हम अपनी प्रशंसा सुनने के आदि होते हैं, अपनी आलोचना से हम दूर भागते हैं। कोई अगर हमारी आलोचना कर दे तो हम जैसे वो हमारा दुश्मन हो जाता है। लेकिन ये आलोचना हमें अपने अंदर सुधार करने को प्रेरित करता है, ये हम भूल जाते हैं। मनुष्य का सबसे कठिन संघर्ष बाहरी संसार के बजाय स्वयं के साथ होता है। जी हाँ दोस्तों, बाहरी संघर्ष तो समय के साथ समाप्त हो जाता है, किंतु हमारे भीतर का द्वंद्व प्रायः जीवन पर्यंत चलते रहता है। हमारे भीतर ऐसे कुछ सत्य छिपे होते हैं जिनसे सामना करने का साहस हम में नहीं होता। हम में से अधिकांश लोग अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालकर जीना आसान समझते हैं, क्योंकि अपने भीतर झांकना किसी गहरे अंधेरे कुएं में उतरने जैसा होता है। वहां हम सबको अपनी परछाइयों से डर लगने लगता है, जबकि जीवन का वास्तविक परिवर्तन वहीं से प्रारंभ होता है जब हम अपने भीतर की कठोर सच्चाइयों को स्वीकार करने का साहस जुटा पाते हैं। और आलोचक यही काम करता है कि हम ठहर कर अपने अंदर झांकें, क्या सही है क्या गलत है। अगर हमारे व्यक्तित्व में कृतित्व में कहीं कोई कमी है तो हमें बिना विलंब किए उसे दूर करना चाहिए, न कि आलोचक से मुंह मोड़ना चाहिए और उसके प्रति अपने मन में गुस्सा और द्वेष रखना चाहिए। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ और इसी संकल्प के साथ कि दूसरों की बुराइयां देखने से बेहतर है खुद की बुराई को देखना और उन्हें दूर करना, इसी संकल्प के साथ शुरू करते हैं आज के इस इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम को, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। तो दोस्तों, आरंभ करते हैं सुगम संगीत के इस सुमधुर भजन के साथ।

0: जी दोस्तों, सुबह के समय में अगर हमारा प्रातःकाल प्रारंभ हो भजन के साथ तो कितना आनंद आता है। ये परंपरा चली आ रही है और ये परंपरा जीवित रहे, यही कामना है। और दोस्तों, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे, लेते हैं छोटा सा अंतराल, आप कहीं मत जाइएगा, होगी अभी ढेर सारी बातें आपके साथ।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001 4242 पर।
2: 8700001 4242।
3: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
4: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexus showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.

0: जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही सुगम संगीत का ये चंक अब समापन की ओर है। और साथियों, आज मंगलवार है और आज के दिन 7:20 पर हम आपके लिए लेकर आते हैं स्मृति संवाद। इसमें हम आपसे रूबरू कराते हैं अवकाश प्राप्त किसी व्यक्तित्व से। तो आज इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं भेंट वार्ता सेवानिवृत्त शिक्षक श्री योगेश्वर झा से। तो आइए सुनते हैं उनके जीवन के कुछ अनमोल अनुभव।
1: आपका शुभ नाम?
2: योगेश्वर झा।
1: क्या करते हैं इस समय आप?
2: अभी हम जो है सेवानिवृत्त होकर के घर में बैठे रहते हैं।
1: जी, कब आपने अवकाश ग्रहण किया?
2: अवकाश ग्रहण किए थे 1924 में कि 25 में, ऐसा ही कुछ ख्याल नहीं है।
1: नहीं, सेवा से कब अवकाश लिए? रिटायर कब हुए?
2: ओ,

0: बारह ना है
1: जी।
0: हाँ, हम जो है सो तीन रिटायर किए।
1: किस सेवा में थे आप?
0: शिक्षक
1: जी। किस स्कूल में?
0: कन्या मध्य विद्यालय अंबरपुर
1: जी। तो आपने इतने दिनों तक जो सेवा की, आपने जैसा कहा आपका 1924-25 में जन्म हुआ था लगभग, तो आपकी उम्र भी बहुत हो गई है अभी
0: 80 बरस
1: जी। तो आप अपने जीवन में क्या क्या अनुभव किए?
0: जीवन में तो अनुभव जो है कि कर रहे हैं, हम अभी भी अनुभव कर रहे हैं
1: जी जी,
0: कि हमारा देश जो है बड़ा विस्तृत है
1: जी,
0: और यहाँ जो है सो लोग हमारे यहाँ अपने समाज की बात में कर रहा हूँ
1: जी जी,
0: यहाँ लोग बड़ा स्वस्थ ढंग से रहते हैं और सेवा में जो है हमेशा तत्पर रहते हैं, सेवा के लिए बहुत तैयार रहते हैं
1: जी। तो आपने अपने नौकरी के दिनों में क्या अनुभव किया? आप कब नौकरी में आए थे?
0: नौकरी में जो है सो 24-25 में आए होंगे
1: जी जी जी,
0: जी।
1: तो क्या अनुभव किया आपने अपने नौकरी के जीवन में? बच्चों को पढ़ाने में कैसा लगा?
0: बच्चों को मैंने बहुत सुंदर ढंग से पढ़ाया और अपने भी बच्चे को जो है बहुत अच्छी शिक्षा दिए हैं
1: जी जी,
0: सबको ग्रेजुएशन करा दिए हैं।
1: अच्छा,
0: तीन लड़का है, सबको ग्रेजुएशन कराए और अभी भी हम जो बैठे रहते हैं चुपचाप
1: जी,
0: बस दूसरे के बच्चे को बुला करके फ्री शिक्षा देते हैं।
1: कौन कौन विषय पढ़ाते हैं आप?
0: संस्कृत पढ़ाते हैं हुजूर
1: जी,
0: और विज्ञान पढ़ाते हैं
1: जी,
0: गणित पढ़ाते हैं, भूगोल पढ़ाते हैं
1: जी,
0: ये सबका शिक्षा देते हैं बच्चे को
1: जी। तो आप बहुत दिन पहले, आज से जब 25-30 साल पहले बच्चों को पढ़ाते थे और अब पढ़ाते हैं, तो बच्चों में क्या फर्क आया तब से?
0: बच्चों में फर्क तो अभी जो है सो बच्चे जो हैं बहुत जिज्ञासु ढंग से पढ़ रहे हैं पहले के बनिस्बत
1: जी। और पढ़ाई की गुणवत्ता कैसी?
0: अच्छा है
1: जी,
0: बहुत अच्छा
1: जी।
0: हम जो है हृदय रोगी विशेष हृदय रोगी के आदमी हो गए हैं
1: जी जी,
0: लेकिन फिर भी कार्य करने में हम कभी बैठते नहीं हैं और फ्री शिक्षा।
1: अच्छा,
0: सफाई भोरे उठ करके सड़क की सफाई, बच्चों को सही शिक्षा देना, बच्चों को बोलने का ढंग बताना, बैठने का ढंग बताना, ये मेरा परम कर्तव्य है।
1: तो इस स्कूल से जहाँ पढ़ाते थे बच्चियों को, तो वहाँ से बहुत सारी बच्चियाँ बड़े बड़े पदों पे भी गई होंगी,
0: बड़ी बड़ी,
1: कुछ का नाम याद है आपको?
0: कुछ का नाम तो याद लड़की का नहीं, लड़के का है
1: जी जी।
0: इंजीनियर में गया है पीयूष कुमार।
1: अच्छा,
0: डॉक्टर में गया है प्रकाश गाय अमरपुर का, अशोक गाय, सब MBBS डॉक्टर है, 55 बरस पढ़ाए।
1: अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपको कैसा लगता है आप जब उनको देखते हैं कि वो एक अच्छी सेवा में है, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे पेशे में है, तो आपको कैसा लगता है?
0: अच्छा लगता है, बहुत अच्छा।
1: अच्छा, शिक्षकों के प्रति जो सम्मान की भावना पहले थी समाज में, अब क्या उसमें कोई कमी आई है कि बढ़ी?
0: कोई कमी नहीं, अच्छा और ढंग से बढ़ी है
1: जी। तो आप आज की युवा पीढ़ी या जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनको क्या सलाह देंगे?
0: सलाह तो यही दे रहे हैं कि सही हमेशा सत्य बोलने का प्रयास करो, बड़ों की आदर करो
1: जी,
0: बड़ों के सामने कुर्सी पर मत बैठो
1: जी,
0: इत्यादि सब सलाह जो है सो देते रहते हैं।
1: और एक बात और कहना चाहें कि आप इतनी उम्र के हैं और फिर भी आप स्वस्थ हैं, तो इसका राज क्या है?
0: इसका राज कि हम बड़ा नियमित भोजन करते हैं, अभी जैसे हमको कहा ना
1: जी, जी,
0: के लिए इनकार कर गए
1: जी,
0: नियमित भोजन, नियमित समय पर भोरे उठ करके टहलना, सफाई करना
1: जी,
0: पूजा डेली करके भोजन करना।
1: अच्छा,
0: ये सब मेरा परम कर्तव्य है।
1: तो आपको पहले जो वेतन मिलता था बहुत पहले शिक्षक को, और अब जो मिलता है उसमें तो बहुत फर्क आ गया है।
0: बहुत फर्क आ गया है, 40% पर बहाल थे
1: जी। तो उसमें कैसे काम चलता था?
0: काम मेरा गृहस्थी से चलता था हुजूर
1: जी,
0: खेती है 5 बीघा, उसमें पैदावार यहाँ अच्छा है
1: जी,
0: गन्ना उपजाते हैं, धान उपजाते हैं, गेहूँ उपजाते हैं, बूट उपजाते हैं, इत्यादि चिकना सब अनाज उपजा करके अपना भर पोषण कर लेते हैं।
1: तो अभी भी आप खेती करते हैं?
0: जी हाँ।
1: और आपके बच्चे लोग खेती में सहयोग करते हैं?
0: बच्चे लोग तो जो है सो इधर उधर नौकरी में चले गए हैं
1: जी,
0: और जो बच्चा हमारे नज़दीक है वो खेती में सहयोग करता है।
1: तो अभी खेती करने में पहले जो आपको सुविधा थी और अब है, तो उसमें क्या फर्क महसूस?
0: उसमें फर्क अभी खर्चा कुछ ज्यादा हो रहा है हुजूर, किराया अधिक, मजदूरों की मजदूरी बहुत ज्यादा लग रहा है और फर्टिलाइजर का जो है भाव बहुत अधिक उठा रहा है, उसमें थोड़ा मजबूर हो जाते हैं फर्टिलाइजर देने में, कंपोस्ट उतना नहीं हो पाता है।
1: अच्छा, तो आजकल खेती के बारे में कहा जा रहा है कि जैविक खेती की जाए, तो इससे कहाँ तक आप सहमत हैं? जो कंपोस्ट का प्रयोग किया जाए, वो बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया जाए?
0: इस सब में तो है, जैविक प्रयोग करते हैं।
1: अच्छा, बर्मी कंपोस्ट भी डालते हैं खेत?
0: ना, बर्मी कंपोस्ट नहीं डालते, जैविक देते हैं और ये जो है सो यूरिया देते हैं, आपका डीएपी का प्रयोग करते हैं 20 कट्ठे का बीघा,
1: तो वो सब करके आप उपज अच्छी
0: पा लेते हैं।
1: तो मुख्य रूप से आप गन्ना की खेती करते हैं, इस इलाके में गन्ना का मिल सब है बनाने का?
0: बहुत मिल है यहाँ, कम से कम 25-30 मिल है।
1: अच्छा, तो चीनी भी बनती है इधर?
0: चीनी यहाँ नहीं बनती है
1: जी,
0: यहाँ सिर्फ गुड़ तैयार होता है।
1: अच्छा, तो गन्ना का जो मूल्य देते हैं मिल वाले लोग, उनसे आप संतुष्ट रहते हैं?
0: संतुष्ट तो समय के अनुसार नहीं है
1: जी,
0: अभी मात्र 170 रुपया क्विंटल ये केतारी हमको दे रहे हैं
1: जी,
0: और गुड़ जो है 3500 रुपया क्विंटल ही बेच रहे हैं।
1: अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि वो कीमत अभी वाजिब नहीं है?
0: वाजिब कीमत नहीं है, इसलिए केतारी काटे भी नहीं है।
1: अच्छा अच्छा,
0: भाव बढ़ेगा तो केतारी काटेंगे।
1: अच्छा अच्छा, तो केतारी खेती आप नहीं काटेंगे तो उसको कोई हानि नहीं होगी?
0: ना, कोई हानि नहीं होगी, उस केतारी को काट के हुजूर उसको छोड़ देंगे और उसमें कमान दे देंगे, फर्टिलाइजर वगैरह दे देंगे, तो फिर जैसा केतारी है वैसे हो जाएगा।
1: तो कुछ वर्ष के बाद तो फिर करना पड़ता होगा नए सिरे से?
0: हाँ, फिर नए सिरे से करते हैं, उसमें आलू लगा देते हैं काट करके, सरसों लगा देते हैं, इसके बाद वो काटने के बाद फिर गन्ना लगा देते हैं।
1: तो आप कृषि कार्य में बहुत ही तत्परता से जुड़े हुए, और माल मवेशी भी है आपके पास?
0: माल मवेशी गाय है, दूध देती है, तभी ना थोड़ा कंपोस्ट तैयार करते हैं।
1: आप बहुत ही अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं और इस उम्र में भी आप बहुत सक्रिय हैं, और अपने उम्र के और भी दूसरे भाइयों को क्या सलाह देना चाहें? हमारे श्रोताओं को जो रेडियो सुन रहे हैं, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे जो कि वरिष्ठ नागरिक हो चुके हैं?
0: हाँ, उनसे कहेंगे कि सही मार्ग पर चलने का हमेशा प्रयास करो, सत्य बोलो, किसी से मत झगड़ो, अगर कोई दो बात कह भी दे तो उसे बर्दाश्त करने की क्षमता रखो, तभी तुम आगे बढ़ सकोगे, अन्यथा आगे बढ़ने में तुम रुकावट आ जाएगी तुम्हारे में।
1: जी जी जी, तो और जो लोग आपकी उम्र के हैं उन लोगों के लिए क्या कहेंगे, वो लोग कैसे जीवन जिए? तो
0: उन लोगों को कहते हैं कि हमारे ही तरह नियमित ढंग से अगर चलोगे और ऐसा भोजन करोगे तो तुम भी हमारे तरह स्वस्थ कर दिखाई पड़ोगे, अन्यथा तुम बहुत जल्दी झुक जाओगे, गिर जाओगे।
1: तो आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी हाँ साथियों, हमारी परंपरा में कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं, गुरु हमारे जीवनदाता होते हैं, हम आज क्या हैं वो गुरु की ही कृपा होती है। तो ऐसे गुरु के चरणों में हमारा नमन, और जैसा कि उन्होंने बताया, जीवन की संध्या वेला में भी उत्साह मन में बरकरार रखना चाहिए, और अवकाश तो रिटायरमेंट एक पड़ाव है ज़िंदगी का, हमें अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए हमेशा ये सोचना चाहिए कि जीवन का हर पल अनमोल है और अपनी ऊर्जा को बरकरार रखना चाहिए। उम्र एक नंबर मात्र है, ऐसा सोच करके जो जिएंगे तो अवकाश का क्षण भी बहुत अनमोल हो जाएगा और दिनचर्या बहुत खुशनुमा होगी।

प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों में से एक थे, आपका जन्म हुआ था। और दोस्तों, आज के दिन बॉलीवुड के भी एक महान हस्ती मिथुन चक्रवर्ती का जन्म हुआ है 1950 ईस्वी में, और उनके बारे में और भी बातें आगे करेंगे। दोस्तों, आज के दिन 1910 ईस्वी में CM पनाचा स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ का भी जन्म हुआ था। 1910 ईस्वी में CM पुंचा स्वतंत्रता सेनानी राजनीतिक और उड़ीसा और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल का भी जन्म हुआ है। 1956 ईस्वी में सुरेश कांत प्रसिद्ध साहित्यकार का जन्म हुआ था। 1920 ईस्वी में जोस लोपेज पोर्टेली मैक्सिको के राष्ट्रपति थे, आपका जन्म हुआ था। 1918 ईस्वी में चौधरी ब्रह्मदेव प्रकाश का जन्म हुआ था। और आज के दिन जिनका निधन हुआ है महान शख्सियतों का, उनकी बात करें तो 2015 में चार्ल्स कोरिया भारतीय वास्तुकार और शहरी नियोजक का की मृत्यु हुई थी। और 1925 ईस्वी में आज ही के दिन चित्तरंजन दास, जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, आपका निधन हुआ था। 1944 ईस्वी में आज ही के दिन प्रफुल्ल चंद्र राय की मृत्यु हुई थी। और साथियों, बात करें जैसे कि हमने पहले भी कहा था मिथुन दा के बारे में, मिथुन चक्रवर्ती भारतीय सिने अभिनेता, बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता का जन्म 16 जून 1950 को एक प्रसिद्ध भारतीय बंगाली परिवार में हुआ था। आप अभिनेता, गायक, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं, और 1976 में फिल्म मृगया से अभिनय की शुरुआत की थी। उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है। 1980 के दशक में डिस्को डांसर के रूप में ये बहुत लोकप्रिय हुए और डिस्को का आगाज उन्होंने किया, युवाओं के बीच एक नई पहचान बनाई और 350 से ज़्यादा फिल्मों में आपने अभिनय किया। हिंदी के अलावा बंगाली, उड़िया और भोजपुरी सिनेमा में भी काम किया और वर्तमान में वो राज्यसभा के सदस्य हैं और समाज सेवा में सक्रिय हैं। तो आपको हम सब जन्मदिन की शुभकामना देते हैं और उनके लंबे जीवन की कामना करते हैं, और सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये खूबसूरत सा नगमा।

0: जी हाँ दोस्तों, रूठने मनाने में जीवन नहीं जाना चाहिए। छोटी छोटी बातें हमारे परिवार में, समाज में, दोस्तों के साथ होती रहती हैं, उन्हें भूल कर हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला है। इसलिए शिकवे शिकायतें दूर करते रहने चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, आप कहीं मत जाइएगा। इस अंतराल के बाद हम और आप चलेंगे मुंबई की दुनिया पर में सैर करने।
1: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
2: Nexa.
3: बदलो बदलो आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: जानते हैं कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
6: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हम और आप चलेंगे एक लंबे ड्राइव पर और एक लंबे सफर पर और मौसम के मिजाज का आनंद लेंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं रेलगाड़ियों की रफ्तार कैसी है आज। दोस्तों भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस अपने सही समय पर चल रही है। इसका यहाँ आने का समय है 7:50। ये गाड़ी अपने नियत समय से प्रस्थान कर चुकी है और साथ ही प्रस्थान कर चुकी है हावड़ा कवि गुरु एक्सप्रेस 7:45 पर।

का यहाँ से प्रस्थान करने का समय है दोस्तों। 12368 आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस अपने सही समय 8:15 पर आने की सूचना है, और साथ ही राइट टाइम है, राइट टाइम से लगभग 5 घंटे विलंब से आने की सूचना है ब्रह्मपुत्र मेल, जिसका नंबर है 15658, और इस गाड़ी का यहाँ आने का समय है दोस्तों 8:05। तो ये गाड़ी आज अतिशय विलंब से आने की सूचना है, हो सकता है धीरे धीरे ये अपने टाइम को मेकअप करे, लेकिन फिलहाल यही सूचना है। और 53416 जमालपुर साहबगंज पैसेंजर, जिसका नियत समय है 8:37, ये गाड़ी अपने ऑन टाइम आने की सूचना है। ऑन टाइम है भागलपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस, जो यहाँ से प्रस्थान करती है 8:55 पर। यह साप्ताहिक ट्रेन बिल्कुल सही समय से यहाँ से चलने वाली है दोस्तों। और बात करें 13403 रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस की, ये गाड़ी भी ठीक 9 बजे अपने सही समय पर प्रस्थान करेगी, और नियत समय पर चलने की सूचना है 9:15 पर। साहबगंज जमालपुर मेमू, ये गाड़ी भी इसका समय है 9:15 और इसका नंबर है 63431। 13409 मालदा क्यूल इंटरसिटी, ये गाड़ी भी अपने सही समय 9:15 पर आने की सूचना है। और बाका राजेंद्र नगर इंटरसिटी अपने नियत समय 10:15 पर आने की सूचना है दोस्तों, और इसका नंबर है 132141। और सबसे इम्पोर्टेंट जो भागलपुर से आनंद विहार की को जाती है, जिसमें हमारा कंफर्मेशन अगर हो जाता है रिजर्वेशन का, तो अतिशय आनंदित होते हैं हम। ये गाड़ी भी अपने सही समय 11:55 पर यहाँ से प्रस्थान करने की सूचना है, और इसका नंबर है 12367। तो ये तो रेलगाड़ियों की रफ्तार हमने जानी दोस्तों, और अब हम और आप चलते हैं मुंबई की सड़कों पर सैर करने।

கதை லிங்கிங் ரோட், கதை வார்டன் ரோட், கதை கேடல் ரோட், கதை பேடல் ரோட். जी हाँ दोस्तों, आगे फिर हम चलेंगे कभी मुंबई घूमने। फिलहाल लेते हैं छोटा सा अंतराल और गुड मॉर्निंग विक्रमशिला से अब हम आप सबों से विदा लेंगे दोस्तों, और जानेंगे योगा के इम्पोर्टेंस के बारे में। आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। मिलते हैं एक अंतराल के बाद।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ हुर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
3: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
2: फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय एलएनजी टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यार्ड्स का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक जहाजों में से एक है। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेररिज्म एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मुजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
6: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर, ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्यिक उड़ाने शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मानसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेकनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Slovakia confers its highest honor, Order of the White Double Cross First Class, on Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Modi to participate in G7 summit in Evian, France today. To also hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada and UK and UAE President. Government hikes export duties on diesel and aviation turbine fuel. Export duty on petrol remains

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेशवासियों को एक ही स्थान पर विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आज से 18 जून तक सभी प्रखंडों में सहयोग सह जन कल्याण शिविरों का आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 15 जुलाई से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की घोषणा की। मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए पूर्व मध्य रेल आज और कल 14 विशेष ट्रेनों का परिचालन करेगा। और मॉनसून की रफ्तार थमने से दक्षिण बिहार में गर्मी का असर फिर बढ़ा। 41.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ शेखपुरा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने पर आज से प्रदेश के सभी प्रखंडों में प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। 18 जून तक चलने वाले इन शिविरों में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवेदन, पंजीकरण, सत्यापन, EKYC तथा लाभ वितरण की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सिवान में आयोजित शिविर में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
1: शिविर में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान व्यय वंदन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, लखपति दीदी, पीएम स्वनिधि, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान और छात्रवृत्ति योजनाओं सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। शिविर में 25 विभागों के अलग अलग काउंटर बनाए जाएंगे, जिस पर संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे। शिविरों में हेल्प डेस्क, प्रशिक्षित स्वयं सेवकों की सहायता और स्वास्थ्य जांच शिविर की भी व्यवस्था रहेगी, जिससे लोगों को आवश्यक मार्गदर्शन और सेवाएं आसानी से मिल सकें। लाभार्थियों से अपील की गई है कि वे आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर शिविर में पहुंचे, ताकि योजनाओं का लाभ बिना किसी परेशानी के प्राप्त किया जा सके। समाचार कक्ष से सविता पारीक।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की घोषणा की है। पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि आगामी 15 जुलाई से प्रदेशवासी हवाई सेवा के माध्यम से ऐतिहासिक धरोहरों का भ्रमण कर सकेंगे।
2: 15 जुलाई से मैंने टारगेट किया, एक टूरिज्म की व्यवस्था खड़ा करूंगा और पटना सिर्फ देखने के लिए जाए, राइड करने के लिए हेलीकॉप्टर में मात्र 2100 रुपया देगा। और पटना से चाहे वो राजगीर हो, मुंडेश्वरी माता का मंदिर हो, चाहे पुतला भवानी का मंदिर हो, इन तमाम जगह को जाने के लिए भी हमने कहा है कहीं हेलीकॉप्टर लगाइए और बिहार के लोगों को बिहार की खूबसूरती दिखाने के लिए मात्र 6000 रुपया में सबको हेलीकॉप्टर की सेवा भी देने का काम किया।
0: पूर्व मध्य रेल 17 जून को होने वाली मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर पाटलिपुत्र और पटना जंक्शन सहित विभिन्न स्टेशनों से 14 विशेष ट्रेनों का परिचालन करेगा। ADG रेल डॉक्टर कमल किशोर सिंह ने बताया कि परीक्षा में लगभग 5.5 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। इसे देखते हुए आज और कल विभिन्न रूटों पर ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। पाटलिपुत्र जंक्शन और पटना जंक्शन से अररिया, नौगछिया, भभुआ रोड, गया, बक्सर, राजगीर और झाझा सहित विभिन्न गंतव्यों के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाएंगी। इस बीच पाटलिपुत्र जंक्शन पर तोड़फोड़ और पथराव मामले में रेल पुलिस ने 6 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सभी बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हैं। रेल पुलिस के अनुसार घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान CCTV फुटेज के आधार पर की जा रही है। मद्य निषेध कारा और परिवहन विभाग में सिपाही तथा कक्षपाल भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों तक चीट पहुंचाने वाले एक संगठित गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में नवादा से 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें चैमर ऑपरेटर और बायोमेट्रिक एजेंसी से जुड़े कर्मी शामिल हैं। मामले में कुल 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि इसी भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को भागलपुर से भी गिरफ्तार किया जा चुका है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग ने बताया कि 1000 से अधिक रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए चयन हुआ है। यूपीएससी ने उम्मीदवारों को यह भी बताया कि उनके अंक, कट ऑफ अंक और उत्तर सूची अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से प्रारंभिक परीक्षा परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बिहार ने एक नया कीर्तिमान बनाया है। राज्य में जनधन खातों में जमा राशि 30,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार बिहार 6,87,00,000 जनधन खाते के साथ देश भर में दूसरे स्थान पर है। इस मामले में उत्तर प्रदेश देश भर में शीर्ष पर है। इधर बैंकिंग सेवाओं की भागीदारी में भी बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरा है। प्रदेश के 629 पीएमश्री और राजकीय विद्यालयों में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मिनी मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना में आयोजित समीक्षा बैठक में बताया कि इन प्रयोगशालाओं के माध्यम से कक्षा 7 से 11वीं तक के छात्र छात्राएं मिट्टी परीक्षण, नमूना संग्रहण और मृदा स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारिक गतिविधियों का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। मंत्री ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य के 160 विद्यालयों में ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून का प्रसार थम गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 3 दिनों से मॉनसून की उत्तरी सीमा मुजफ्फरपुर से आगे नहीं बढ़ सकी है। मॉनसून की सक्रियता में कमी आने से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ शेखपुरा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्से को छोड़कर शेष हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
1: राज्य के उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भागलपुर, कटिहार, किशनगंज एवं पूर्णिया जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और पथ निर्माण विभाग ने स्पष्ट किया है कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया मूल रूप से स्वीकृत अलाइनमेंट के अनुसार ही चल रही है। प्रदेश की लगभग 1 लाख आशा कार्यकर्ताओं को प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच और रोगों की पहचान का प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के साथ आशा सर्टिफिकेट प्रदान करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के माध्यम से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद लिखित और प्रायोगिक परीक्षा आयोजित होगी। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में बिहार और मध्य प्रदेश ATS ने संयुक्त कार्रवाई में मधुबनी से एक मदरसा शिक्षक को गिरफ्तार किया है। ATS के अनुसार आरोपित इजहारुल हक पर पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में रहकर गोपनीय सूचनाएं साझा करने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद उसके ठिकानों पर तलाशी ली गई, जहाँ से 2 मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए। मामले की जांच जारी है। मद्य निषेध और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने 127 शराब माफिया की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय को प्रस्ताव भेजा है। ब्यूरो के DIG अजय कुमार पांडे ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी।
2: कुल 127 लोगों के विरुद्ध BNSS धारा 107 के तहत उनकी संपत्ति जब्ती करने की कार्यवाही भी हम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े मादक पदार्थ के जो बड़े बड़े सेलर हैं इनके विरुद्ध। जिले में 89 मादक पदार्थ कारोबारी के विरुद्ध पिट NDPS एक्ट की कार्यवाही का प्रपोजल हम लोगों ने बढ़ाया है और हो जाएगा और उन्हें निरुद्ध किया जाएगा जेलों में।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2026 में राज्य पुलिस ने प्रतिमा औसतन 3,50,000 लीटर से अधिक शराब बरामद की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11% अधिक है। वहीं मद्य निषेध ब्यूरो की बरामदगी में 24% की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष मई तक मद्य निषेध अधिनियम के तहत 57,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें लगभग 20,000 कारोबारी शामिल हैं। पटना में CBI की विशेष अदालत ने चर्चित अलकतरा घोटाले के एक मामले में ट्रांसपोर्टर DN सिंह को दोषी करार देते हुए उन पर 17 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं साक्ष्य के अभाव में पथ निर्माण विभाग के 3 पूर्व कनीय अभियंताओं को बरी कर दिया गया। भागलपुर के जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने कहा है कि जिले के जिन प्रखंडों में 20 सूत्री कार्यालय नहीं हैं, वहां जल्द ही कार्यालय उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जिले के प्रभारी मंत्री सह 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष नीतीश मिश्रा की उपस्थिति में आयोजित बैठक में श्री चौधरी ने कहा कि अगले 15 दिनों के भीतर सभी प्रखंडों में इस संबंध में बैठक आयोजित की जाएगी। किशनगंज जिले में पुलिस ने रामपुर चेक पोस्ट पर 1,40,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ हेरोइन के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से लगभग 700 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका और ईरान समझौते के लिए सहमत, स्विट्जरलैंड में 19 को किए जाएंगे हस्ताक्षर। दैनिक जागरण ने लिखा है, बिहार बिल्डिंग बायलॉज 2026 का मसौदा तैयार, शहरों में अब बन सकेंगी ऊंची और अधिक क्षमता वाली इमारतें। दैनिक भास्कर लिखता है, दीपक प्रकाश मामले में सुप्रीम कोर्ट का सरकार और आयोग को नोटिस। प्रभात खबर ने लिखा है, पूरे दक्षिण बिहार में 20 तक गर्मी से राहत नहीं। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, पटना आरा में भीषण गर्मी के बीच स्कूलों का समय बदला। आज अखबार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, सारे कोचिंग सेंटर हो जाएंगे बंद। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रदेशवासियों को एक ही स्थान पर विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आज से 18 जून तक सभी प्रखंडों में सहयोग सह जन कल्याण शिविरों का आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 15 जुलाई से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की घोषणा की। मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए पूर्व मध्य रेल आज और कल 14 विशेष ट्रेनों का परिचालन करेगा। और मॉनसून की रफ्तार थमने से दक्षिण बिहार में गर्मी का असर फिर बढ़ा, 41.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ शेखपुरा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
4: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रसारित।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्रोताओं, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है इस समय आकाशवाणी भागलपुर, मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर, साथ ही एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्स पर। पेश है फिल्मी गानों का हमारा कार्यक्रम नगमे नए पुराने।

कार्यक्रम के आरंभ में आप सुन रहे थे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म में फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन और साथियों को। लीजिए दोस्तों, अब हम आपको सुनवा रहे हैं रावण फिल्म में इकोन हेमसिका अय्यर और साथियों को।

0: While some just go through the day, you could live the grand life with the Grand Vitara. As you move from city streets to open escapes, the strong hybrid keeps up seamlessly. No matter where the road takes you, you're always breathing in freshness with auto purify and PM2.5 display. And when every moment feels this grand, safety comes standard with 6 airbags. Visit your nearest Nexa showroom to live the grand life with the Grand Vitara Strong Hybrid. Nexa.
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है, हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
4: पता है लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
5: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था, हमने

आप सुन रहे थे एक फूल दो माली। इस फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में। गीत रचना थी प्रेम धवन की और संगीत रचना थी रवि की। और लीजिए दोस्तों, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं गीत फिल्म का ये सुमधुर गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में। बोल लिखा है हसरत जयपुरी ने और इस गाने के लिए तर्ज बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

इसके साथ ही फिल्मी गानों का कार्यक्रम नगमे नए पुराने अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। पेशे खदमत है हमारा हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम बज़्म-ए-उर्दू। पेशकश मोहम्मद सरसार अहमद की है।

30 बरस कबल जो लोग मेरी जात से वाबस्ता थे, आज भी उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। हैरत है, इस तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ। मेरी तनाव का सबब कहीं यही तो नहीं? लेकिन ये कोई माकूल वजह नहीं लगती। इजाफा तो हुआ है, मेरी ज़िंदगी में बीवी और बच्चों का इजाफा, नए रिश्तों की बाजियाफ्त, जिम्मेदारियों का बोझ, संजीदगी का नुजूल और बंद मुट्ठी में रेत की तरह लम्हा लम्हा कम होती हुई ज़िंदगी का एहसास। संजीदगी का सोचकर एक ख़्याल जहन में उभरता है। संजीदगी हमेशा एक तवील गैर संजीदा सूरत हाल के बाद मैसर होती है। मैंने बेफिक्री और लाउबालीपन का एक तवील अरसा गुजारा है। इस अरसे में एक बार मैंने अपने हलक़े अहबाब का महासबा किया था, एक तहरीरी महासबा जिस पर मैंने अलामत का दबीज़ लिहाफ डाल रखा था। एक अरसा बाद उस लिहाफ की हिद्दत से बौखला कर लोग बाहर आ गए और अब मुझसे मुखातिब हैं। कहाँ है वो खलंडरा और बेफिक्र नौजवान जो दूसरों को अपना हदफ बनाया करता था? मैं तो यही हूँ तुम्हारे अजहान में, मैं पूरी संजीदगी से कहता हूँ, लेकिन लोग इश्तबाह के कहकहों में डूबे हुए मेरी तरफ तरहम आमेज निगाह डालते हुए गोया हैं। आज अपना महाजबा करने का वक्त आया तो आरिफ जैसे बेजरर शख्स की पनाह में आ गए। पनाहगाह, मैं चौंक पड़ता हूँ। हाँ, सच कहते हो, अब मैं वाकई किसी पनाह की तलाश में हूँ, एक ऐसी पनाहगाह जो मुझे इस शहर की जहर आलूद हवा से महफूज रख सके। मैं एतराफिया मूड में अलकिताब से एक नया रिसाला उठा लेता हूँ। रिसाला की वर्क गर्दानी करते हुए सोचता हूँ, ये अदबी रिसाला इसी शहर से जारी हुआ है, इसमें मेरा अफसाना सर फहरिस्त है। मुतालका अफसाना के ताल्लुक से एक रिटायर्ड जज की बातें मुझे याद आती हैं। वो अफसाना के बुनियादी ख्याल से बेहद मुतासिर थे, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया था। लेकिन इस वक्त मैं सोच रहा हूँ कि इस अफसाना के बयानिया में एक बड़े अफसर के किरदार और जज साहब की शख्सियत में क्या फ़र्क है, कहीं दोनों में कोई मुमासलत तो नहीं? ये सोचकर बैक वक्त दो मतजाद कैफियतें मुझ पर वारिद होती हैं, एक अफसरदगी का सर्द झोंका और दूसरी तमानियत का गर्म एहसास। कोई शख्स बैक वक्त कैफो इम्बिसात और रंजो महन का हामिल कैसे हो सकता है? अलकिताब के सामने बैठे हुए एक मुअम्मर शख्स ने सवाल किया कि वो सवाल करने की नीयत ही से यहाँ तशरीफ फरमा होते हैं। शख्सियत में तजाद दोगलेपन की निशानी है। नए रिसाले के मुदीर ने हसब मामूल दानिशवराना लबो लहजे में अपनी बात शुरू की, मैं नहीं मानता। तीसरा शख्स खामोश नहीं रह सकता था कि इनकार का पत्थर उसकी सिरश्त में शामिल है। तजाद अजल से एक आफाकी सदाकत है और अबद तक रहेगा, बस इतना ही काफ़ी है, अब तुम इसे मिसालों से साबित करने की जहमत मत उठाओ। चौथे शख्स ने उस वजनी पत्थर को हटाने की कोशिश की कि शहर भर की खबरें उसकी बोसीदा जेब में पड़ी रहती हैं। जब बिसात उड़ जाती है तो शतरंज के तमाम मोहरे एक ही डब्बे में बंद हो जाते हैं। देर से खामोश बैठे हुए पांचवें शख्स ने हसब आदत मौजू से अलग एक बेरब्त सा जुमला घुसेड़ दिया है। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन लगा कि मेरी मुस्कुराहट ना कदरी के डस्टबिन में डाल दी गई है। लिहाजा सैय ला हासिल को अपने अंदरून में थपक कर सुला देना मुनासिब जाना और अब मैं वहाँ से बे इरादा निकल आया हूँ। रात का पहला पहर गुजर जाने के बाद इस शहर की सड़कें वीरान सुनसान हो जाती हैं, दुकानें भी बंद हो जाया करती हैं। हाँ, मगर दवा की दो चार दुकानें रात भर खुली रहती हैं। इन दिनों मैं कसदन घर देर से पहुँचता हूँ कि घर में मेरे सिवा कोई नहीं है। बीवी 2 माह के लिए बेटी के घर गई हुई है, बेटा 10-11 साल का है और वो भी उसी के साथ चला गया है। घर के सन्नाटे पर मकड़ियों के जाले, छिपकलियों के सरसराहट और काकरोच की मस्ती शबाब पर है। मैं एक कोयल जलाकर बालकनी में आता हूँ। आसमान पर पूरा का पूरा चांद रोशन है, चांदनी मेरे कमरे के अतराफ फैली हुई है। इसकी रोशनी कभी कभी मध्यम हो जाती है, ऐसा तब होता है जब सियाह बादल का कोई टुकड़ा चांद को अपनी आगोश में ले लेता है। मेरी बेटी के वजूद से भी चांद का एक टुकड़ा निकलने को मचलने लगा है। मेरी बीवी सुरमई बादल की तरह उस टुकड़े को अपने आंचल में छुपा लेने के लिए बेताब सी है। अचानक

फ़ोन की घंटी बजती है। मेरे मोबाइल पर एक धुन बजने लगती है। गाने की ये धुन मुझे बातें करने के लिए उकसाती है। मैं मोबाइल का स्विच ऑन करता हूँ। दूसरी तरफ से बीवी की आवाज़ आती है, आपने खाना खा लिया, दवाएं ली, फूलों के पौधों पर पानी डालना तो नहीं भूले, असलम के यहाँ से शादी का दावतनामा तो आया होगा। मोबाइल पर बहुत से सवाल और मैं हाँ और नहीं के पेंडोलम की तरह डोलता हुआ मैकेनिकी अमल में मसरूफ़। सुनो, बेटी का ध्यान रखना। और जैसे ही दूसरी तरफ खामोशी थी, मोबाइल से टावर के निशानात अचानक गायब हो गए और सिलसिला कलाम मुनक़ता हो गया। मैंने मोबाइल को गौर से देखा और सोचा कि इसमें सेव किए हुए पुरानी फिल्मी धुनों की तरह मेरे बुक सेल्फ में भी बहुत सी पुरानी किताबें जमा हो गई हैं। मैं देख रहा हूँ कई नए रसायल और किताबें मेज़ पर बिखरी हुई हैं। इन्हें भी तरतीब से सेल्फ़ में रख दूँगा और कुछ अरसा गुजरने के बाद ये भी पुरानी किताबों में शुमार होने लगेंगी। घर की दीगर अशिया मसलन टीवी, फ्रिज, अखबार, खतूत, तस्वीरें और यादें भी एक अरसा गुजरने के बाद पुरानी हो जाती हैं। पुरानी चीज़ों से मुझे एक ख़ास किस्म की उनसियत रही है। मैं जब छोटा था तो मेरे पास एक ग्रामोफोन हुआ करता था। इसमें लोहे के एक हैंडल को देर तक घुमाने के बाद रिकॉर्ड पर सुई जमाने पर गाने की आवाज़ आती थी। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती। पहली बार ये गाना मैंने इसी ग्रामोफोन पर सुना था। अब्बा का तबादला जब इस शहर में हुआ तो नकल मकानी के वक्त ये ग्रामोफोन कहीं खो गया। इस अफसोसनाक वाक़या के बाद मैं काफ़ी मोहतात हो गया हूँ। मैं अपनी पुरानी जमाशुदा चीज़ों का वक्तन फवक्तन जायज़ा लेता रहता हूँ। मेरे पास इनकी बाकायदा एक फहरिस्त बनी हुई है। मैं दोबारा मोबाइल पर अपनी बीवी से राबता कायम करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नेटवर्क का टावर हनूज गायब है। किसी शय का गायब हो जाना मुझे परेशान कर देता है। तलाश करने पर न मिले तो उलझन सी होने लगती है। रोज़ का मामूल है कि मैं आधी रात गुजर जाने के बाद ही सोता हूँ। डॉक्टरों की राय है कि ये लाइफ स्टाइल सेहत के लिए मुज़िर है, लेकिन बहुत सी पुरानी चीज़ों की तरह मैं अपनी इस आदत को तर्क करने से कासिर हूँ। बीवी से तशफ़ी बख्श बात ना हो पाने के सबब तबीयत उचाट सी हो गई है। मैंने पढ़ने और लिखने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। वक्त गुजारने के लिए क्या करूँ? हाँ, एक काम किया जा सकता है, पुरानी चीज़ों का असर नौ जायज़ा लिया जाए। वैसे भी बहुत दिनों से मैंने अपना ये शौक़ पूरा नहीं किया। मैं फहरिस्त निकालता हूँ और किताबों के नीचे वाले शेल्फ़ का दरवाज़ा खोलता हूँ। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें करीने से रखी हुई हैं, फ्लावर पॉट, एस्ट्रे, सीज़र, नाइफ़, कांच की बनी हुई मछलियाँ और दादा जान की दी हुई मोटे शीशे की एक बहुत पुरानी टेबल घड़ी जिसकी मशीन बाहर से नज़र आती है। फहरिस्त के अंदराज के मुताबिक एक चीज़ नज़र नहीं आ रही है, चीनी मिट्टी का बना हुआ गुलाबी रंग का छोटा और नाजुक सा जापानी हाथी। इस हाथी के सर पर 6 अदद छोटे छोटे सुराख हैं और इसकी दुम के नीचे गोल सा एक शिगाफ है जिसे कॉर्क के ज़रिया बंद किया गया है। दरअसल ये हाथी नुमा नमकदान है जो दस्तरखान पर सजाने के काम आता है। अम्मी ने बताया था कि ये हाथी उन्होंने एक मेले में ख़रीदा था, लेकिन मेरे लिए तो ये चीनी मिट्टी का बना हुआ सिर्फ़ एक खूबसूरत सा हाथी था जिसे गौर से देखने पर लगता है कि यह अपना सूंड उठाकर मुस्कुरा रहा है। इसे यहाँ से गायब पाकर मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैंने दोबारा उसे तलाश करने की कोशिश की कि दीगर अशिया के दरमियान छुप न गया हो, लेकिन मैं हैरान हुआ कि गैर मतवक्को तौर पर चीनी मिट्टी का वो हाथी गायब था। उसे किसने यहाँ से गायब किया होगा? मेरा जहन भटकने लगा और मैं जहनी तनाव की गिरफ्त में आने लगा, जैसे कोई टाई की गिरह आहिस्ता आहिस्ता कसता जा रहा हो। ऐन उसी वक्त मेरा ध्यान अपने बेटे की तरफ मुंतकिल हो गया। कहीं उसने तो, लेकिन वो तो इन चीज़ों को शीशे के बाहर ही से देखकर खुश और मुतमईन हो जाया करता था। सेल्फ को खोलने की उसने कभी कोशिश नहीं की। हाँ, कभी कभी मुझसे पूछे बगैर वो मेरी चीज़ें इस्तेमाल कर लिया करता है, मसलन गोंद का ट्यूब, स्केल, आलपिन और स्केच पेन वगैरह, जिसका ताल्लुक उसकी पढ़ाई लिखाई तक महदूद है। लेकिन चीनी मिट्टी का ये हाथी तशकीक का एक नोकीला कांटा बार बार अपनी चुभन का एहसास दिला रहा था। बादिले नाखास्ता मैं अपने बेटे के स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। वहाँ स्कूल बैग पड़ा हुआ था। मैंने बैग के एक एक खाने में हाथ डाल

0: मैं दोबारा अपने कमरे में गया और खुफिया ड्रावर को खोलने की कोशिश की। ड्रावर के खुलते ही मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। चीनी मिट्टी का हाथी वहाँ मौजूद था। उसे देखकर मेरे आसाब पर तनाव की जो कैफियत थी बतदरीज नॉर्मल होने लगी। लेकिन इस अमल से अब मैं जिस्मानी तौर पर भी थक चुका था और मुझे आराम की सख्त ज़रूरत थी। मैं बिस्तर पर लेट गया और करीब ही तिपाई पर रखे हुए चीनी मिट्टी के खूबसूरत हाथी को देर तक देखता रहा। वो वाकई सूंड उठाकर मुस्कुरा रहा था। उसकी आबदार मुस्कुराहट में आहिस्ता आहिस्ता मेरी नींद भी घुलने लगी। सुबह काफ़ी देर से आँख खुली और पहला ख्याल यही आया कि रात सोने से कबल मैं नींद की टिकिया लेना भूल गया था।
1: जावेद भाई, अभी हम लोग सामेईन को एक अफसाना सुनवा रहे थे।
2: अफसाने का उन्वान क्या था?
1: उन्वान था कोई अपना सा।
2: कोई अपना सा,
1: जी जी। वाह, अफसाना निगार थे जनाब रफ़ी हैदर अंजुम।
2: तो फैज भाई, आपने सुनने के बाद महसूस किया
1: जी
2: कि बहुत ही अहम और कीमती पैगाम हमारे समाज को, इंसान को उन्होंने दे दिया। और फैज भाई देखिए, अब हम सामेईन को इनशाया के माहौल में लाना चाहते हैं।
1: अच्छा,
2: आपका क्या है?
1: जहाँ जहाँ बेशक बेशक।
2: तो फैज भाई देखिए, इनशाया जहाँ तंज भी है, मज़ा भी है और पैगाम भी है।
1: क्या बात है।
2: और ये भी है कि इनशाया उर्दू अदब के खास सिंफ है जिसकी नौयत इनफरादी नहीं बल्कि इज्तिमाई होती
1: है। क्या बात है, क्या बात।
2: तो हम सामेईन को सुनवाते हैं एक इंशाया।
1: जी जी।
2: उन्वान है गधा हूं मैं।
1: और इंशाया निगार कौन है?
2: इंशाया निगार हैं जनाब कमर आलम। तो आइए सामेईन सुनते हैं यह नशर करदा इंशाया।
3: गधा हूं मैं, कितना उटपटांग सा जुमला है। आपने किसी को ये अल्फाज कहते सुना है? जी हाँ, मैंने सुना है। कॉलेज के दिनों में हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, बड़ा ही मनचला लड़का था। अगर उसके सामने से कोई खूबसूरत लड़की गुजर जाए तो उसका दिल मचल उठता था। उसकी दूसरी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये थी कि अगर वो सामने वाले से खौफ खा रहा हो तो दौरान गुफ्तगु उसके शुरू या आखिर के अल्फाज साफ साफ नहीं निकलते थे। इस बात से कॉलेज की लड़कियाँ भी वाकिफ थीं। उसके क्लास की एक लड़की ने यूं ही उससे कह दिया, तुम मुझे पसंद हो, लेकिन तुमसे कहीं ज़्यादा तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी चाल और तुम्हारा अंदाज मुझे पसंद है। तुम्हारी चाल बिल्कुल हवा जैसी है, प्लीज एक बार गाकर सुना दो हवा हूं मैं। वो खुश हो गया। हम लोगों ने उसे मना भी किया था लेकिन वो घबराहट के मारे हवा हूं मैं नहीं बोल सका, बोल दिया गधा हूं मैं। फिर क्या थी, पूरे कॉलेज में गधा हूं मैं के नाम से वो मशहूर हो गया। जब कोई उसको गधा हूं मैं कहता तो उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बौखलाहट तारी हो जाती थी और वो वहां से ऐसा भागता जैसे गधे के सर से सिंह। राज की बात बताऊं, स्कूल के ज़माने में एक बार मैं भी इस चपेट में पड़ गया था। किसी बात को लेकर मैं शोर मचा रहा था, बगल वाले क्लास में पढ़ाई हो रही थी। क्लास के निकलकर मैडम आई और कहने लगी, तुम्हारी आवाज़ पूरे क्लास में गूंज रही है, इतनी भी तमीज़ नहीं कि बगल में क्लास हो रहा है शांति के साथ बैठें, चलो बाहर निकलो और गधे की आवाज़ निकालो। कोयल की आवाज़ निकालना आसान है लेकिन गधे की आवाज़, मैं तो वाकई गधा बन गया था। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती, गधे का नाम सुनकर लोग बौखला क्यों जाते हैं, क्यों इतनी नफरत करते हैं गधे से? सच पूछिए तो दो पांव वाले वहशी दरिंदे से कहीं ज़्यादा अच्छा गधा है। अकल का कमज़ोर ही सही, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाता। सारा दिन मेहनत करता है तो दो वक्त की रोटियां नसीब होती हैं। एक बार मैंने किसी लड़की को लड़के से कहते सुना था, जानते हो लड़के वाले बारात लेकर घोड़े पर आते हैं, गधे पर क्यों नहीं? वो इसलिए कि दुल्हन एक साथ दो गधों को देखकर घबरा जाएगी। लड़का हंसने लगा। वो बोली, तुम हंस रहे हो, मैं तो समझी थी कि तुम बुरा मान जाओगे। लड़का बोला, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात हुई? अरे गधे हैं वो लोग जो अपने अंदर झांक कर नहीं देखते, अगर देखेंगे तो उसको अपनी सूरत नजर आ जाएगी। अब मैं क्या कहूँ तुमसे, शादी के बाद मियाँ गधा ही तो बन जाता है। गधा धोबी का वफादार होता है और मियाँ बीवी का। जिस तरह गधे को अपने मालिक की फिक्र होती है, वो अपने मालिक को खुश रखने की कोशिशें करता है, उसी तरह मियाँ को भी बीवी की फिक्र होती है, वो उसको खुश देखने के लिए कपड़े धोता है, झाड़ू लगाता है, बर्तन मांजता है और ज़रूरत पड़ी तो बीवी के पाँव भी दबाता है। पाँव दबाता है, गला क्यों नहीं दबाता? मेरे जहन में ये बात आई मगर फौरन ख्याल आया, गधा धोबी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, फिर मियाँ बीवी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? पहले ज़माने में

0: गधे को खासकर बोझ ढोने के काम में लाया जाता था, लेकिन अब इसकी बात अलग है। आज के मौजूदा दौर में आमद और रफ्त के इतने सारे ज़राए हो गए हैं कि लोग गधे के पीछे चलना तो दूर, चलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हाँ, धोबी इस रिश्ते को बखूबी निभा रहा है। सच कहूँ तो गधे से ज़्यादा सीधा और वफादार जानवर मिल ही नहीं सकता। एक कहानी मैंने पढ़ी थी जिसमें लोमड़ी, भेड़िए और गधे के किरदार को सामने लाया गया था। लोमड़ी और भेड़िया खूनी थे, जबकि गधे ने कोई खून नहीं किया था। भूख से बेदम होकर उसने अपने मालिक का थोड़ा सा घास चुरा कर खा लिया था। चालाक लोमड़ी और खूनखार भेड़िए ने यह साबित कर दिया कि तुम्हारा गुनाह माफ़ी के लायक नहीं है, और फिर उन दोनों ने उसको अपना खुराक बना लिया। काश के गधे ने सच नहीं कहा होता, या फिर उसको उन दोनों जानवरों से लड़ाई करने की हिम्मत होती। जानते हैं, मेरे पड़ोस के एक घर में एक छोटा सा बच्चा नौकर रहता था। वो अकल का थोड़ा कमज़ोर था। घर वाले उस बेचारे के सर पर काम का बोझ लाद देते थे। भूल से भी कोई गलती हो जाए तो उससे डांट कर कहते, गधा कहीं का, तू गधा था, गधा है और गधा ही रहेगा। सुनते सुनते एक रोज़ वो गुस्से में आ गया और काम छोड़ दिया। यतीम खाने में दाखिला ले लिया, वहाँ निसाबी तालीम भी दी जाती थी। वक्त आगे निकलता गया और वो कामयाबी की मंजिल तय करता गया। आज वो लड़का हाफिज़ वकारुद्दीन के नाम से जाना जाता है। और हैरत की बात तो ये है कि जिस घर में वो गधे के नाम से जाना जाता था, उसी घर के बच्चों को दीनी तालीम देने के लिए उसके घर जाता है। हम अशरफुल मखलूकात हैं, खुदा की बनाई हुई तख्लीकात में हमारा मकाम सबसे ऊंचा है। फिर हम अपनी अहमियत को क्यों नहीं समझते हैं? अगर कोई गलत बोलता है तो हमें उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। हम में जो बुराइयां हैं, जो खामियां हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। सच पूछिए तो दोस्त वही होता है जो बुराइयों को सामने लाए। बुराइयों पर पर्दा डालने वाला इंसान कभी सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। अब सवाल ये सामने आता है कि गधा देखने में कैसा होता है? इस बारे में मैं आपसे क्या कहूँ? हमारे मुल्क के हर हिस्से में गधा पाया जाता है। आपने तो गधा देखा ही होगा। गधे की शक्ल घोड़े जैसी होती है, हाँ उसकी चाल घोड़े जैसी नहीं होती, काफ़ी धीमी होती है। ये एक मेहनती जानवर है, वफादार भी होता है और इसमें बर्दाश्त करने की ताकत होती है। फिर लोग गधे के नाम से क्यों चिढ़ते हैं? चंद रोज़ पहले की बात है, एक किसान माशी मुश्किलात से परेशान होकर अपने गाय के बछड़े को बेचने के लिए मंडी जा रहा था। उसने बछड़े के गले में रस्सी बांध रखी थी। उसको माशी मुश्किलात से कहीं ज़्यादा इस बात की फिक्र थी कि उसका बछड़ा उससे बिछड़ रहा था। रास्ते में दो छटे हुए बदमाश मिले। किसान को आसुदा हाल आगे बढ़ता देखकर उसके पीछे जाने लगे। सुनसान जगह पर उन दोनों ने धीरे धीरे बछड़े के गले का पट्टा गधे के गले में डाल दिया और किसान को इस बात की खबर तक न हुई। दूर जाने के बाद उसे धोबी मिला। वो तालाब के नीचे कपड़े धो रहा था। अपने गधे के गले में पट्टा देखकर तिलमिला गया और उसने कहा, अबे गधे, मेरे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? किसान बोला, ये गधा नहीं, मेरे गाय का बछड़ा है। मैं इसे बेचने के लिए मंडी ले जा रहा हूँ। आँख खोलकर देख, ये तेरे गाय का बछड़ा नहीं, गधा है, गधा, गधा कहीं का। बेचारा किसान दोनों हाथों से सर थाम कर बैठ गया। इस बार त्यौहार के मौके पर कंपनी वालों की तरफ से हमारे दफ्तर में एक गेम खेला गया था। पूरे 1,00,000 रुपए का गेम था। दफ्तर के कई लोगों ने हिस्सा लिया था, मैंने भी हिस्सा लिया था। पहली बाजी 1,00,000 रुपए की थी, दूसरी 50,000 की, तीसरी 25,000 की, चौथी 15,000 की और पांचवी 10,000 रुपए की थी। मैं बहुत खुश था, पूरे 50,000 रुपए मेरे हिस्से में आए थे। दफ्तर के कई लोगों ने अपनी किस्मत आजमाई थी, 10,000 से ज़्यादा किसी की झोली में नहीं आए थे, लेकिन पूरे 50,000 रुपए का चेक मुझे मिला था। खुशी से फूले नहीं समा रहा था। आखिरी खेल क्या? आखिरी सवाल का सही जवाब देना था। सही जवाब पर 1,00,000 रुपए का इनाम था। मैं चाहता तो मैदान छोड़ सकता था, लेकिन मैं 1,00,000 के लालच में आ गया। इसीलिए तो लोग कहते हैं लालच बुरी बला है। मैं आखिरी सवाल का जवाब नहीं दे पाया, जवाब गलत निकला और मैं बुरी तरह हार गया। मेरे हाथ में जो 50,000 रुपए के चेक थे, वो भी उन लोगों ने ले लिए। मैं दोनों हाथ खाली हो गया, अपना सा मुँह लेकर स्टेज से नीचे उतर गया। दिल रोने के लिए नहीं, अपने आप को कोसने के लिए, बुरा भला कहने के लिए कह रहा था। दिल की बात जबां पर आ गई और मैं अपने सर पर हाथ मारकर जोर से बोला, गधा हूं मैं।
1: जावेद भाई, अभी हम लोग سامعین کو ایک نشر کردہ انشائیہ سنوا رہے تھے.
2: ہاں ہاں, اور انشائیہ کا عنوان کیا؟
1: عنوان تھا جاوید بھائی گدھا ہوں میں, اور انشائیہ نگار تھے جناب قمر عالم. جو عنوان تھا جاوید بھائی, عنوان کے تحت اگر غور کیا جائے تو واقع اس لفظ کو انشائیہ نگار نے کتنی خوبصورتی سے اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھایا ہے, اور سمجھاتے ہوئے کہ اتنا ہلکا اور ہنسنے ہنسانے والا لفظ, لیکن بسا اوقات وہاں پر انشائیہ نگار نے جو اپنے انشائیہ میں جو دکھایا ہے وہ کتنا سود مند, کتنا فائدہ مند ہے ثابت ہوا ہے.
2: بالکل,
1: تو ہر ہر موڑ پر یہ انشائیہ طنز و مزاح کے پہلو میں ایک پیغام بھی دیتا چلا ہے.
2: کام کیا بالکل
1: جی جی,
2: اور یہی تو فنکاری ہے, یہی تو انشائیہ
1: جی جی جی جی جی.
2: تو فہد بھائی دیکھیے, ابھی ہمارے پاس کچھ وقت ابھی اور ہے باقی,
1: جی جی جی,
2: لیکن اتنا ضرور کہیں گے سامعین سے کہ سامعین آج کا یہ اردو پروگرام آپ کو کیسا لگا؟
1: جی بالکل,
2: آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں.
1: جی ہاں جی ہاں,
2: اس لیے کہ ہم آپ کے خطوط کی روشنی میں ہی پروگرام کو ترتیب بھی دیتے ہیں, سجاتے بھی ہیں, سوارتے بھی ہیں.
1: جی جی جی,
2: اور بہتر سے بہتر پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں.
1: جی جی جی,
2: اور یہ بھی سامعین سے کہیں گے کہ سامعین ہم پروگرام آپ کے خطوط کو ہر ماہ کے پہلے منگل کو لے کر حاضر.
1: جی ہاں جی ہاں,
2: یہ سچ ہے کہ پروگرام بزم اردو کے سامعین میں دن بدن اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے.
1: جی جی,
2: اور بہت سارے پروگرام سنتے ہیں اور اپنے تاثرات سے اور اپنی محبت برے خط سے ہمیں ضرور نوازتے ہیں,
1: اور
2: سامعین سے گزارش بھی ہے.
1: جی جی,
2: سامعین پروگرام سن کر اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں, اور خط میں جو پروگرام میں جو کمیاں ہیں اور اس کی طرف بھی اشارہ کریں,
1: اس کی طرف بھی نشاندہی بہت ضروری,
2: خطوط بھی ارسال کریں, تو تاکہ ہم پروگرام کو آئندہ اور بھی بہتر بنا سکیں.
1: جی جی جاوید بھائی.
2: تو فیض بھائی اب گھڑی بھی ہے سامنے.
1: جی گھڑی, تو
2: گھڑی بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہے.
1: جی جی جی
2: بالکل, لیکن آپ سامعین کو,
1: تو سامعین کو چلتے چلتے یہ بتاتے چلے ہیں کہ اس پروگرام کی جو پیشکش تھی وہ محمد سرشار رحمت کی تھی.
2: بالکل.
1: تو سامعین آج بس اتنا ہی, اسی کے ساتھ آج کی بزم سے فیض رحمان
2: اور جاوید انور کو اجازت دیں.
1: خدا حافظ.

अभी आप समात फरमा रहे थे हमारा उर्दू कार्यक्रम बज़्म उर्दू। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मोहम्मद सरसार अहमद। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, प्रस्तुत है लोकगीत कार्यक्रम। आज की कलाकार हैं किरण पाठक और साथी।

0: while some just go through.
1: किरण पाठक से आप सुन रहे थे एक लोक भजन. अगला लोकगीत बस इस अंतराल के बाद.
2: Through the day, you could live the grand life with the Grand Vitara. As you move from city streets to open escapes, the strong hybrid keeps up seamlessly. No matter where the road takes you, you're always breathing in freshness with auto purify and PM2.5 display. And when every moment feels this grand, safety comes standard with 6 airbags. Visit your nearest Nexa showroom to live the grand life with the Grand Vitara Strong Hybrid. Nexa.
3: जय हिंद. पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया. अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है. नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है. डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं. अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता.
4: हमें गर्व है कि पिछले
5: पता है लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को. तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है.
4: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था. हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा.
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी.
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से.
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान.
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग.
6: डायल कीजिए 8700014242.
7: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242.

कार्यक्रम के अंत में आप सुन रहे थे एक झूमर। इसके साथ ही लोकगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की कलाकार थी किरण पाठक। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए इस वाद्य संगीत के साथ।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:01 हुए हैं। आप सुन रहे हैं हमारी आज की सभा के कार्यक्रम। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बॉर्डर 2 का ये नगमा।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म द गर्लफ्रेंड से। आवाजें हैं चिन्मयी श्रीपदा और हसीम अब्दुल वहाब की।

आप सुन रहे थे फिल्म तेरे इश्क में का गीत, जिसे गाया था नीतीश और जोनिता गांधी ने। कार्यक्रम के अंत में आइए अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म सिंघम का गीत सुखविंदर की आवाज़ में।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से, प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम गुलदस्ता।

दोस्तों, आज के गुलदस्ता में हम सुनेंगे दर्द भरे गीतों के बेताज बादशाह गायक मुकेश के गाए कुछ गीत।

दोस्तों, अगर फिल्म गायकी की बात करें और इन्हें गायकी में अगर दर्द भरे गीतों की बात करें तो शायद बॉलीवुड में मुकेश से बड़ा और कोई गायक नहीं था। वहीं इसके विपरीत अगर चुलबुली गीतों की बात करें तो किशोर कुमार सबसे आगे रहे, जिन्होंने अपने गीतों से दर्शकों को खूब झुमाया। लेकिन दर्द भरे गीतों की अगर बात करें तो शायद मुकेश ही एकमात्र ऐसे गायक थे जिनके गीतों को अगर हम तन्हाई में सुने तो शायद हमारी आंखें भर आए। लीजिए सुनिए इन्हीं का गाया एक और दर्द भरा गीत।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
3: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
4: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
6: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
4: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: दोस्तों, मुकेश के गाए दर्द भरे गीत, जिसके बारे में अभी आपसे हम बातें कर रहे थे, आइए सुनते हैं एक और गीत।

मुकेश ने न सिर्फ दर्द भरे नगमे गाए बल्कि डुएट सॉन्ग भी काफ़ी खूबसूरती से गाया। उनके द्वारा गाए गए कई गीत अमर हो गए। आइए उन्हीं गीतों में से एक गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के ठीक 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम नारी लोक।

0: नारी लोक सुन रही सभी बहनों को भारती का नमस्कार। बहनों, आज के नारी लोक को आरंभ करने से पहले बता दें कि आज क्या खास है। आज हम बहनें सुनेंगी पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता और फिल्म संगीत। आइए बहनों, आरंभ करते हैं आज की चर्चा से। बहनों, आज का समय महिला सशक्तिकरण का है। आज महिलाओं के हिस्से घर के साथ साथ बाहर की भी जिम्मेदारी है और घर की आर्थिक प्रगति में उनका काफ़ी योगदान अब होने लगा है। बहनों, कामकाजी महिलाएं अपने परिवार के लिए घर और बाहर दोनों ही मोर्चे पर डटी रहती हैं। लेकिन बहनों, जैसे हम घर का काम करते हैं तो उसमें भी बहुत तरह की चुनौतियां होती है, वैसे ही जब महिलाएं बाहर काम करने जाती हैं तो वहां भी उन्हें बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहनों, कार्यस्थलों पर अमूमन महिलाओं को लैंगिक भेदभाव, असमान वेतन, नेतृत्व के अवसरों की कमी, कार्य जीवन में बनाने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही असुरक्षा की भावना और कार्यस्थल पर उत्पीड़न भी उनकी प्रगति में बड़ी बाधाएं हैं। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि समान योग्यता और अनुभव के बावजूद अक्सर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है। लैंगिक भेदभाव और उनके प्रति पूर्वाग्रह यानी योग्यता पर शंका करना बहुत ही आम बात है। तो बहनों, आज ज़रूरत इस बात की है कि हम इस पूर्वाग्रह से मुक्त हों और महिलाओं को भी काम करने के लिए खुला आसमान हो जहां कोई भेदभाव ना हो। बहनों, अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं और लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। चार दो।
1: ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथा लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: पता है, दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
5: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: बहनों, अंतराल के बाद बहनों वापस लौटते हैं अपने कार्यक्रम की ओर और उठाते हैं प्यारे से गीत का आनंद।

0: बहनों, अब समय हो चला है भेंट वार्ता का। आइए अब सुनते हैं पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता। आज की इस भेंट वार्ता का विषय है कार्यस्थलों पर महिला सुरक्षा कानूनी प्रावधान। भेंट वार्ताकार हैं अधिवक्ता रामकुमार मिश्रा और इनसे बातचीत कर रही हैं नाओमी शांति हेम्ब्रम। बहनों, कार्यस्थलों पर महिला सुरक्षा आवश्यक है, मगर कोई भी ऐसी घटना घटती है जो महिला सुरक्षा के लिए खतरा है, तो इसके लिए कानूनी प्रावधान क्या क्या हैं, आइए इस भेंट वार्ता के माध्यम से हम जानते हैं।
1: बहनों नमस्कार, आज भेंट वार्ता का विषय है कार्यस्थलों में महिलाओं की सुरक्षा के कानूनी प्रावधान, और इस विषय पर हमें कानून के संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामकुमार मिश्रा। रामकुमार मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। महिलाओं की सुरक्षा के विषय में बहुत पहले से ही काफ़ी सोच विचार किया जा रहा है, और अब भी इस विषय पर बहुत नए नए प्रावधान, कानूनी प्रावधान किए जा रहे हैं। तो हम बिल्कुल आरंभ से ही जानना चाहेंगे कि संविधान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या क्या कानूनी प्रावधान किए गए हैं।
2: वैसे तो 44 से अधिक अधिनियम ऐसे हैं जो महिलाओं के लिए ही विशेष रूप से बनाए गए हैं
1: जी।
2: और यदि उनमें कुछ का अगर कुछ की गिनती अगर हम लें तो दहेज निरोधक अधिनियम है
1: जी।
2: घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम है, इमोरलिटी ट्रैफिक एक्ट है
1: जी।
2: सती प्रथा निरोधक अधिनियम है
1: जी।
2: इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड ऑफ वुमेन एक्ट है, चिल्ड्रन मैरिज एक्ट, रिस्ट्रेंट मुस्लिम पर्सनल लॉ है
1: जी।
2: मिनिमम वेजेस है, ताकि उन्हें न्यूनतम मजदूरी मिले
1: जी।
2: फैक्ट्रीज एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, मातृत्व लाभ के लिए अधिनियम बना हुआ है, हिंदू मैरिज एक्ट है, और फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट है जो बड़ा क्रांतिकारी कदम रहा है
1: जी।
2: फिर सीआरपीसी में भरण पोषण के प्रावधान दिए गए हैं, धारा 125 से लेकर 128 तक
1: जी।
2: फिर आईपीसी में 498A है, 304 डॉरी डेथ के बारे में प्रोविजन दिए गए हैं। फिर बाद में अभी हाल में फैमिली कोर्ट एक्ट आया, मुसलमानों के लिए मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट है, और कई कई ऐसे कानून आए हैं जो कि विशेष रूप से संविधान से शक्ति प्राप्त करके बनाए गए, और मूलतः इनका उद्देश्य है महिलाओं को सुरक्षा देना
1: जी। तो इन दिनों में, और जैसा कि आज का हमारा विषय भी है, बातचीत का हमारा विषय है कि कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानूनी प्रावधान दिए गए हैं या दिए जा रहे हैं, उन पर हम बातचीत करेंगे। क्योंकि हमें लगता है कि बहुत पहले तक इसकी बहुत ज़रूरत महसूस नहीं की गई होगी, क्योंकि वैसे भी महिलाओं का घर से बाहर जाकर कहीं नौकरी करना तो बहुत ही कम होता था, पर अब चूंकि महिलाएं बराबर की भागीदारी से हर कार्यस्थल पर कार्य कर रही हैं, तो क्या क्या कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान है
2: जी? एक अधिनियम पारित किया गया है 2013 में
1: जी।
2: जिसे सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 माना जाता है
1: जी।
2: ये अधिनियम बहुत गहन अध्ययन के बाद एक निचोड़ के रूप में, जैसे आप रामचरितमानस में देखते होंगे कि उसमें कहा गया है नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणी निगुस्तम, कई पुराणों को, उसी प्रकार कई अधिनियमों का निचोड़ है यह अधिनियम। और इस अधिनियम में कहा गया है कि कार्यस्थल पर, चाहे वह निजी कार्यस्थल हो या सरकारी कार्यस्थल हो, वहाँ ऐसा वातावरण करें कि महिला अपने को सुरक्षित महसूस करें। उनकी सुरक्षा की आवश्यकता कम है, मगर आप ऐसा लगे, ऐसा दिखे कि वो अपने को सुरक्षित
1: महसूस करें। तो ये सुरक्षा प्रबंध जो किए जाने हैं कार्यस्थलों पर, वो कहाँ से आरंभ होते हैं?
2: ये कई चरणों में है। सबसे पहला तो ये है कि जहाँ महिला काम करती है वहाँ हर जगह कंस्पिशियस प्लेस यानी दर्शनीय स्थल पे, जहाँ दिखता हो, लोग जो घुसते हो उस सामने में या कार्यस्थल पे, यह लिखा हो कि महिलाओं की इज्जत करें, उनकी उनको प्रतिष्ठा दें
1: जी।
2: और उनकी सुरक्षा करें, और अगर आप महिलाओं से अभद्र व्यवहार करते हैं तो यह दंडनीय अपराध है, ऐसा हर जगह लिखना होगा
1: जी।
2: दूसरा कि समय समय पर एक वर्कशॉप करें, एक कल्चर डेवलप करें जो सहयोगी हैं उनके अंदर ये भाव पैदा करें कि महिला आपकी सहकर्मी है और महिलाओं की इज्जत करना, उनको प्रतिष्ठा देना, उनको सुरक्षा देना आपका कर्तव्य है और दंडनीय अपराध भी है अगर आप ऐसा करते हैं। साथ साथ महिलाओं को जो जिस परिपेक्ष में रखा जाए उस परिपेक्ष में वो प्रत्यक्ष या परोक्ष भी असुरक्षा महसूस ना करें। इसके अलावा जो नियोजक है उसका यह कर्तव्य होता है, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो मैनेजर हो, ऑक्युपायर हो, कोई भी हो, उसका यह कर्तव्य होता है कि अपने यहाँ एक समिति बनाए और उस समिति में महिला सदस्य को रखे और पहले से यह समिति होना चाहिए जो महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में दे। इसके अलावा यदि किसी महिला के साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो 7 दिनों के अंदर वैसी समिति बनानी होगी और अगर कोई नियोजक ऐसी समिति न बनाता है और अपना प्रतिवेदन नहीं देता और महिलाओं को यह आश्वस्त नहीं करता है कि उसने उनकी सुरक्षा के लिए किया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले अपराध के लिए वैसे नियोजक को 50,000 रुपया दंड है और अगर अपराध की पुनरावृत्ति होती है तो दंड दुगना हो जाएगा।
1: तो किस किस तरह के ऐसे व्यवहार या दुर्व्यवहार जो अपराध की श्रेणी में आते हैं कार्यस्थलों पर महिलाओं के खिलाफ किए जाते हैं?
2: हाँ, ये ऐसा है कि प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई ऐसा भाव या कृत्य या मांग या आग्रह जिससे यौनाचार की भावना आती हो, जैसे सेक्स का डिमांड करना, कोई कर्मचारी साथ में महिला काम कर रही है तो उनसे यौन का मांग करना या नहीं तो कहीं कोई ऐसा इंगित करना, कुछ ऐसा व्यवहार दिखाना, संकेत करना जिससे लगे कि वो सेक्स का डिमांड कर रहा है, या अगर महिला कर्मचारी बैठी हुई है और उसके बगल में 2 पुरुष कर्मचारी हैं और ये लोग भी आपस में अगर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, महिला को कुछ नहीं कहा जा रहा है मगर इन दोनों के जो व्यवहार है अभद्र हैं और जैसे कि कोई पोर्नोग्राफी देखना या कोई ऐसा किताब देखना या कोई ऐसा चित्र देखना, 2 आपस में कर्मचारी महिलाओं को नहीं दिखा रहे हैं मगर दैट इज इन हर विजन, वह उनके भी नजर में है, वो भी एक अपराध है।
1: और कभी कुछ ऐसी अपशब्द बोल देना जो आम तौर पर हम लोग सोचते हैं कि ये बिल्कुल नागवार है महिलाओं की सुरक्षा या उनकी इज्जत या उनकी अस्मिता के मद्देनजर,
2: यह भी अपराध है। यह भी अपराध है। और कोई इशारा किसी प्रकार का इशारा करना मतलब प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से तो ऐसी परिस्थिति में भी वो अपराध है और इन अपराधों की सजा जो है वह भारतीय दंड विधान तय करती है इन अपराधों की सजा। इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होता है, जो आंतरिक ये मतलब गृह जांच होता है,

0: अलावा आईपीसी का दंड है
1: जी।
0: महिला को क्या क्या सुरक्षा दी जा सकती है, उसको वहां से हटा के कोई दूसरी जगह पर काम दिया जा सकता है, उसका ट्रांसफर किया जा सकता है। और ये ट्रांसफर कभी भी महिला को दंडित करने के लिए नहीं होगा,
1: उसको
0: हमेशा सुरक्षा के लिए। अगर आप कितना ही उसको बता दें कि तुम्हारी सुरक्षा हो रही है, अब ये कान पकड़ रहा है या गलती इसने स्वीकार कर लिया, मगर महिला अगर कहेगी कि नहीं मैं इस वातावरण में काम नहीं करूंगी, तो सुरक्षित वातावरण प्रदान करना पड़ेगा।
1: जी। और एक बात होती है, जैसे पहले भी ऐसा समझा जाता रहा है कि कुछ तो शर्म लिहाज झिझक के कारण से महिलाएं कई बार बातों को सामने नहीं ला पाती है, और दूसरी बात ये भी होती है कि अगर ऐसा कुछ होता है, मान लिया किसी ने संकेत से ही कुछ इस तरह से अभद्र कुछ व्यवहार दिखाया, तो उसको ज़रा साबित करना या प्रमाणित करना कठिन भी होता है, तो ऐसी स्थिति में भी महिलाएं अक्सर चुप रह जाती हैं, शांत रह जाती हैं, खामोश रह जाती हैं। तो इस स्थिति को भी थोड़ा स्पष्ट किया जाए कि ऐसी स्थिति में महिला कैसे अपनी सुरक्षा की बात पुख्ता तौर पर रख सकती है।
0: इस अधिनियम में कोई काल बाधिता नहीं है
1: जी।
0: मतलब कि किसी महिला के साथ अगर इस तरह का व्यवहार होता है तो कोई निश्चित अवधि नहीं दी गई है कि वह महिला
1: 24 घंटे
0: अंदर कभी भी बोल सकती है
1: जी।
0: जब वो सहज होगी
1: जी,
0: हो सकता है कि उसके मानसिक उसके ऊपर इतना आघात पहुंचा हो कि वो एक दिन दो दिन चार दिन वो ना बोलेगी, पहली बात। दूसरी बात कि यह कोई जरूरी नहीं है कि वह स्वयं बोले, वो अपनी माता को बोल सकती है
1: जी,
0: वो अपने पिता को बोल सकती है, वो अपने भाई को बोल सकती है, और किसी के माध्यम से भी उसका आरोप आ सकता है
1: जी।
0: हो सकता है कि इतनी गंदी बात किसी ने किया हो जो महिला अपने जुबान से दोहराना नहीं चाहती हो, तो वो जिससे सहज होगी उसको बोलेगी, और जो सहज व्यक्ति होगा वह आके, मगर महिला को भी स्वीकृति लक्षण देना पड़ेगा
1: जी। तो उसके अपने उस स्वीकृति से या ये कह देने से कि हाँ इस व्यक्ति ने मेरे साथ इस तरह का किया है, वो काफी होता है।
0: काफी होता है। उत्पीड़न, उत्पीड़न जो है, उत्पीड़न की परिभाषा ये है कि कार्यस्थल जाने तक, कार्यस्थल पर कार्यस्थल से वापस आने तक, घर में रहने तक
1: जी,
0: वो उत्पीड़न जब तक वह स्वतंत्र नहीं हो जाए मानसिक रूप से, यह मानसिक उत्पीड़न है, शारीरिक उत्पीड़न तो है ही, मानसिक उत्पीड़न में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब तक वह स्वस्थ मन की नहीं होगी, आघात मानसिक पहुंचता है, जब तक स्वस्थ मन की नहीं होगी तब तक उसके पास समय है वह इस बात को
1: क्योंकि मतलब आधार, समय देता, एक साल के बाद भी हो सकता है।
0: हाँ हाँ एकदम, आधार ही यही है कि कोई महिला क्यों ऐसा करेगी
1: जी। जी।
0: और हाँ। अगर किसी महिला ने मिथ्या शिकायत किया है
1: जी,
0: तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है।
1: अच्छा, तो ये फिर वो जो भी जांच करेंगे, जैसे हर संस्थान में या संस्था में कार्यालय में इस तरह की एक समिति का होना बहुत आवश्यक है।
0: हाँ।
1: और
0: उसमें कम से कम दो महिला का रहना आवश्यक है। एक महिला जो कि एनजीओ से आएगी
1: जी,
0: और एक महिला अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़ी जाति को प्रतिनिधित्व करने वाली होनी चाहिए
1: जी। और जो अध्यक्ष या हम कह लें कि प्रेसिडेंट या चेयर पर्सन हो, वो भी महिला ही होनी चाहिए,
0: महिला ही होनी चाहिए,
1: महिला अधिकारी हो तो बेहतर
0: जी।
1: तो किस तरह से कोई भी मामला जब सामने आता है तो उसकी छानबीन या सुनवाई, उसका क्या तरीका हो सकता है?
0: तरीका ये है कि महिला संभव हो तो लिखित शिकायत करे, और न लिखित शिकायत कर पा रही है तो वह अपनी भावना को व्यक्त करे, उसे कोई लिखेंगे और कोई महिला लिखेगी, और लिखने के बाद उसे पंजीबद्ध किया जाएगा, पंजीबद्ध करने के बाद जो संबंधित व्यक्ति है उसे सूचना निर्गत किया जाएगा, और जिसे सूचना निर्गत किया जाएगा, यह कोई जरूरी नहीं है कि उसके सामने ही कार्रवाई हो, यह जब भी कार्रवाई होगी तो कैमरा में कार्रवाई होगी, मतलब महिला का उत्पीड़न का कार्रवाई जन के सामने नहीं होगा, जब भी होगा तो कैमरा में होगा। और अगर महिला बहुत ज्यादा उत्पीड़ित है, इतना उत्पीड़ित है, तो जो व्यक्ति जिसने उत्पीड़न किया है उसका शक्ल आईने में दिखाया जाएगा
1: जी,
0: और ताकि महिला उस व्यक्ति का शक्ल देखे मगर वो व्यक्ति महिला को ना देखे
1: जी,
0: क्योंकि ये माना जाता है।

0: मतलब आमने सामने करने की जरूरत नहीं,
1: आमने सामने नहीं होगा और पब्लिकली भी नहीं होगा, क्योंकि एक बार तो उत्पीड़न हो गया, गंदी गंदी बातें बोली गई और फिर उसका दोहराया जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, कई बातें पूछेंगे, तो क्यों इस तरह की बात हो। इसीलिए यह अधिनियम बड़ा ही ठोस और सुदृढ़ बनाया गया, यह कह के कि अधिनियम बन जाने से भी एक मानसिक संतुलन बने।
0: जी बिल्कुल, और आपने बहुत ही व्यावहारिक तौर पर इन सारी बातों को हमारे सामने रखा है। कई बार लोग ऐसा समझते हैं कि कानूनी बातों को समझना ज़रा कठिन होता है, लेकिन आपने इन कानूनी प्रावधानों को बहुत ही सरलता से और सहजता से हमारे सामने रखा। अंत में आप और क्या कुछ कहना चाहेंगे?
1: मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि सोच में, व्यवहार में और आचार में बदलाव बिना लाए कानून बहुत कुछ नहीं कर सकती है। जब तक यह भाव मेरे हमारे अंदर नहीं आएगा कि मानवीय मूल्य है, महिला भी मानव है, महिला भी हमारे समान है, और महिला वही महिला है जो हमारे घर में माँ है, जो हमारे घर में बहन है, जो हमारी बेटी है, अगर जब ये भाव दिमाग में आ जाएगा तो कभी भी कोई पुरुष जो है वो ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। और जो नियोजक है उनका अपने दायित्व से भागते हैं नियोजक, नियोजक को चाहिए कि हमेशा ऐसा वातावरण पैदा करे कि जो कुंठा है, ये पुरुष के अंदर जो कुंठा है वो कुंठा जागृत ना हो।
0: जी, तो आपने बहुत ही विस्तार से इस विषय पर हमें बताया और बहुत ही बारीकियां इस कानून या जो भी कानूनी प्रावधान किए गए कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, उसके बारे में बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सूक्ष्मता से अध्ययन रखते हुए हमारे सामने सारी बातों को बहुत सहजता से हमें बताया। राम कुमार मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
2: अभी बहनें सुन रही थीं पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता। आज की इस भेंटवार्ता का विषय था कार्यस्थलों पर महिला सुरक्षा कानूनी प्रावधान। भेंटवार्ताकार थे अधिवक्ता राम कुमार मिश्रा। इनसे बातचीत कर रही थी नौमी शांति हेम्ब्रम। इस भेंटवार्ता के बाद बहनों आइए उठाते हैं चलते चलते गीत का आनंद। बहनों, मौसम कैसा भी हो, संगीत हर मौसम में आनंद देता है, मन को सुकून और शांति देता है और हमें नई ऊर्जा से भर देता है। आइए बहनों, ऐसा ही मधुर गीत हम सुनते हैं।

आप सुन रहे थे महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम नारी लोक। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूं अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
2: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे कल बहुत सुख पाओगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जीरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए एनसीईआरटी की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
3: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
2: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
3: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
2: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
3: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
2: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओं, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
3: श्रोताओं, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं। तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें, तो प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं,
4: कथी के रा...

0: और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
1: उसके मित्र ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर दें, 8 करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
1: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
2: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
1: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
2: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
1: श्रोताओं, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं। तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें, तो प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फोमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है, और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा, कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं? जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है? तो आपको बताते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओं, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यह लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरन की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरन कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरन भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरन यही मिलता है और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुमगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर दें, 8800-440-559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
3: साथियों नमस्कार।
4: नमस्कार साथियों।
3: साथियों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ यानी आखिरी पत्ता।
4: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
3: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे
4: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
3: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
5: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
6: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
5: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
6: यस।
4: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
3: उसकी मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
4: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
7: सू
5: जी,
7: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
5: जी हाँ।
7: भाई मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
5: जी डॉक्टर साहब।
7: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
5: मैं पूछती हूँ।
3: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
4: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
8: 15, 40
5: क्या?
3: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
8: 13, 12, 11 ओह
5: जॉन्सी,
8: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
4: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
8: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए हैं।
5: क्या कम हो गए हैं?
8: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
3: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था, जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
5: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
8: 6, now it's 6, 5, 4 ओह
5: जॉन्सी, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
8: Only 4
5: मेरी तरफ देखो
8: सू, only 4 ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
5: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
8: 3 पत्तियां।
5: पत्तियां?
8: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू,
5: हाँ हाँ,
8: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है,
5: क्या लगता है?
8: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
5: क्या जॉन्सी?
8: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
5: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
8: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
5: हाँ
8: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं,

0: दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
1: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
2: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
0: जैसे ही सुबह हुई, जॉन्सी ने सू से कहा,
1: सू, मेरी दोस्त।
3: हाँ जॉन्सी।
1: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
2: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
1: सू।
3: हाँ जॉन्सी।
1: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
3: हाँ बिल्कुल,
1: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
3: बिल्कुल जॉन्सी।
1: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
3: पत्ता?
1: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
3: हाँ हाँ, मैंने देखा, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
1: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
3: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
1: हाँ, हाँ।
0: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
0: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वहीं था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
3: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
1: बेहतर।
3: ये लो, कॉफी पियो।
1: थैंक यू
3: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
1: क्या हुआ?
3: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो

0: हो गई।
1: कौन बैरमैन? वही बुरे कलाकार?
0: हाँ।
1: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
0: हाँ वही।
1: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
0: हाँ वही मिस्टर बैरमैन।
1: ओह गॉड,
2: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था जॉनसी। मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
1: क्या?
2: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए पर वो आखिरी पत्ता
1: क्यों नहीं गिरा?
2: हाँ
1: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
3: जॉनसी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
2: जॉनसी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बैरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंच ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे।
1: ओह,
2: जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
1: पेंटिंग?
2: हाँ।
1: कैसी पेंटिंग?
2: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बैरमैन की पेंटिंग है जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
1: ओह, तो वो पेंटिंग है?
2: हाँ।
1: असली पत्ता नहीं है?
2: नहीं।
1: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
2: हाँ जॉनसी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
1: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा और सू, उन्होंने बना दिया।
2: हाँ जॉनसी,
1: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
2: हाँ, उन्होंने बना दिया।
1: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
2: हाँ
1: मास्टरपीस।
2: हाँ
1: मास्टरपीस, वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
4: डबडबाई आंखों से जॉनसी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
3: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉनसी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हो।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी पत्र।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बने। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। कलाकार हैं नूतन कुमारी। आरंभ में आइए इनसे सुनते हैं ये देवी गीत।

0: आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। कलाकार हैं, कलाकार हैं नूतन कुमारी। इनके गाए लोक गीत आप एक बार फिर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार के बाद। इसके लिए आइए शामिल होते हैं रांची के प्रसारण सभा में।
1: सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक एहसास है, एक स्त्री के मन की गहराई।
2: केंद्र ने नीट की पुनर्परीक्षा को लेकर 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर लगाया बैन। गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन का दिया निर्देश। कोल इंडिया की पहली कोल बेड मिथेन परियोजना के तहत झरिया में अगले एक साल में मिथेन गैस का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य। झारखंड हाई कोर्ट ने लॉकडाउन के समय राज्य के विभिन्न जिलों में पेड़ों की अवैध कटाई मामले में राज्य सरकार से मांगी जांच रिपोर्ट। स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग में रांची के चान्हो स्थित झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय को देश भर में पहला स्थान। राष्ट्रीय रैंकिंग में राज्य के 3 स्कूलों ने बनाई जगह। और FIH महिला हॉकी नेशंस कप में भारतीय टीम ने जापान को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने नीट की पुनर्परीक्षा संपन्न होने तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। यह रोक 22 जून तक लागू रहेगी। इधर केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा बैठक की। कल एक उच्च स्तरीय बैठक में गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया। श्री मोहन ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग ने बताया कि 1000 से अधिक रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया गया है। UPSC ने बताया कि अंक, कट ऑफ अंक और उत्तर सूची अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। भाजपा के मुख्य सचेतक से हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने दावा किया है कि झारखंड से निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत होगी। हजारीबाग में उन्होंने कहा कि नाथवानी 2 बार झारखंड से राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने झारखंड को कई सौगातें दी हैं।
3: परिमल नाथवानी जी के लिए उनके वोटर 81 हैं। सभी पार्टियों से और सभी विधायकों से निर्दलीय प्रत्याशी को वोट मानने का लोकतांत्रिक अधिकार है और मुझे पूरा विश्वास है कि जब 18 तारीख को वोट होगा और परिणाम आएगा तो परिमल नाथवानी जी विजयी होंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं है।
2: कोल इंडिया की पहली कोल बेड मिथेन CBM परियोजना के तहत धनबाद के झरिया में अगले एक साल में मिथेन गैस का व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। इस परियोजना से हजारों करोड़ रुपए के राजस्व के साथ साथ घरेलू रसोई उद्योग और उर्वरक क्षेत्र को स्वच्छ ईंधन मिलेगा। BCCL के CMD मनोज अग्रवाल ने बताया कि मुनिडी में CBM परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है और अगले एक साल में व्यावसायिक उत्पादन का लक्ष्य है।
4: तो हमारे BCCL के बहुत सारे माइंस, गैसी माइन, कोल माइंस में बेड में जो मिथेन पाया जाता है उस मिथेन को निकाल कर अपने ऊर्जा के स्रोतों में हम ला पाए, इस दिशा में मुनिडी में हमने लगभग 25 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का भंडार चिन्हित किया है और गैस का निकलना भी शुरू हो गया है और इसका कमर्शियल यूज पाइपलाइन बिछा करके विद इन 1 ईयर हम लोग इसको शुरू कर लेंगे और इसे लगभग 125 करोड़ पर ईयर का रेवेन्यू की प्राप्ति होगी।
2: झारखंड हाईकोर्ट में लॉकडाउन के दौरान रांची समेत कई जिलों में पेड़ों की अवैध कटाई मामले में राज्य सरकार की जांच रिपोर्ट मांगी है। इस पर प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता ने समय की मांग की। अदालत ने इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह तय की है। गौरतलब है कि रांची, पलामू, गढ़वा, जामताड़ा, चाईबासा आदि जिलों के जंगल से अवैध रूप से हजारों पेड़ काट दिए गए थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news@air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में रांची के चान्हो स्थित झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय ने 99.20% अंक लाकर देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। इस राष्ट्रीय रैंकिंग में झारखंड के 3 स्कूल शामिल हैं, जिनमें हजारीबाग का बिहारी बालिका हाई स्कूल 21वें और लातेहार का उत्क्रमित मध्य विद्यालय तुरीसात 64वें स्थान पर रहा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हजारीबाग के स्कूल को शौचालय और स्वच्छता प्रबंध और लातेहार के स्कूल को पेयजल और वर्षा जल संचयन में बेहतर कार्य के लिए सराहा है। धनबाद सांसद ढुलू महतो ने कहा है कि करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे गया पुल अंडरपास का निर्माण तय समय से पूरा हो जाएगा। वहीं गोविंदपुर में 329 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे पर बन रहे फ्लाईओवर का काम भी समय पर पूरा होगा। सांसद ने कहा कि दोनों परियोजनाएं क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी।
5: गया पुल चौड़ीकरण को लेकर लगातार धनबाद के लोग असमंजस की स्थिति में थे। कई एक बार टेंडर हुआ, मगर गुंडा माफियाओं के डर से लोग यहाँ टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं किए, मगर हम लोगों ने जाकर अपने इस क्षेत्र के दर्द और भावना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी के पास, अपने रेल मंत्री जी के पास हमने रखा और उन्होंने आश्वस्त किया कि डरने की बात नहीं है, मोदी जी है तो कोई भी काम नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है।
2: चतरा जिले में वन्य जीवों की सुरक्षा और वन पेड़ क्षेत्रों की प्रभावी गश्ती के उद्देश्य से वन्य जीव प्रबंधन योजना के तहत वन कर्मियों को 51 गश्ती बाइक उपलब्ध कराई गई है। इससे वन कर्मियों की पहुंच दूरस्थ वन क्षेत्रों तक आसान होगी। DFO मुकेश कुमार ने कहा कि इससे अवैध कटाई, अतिक्रमण, वन्य जीव तस्करी तथा वन संपदा की चोरी जैसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण में सहायता मिलेगी। रांची नगर निगम ने मॉनसून के दौरान शहर में जल जमाव से निपटने की व्यापक तैयारी की है। निगम ने सर्वेक्षण के बाद शहर के 108 ऐसे स्थानों की पहचान की है जहां बारिश के दौरान पानी जमा होने की संभावना रहती है। मेयर रोशनी खलको ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए नगर निगम ने 11 आधुनिक डी सिल्टिंग पंप खरीदा है, साथ ही 11 क्विक रेस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है।
6: 11 लोगों की टीम गठित हम लोगों ने किया है, जिसके माध्यम से जहां पर भी वाटर लॉगिंग हो रहा है वहां पर पूरे तैयारी के साथ पहुंच करके पानी कैसे निकाले उसके लिए वो प्रयास करेंगे। पर जहां जहां वाटर लॉगिंग होगा वहां वहां ये फोर्स पहुंच करके त्वरित कार्रवाई करेगा।
2: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 307 अंकों की बढ़त के साथ 76,571 पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी लगभग 75 अंकों की बढ़त के साथ लगभग 24,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। आज FMCG और IT के शेयर्स में अधिक खरीदारी हो रही है। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,38,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,52,000 रुपए प्रति किलो है। FIH

महिला हॉकी नेशंस कप 2025-26 में भारतीय महिला टीम ने जापान को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की और सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली।

सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन का दिया निर्देश। कोल इंडिया की पहली कोल बेड मिथेन परियोजना के तहत झरिया में अगले एक साल में मिथेन गैस का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य। झारखंड हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के समय राज्य के विभिन्न जिलों में पेड़ों की अवैध कटाई मामले में राज्य सरकार से मांगी जांच रिपोर्ट। स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग में रांची के चान्हो स्थित झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय को देश भर में मिला पहला स्थान। राष्ट्रीय रैंकिंग में राज्य के 3 स्कूलों ने बनाई जगह। और FIH महिला हॉकी नेशंस कप में भारतीय टीम ने जापान को 2-0, 2-1 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्स और एफएम के 110.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का शेष भाग। आज के हमारे कलाकार हैं नूतन कुमारी। इस भाग के आरंभ में आइए सुनते हैं इनसे ये झूमर।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकगीत। कलाकार थी नूतन कुमारी। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए धारावाहिक गंगा के सुरताल की 5वीं कड़ी। इस धारावाहिक के लेखक हैं राजेश रमाणा।

0: तेरा अपूर्व अमृत तुल्य जल हम लोगों के पापों का नाश करे, ऐसा जल जो सारी पृथ्वी का संपूर्ण सौभाग्य अर्थात शोभा रूप है, जो शिवजी की लीला से उत्पन्न संसार की शोभा है, जो श्रुतियों वेदों का तत्व है और जो देवताओं का छिपा हुआ पुण्य है।
1: गंगा कलकल निनाद करते हुए ऋषिकेश से करीब 30 किलोमीटर नीचे की ओर बहती हुई उत्तरांचल प्रदेश के पावन तीर्थ हरिद्वार के लिए प्रस्थान करती है। हरिद्वार हमारे पावनतम तीर्थ स्थलों में से एक है। लोग इसे ईश्वर से मिलन का द्वार मानते हैं, जो भारत के समस्त तीर्थ स्थलों में विशेष महत्व रखता है।
0: शिवालिक पहाड़ियों के चरणों में गंगा के किनारे बसा हरिद्वार पौराणिक काल से भक्तों का पवित्र स्थान रहा है। पुराणों में उसे मायापुरी नाम से पुकारा जाता था। इसके अतिरिक्त इसे गंगा द्वार और तपोवन नाम से भी जाना जाता था, लेकिन प्राचीन काल में इस स्थान का नाम कपिल स्थान था।
1: ऋषि मुनियों की भूमि हरिद्वार यानी तत्कालीन मायापुरी, शंख बजाते भागीरथ के पीछे जब गंगा इस क्षेत्र में पहुंची तो 7 तेजस्वी ऋषियों के आश्रम देखकर ठिठक गई।
0: शास्त्रों में वर्णन है कि गंगा आगे न बढ़ सकी तो भागीरथ ने 7 ऋषियों विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ तथा कश्यप से प्रार्थना की। ऋषियों की अनुमति पर गंगा 7 धाराओं में बंटकर बहने लगी और आगे पुनः एक धारा बन गई। ये क्षेत्र आज भी सप्त ऋषि आश्रम अथवा सप्त सरोवर के नाम से विख्यात है। यहाँ गंगा आज भी 7 धाराओं में बहती है।
1: हरिद्वार को पंचपुरी भी कहा जाता है। 5 पुरियों का ये तीर्थ शंकर भगवान का सिद्ध तीर्थ है, जिसमें मायापुरी आज का हरिद्वार है। हरिद्वार संस्कारों का तीर्थ है। मानव जीवन के सभी सनातनी एवं सारस्वत संस्कार माँ गंगा के तट पर हरिद्वार में आयोजित होते हैं।
0: भारत के विभिन्न जाति धर्म के लोग यहाँ पर बसते हैं और यहाँ हिंदी ही मुख्य भाषा है।
1: हरिद्वार की गरिमा एवं महिमा कितने महापुरुषों और कवियों ने अपनी लेखनी में सजाई है और उसका वर्णन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रसिद्ध चीनी पर्यटक हुएन सांग ने भी अपने भ्रमण वृत्तांत में गंगा की महिमा और पवित्रता का वर्णन किया है।
0: चलिए सुनते हैं हरिद्वार की गाथा, जो गंगा मैया की कृपा से पल्लवित और पुष्पित हुई है।

0: जहां जहां पर गंगा मैया बहती है वहां वहां पर ऋषि मुनियों का डेरा तथा देवी देवताओं का बसेरा है। एक तरफ मां मनसा देवी हैं, जो सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं, तो दूसरी तरफ चंडी देवी हैं, जो जन जन का दुख हरती हैं। ये वही पवित्र और महान धरा है जहां महाकुंभ और अर्धकुंभ मेलों का आयोजन होता है।
1: बृहस्पति ग्रह जब मेष राशि में प्रवेश करता है तब हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होता है। 12 वर्ष में एक बार महाकुंभ और 6 वर्ष में एक बार अर्धकुंभ का मेला लगता है। लाखों लोग इस पावन अवसर पर गंगा माँ के पावन जल में अवगाहन करके धन्य होते हैं।
0: सचमुच धन्य है माँ गंगे, तुमने भारत की धरती पर आकर कितने गांवों को बसाया है, सजाया है और कितनों को नवजीवन प्रदान किया है तथा मुक्त किया है। सूरज चांद व पवन भी तुम्हारा गुणगान करते हैं। तुम्हारा जितना भी गुणगान करें फिर भी कम है।

0: नित्यम शिवम सुंदरम माँ का वही रूप उसके अविरल अनवरत प्रवाह में यहाँ देखने को मिलता है।
1: शास्त्रों में वर्णन है कि श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन माता पिता को पेंगी में बैठाकर हरिद्वार तीर्थ कराने आ रहा था। मार्ग में प्यासे माता पिता के लिए जब वो जल लेने के लिए नदी के तट पर गया तो धोखे से राजा दशरथ के बाण ने श्रवण कुमार की जान ले ली। इसी संदर्भ में सुनते हैं ये गीत।

0: प्राण त्यागते समय श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से कहा, मेरे अंधे माता पिता प्यासे हैं, उन्हें जल लेकर पिला दीजिए।
1: राजा दशरथ ने श्रवण कुमार के माता पिता को ये दुखद घटना जैसे ही सुनाई, वैसे ही माता पिता बहुत व्यथित हुए। उन्होंने क्रोधित होकर दशरथ को श्राप दिया, जैसे हम पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार पुत्र वियोग में तुम्हें भी अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे। और इस प्रकार जब राम लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास पर गए तो उसी वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी।
0: शिव जो शाश्वत है, सत्य है, शिव दर्शन इस तीर्थ का प्रमुख लक्ष्य है। शिव के अनेक अनेक मंदिर यहाँ विद्यमान हैं। लोग गंगाजली में भरकर शिव पर चढ़ाते हैं। इस संकल्प से जीवन की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: माँ गंगा शिव जी की जटाओं से निकली है। गंगा के हर घाट पर उनका नाम गूंजता रहता है। इसकी निर्मल धारा पर्वतों से बहकर जन जन के पापों को धो रही है। साधु ऋषि मुनि तथा जितने भी नर नारी हैं, माँ गंगा सब तुम्हारा ही नाम जपते रहते हैं।
1: माना गया है कि भगवान शिव मानव जीवन के मुक्तिदाता हैं। सांसों के आरोह शिखर पर मंदिर बाबा अमरनाथ का, अवरोहों के सागर तट पर तीर्थ रामेश्वर धाम का, और उज्जैनी महाकालेश्वर कंठवास केदार का आसन, वाणी पावन गंग की धारा, कर्णप्रिय तट विश्वनाथ का।
0: पौराणिक मान्यता है कि संपूर्ण मानव शरीर में शिव का वास है। आइए मनोभाव से सुनते हैं ये गीत।

0: हे शंकर, आपके हाथ में डमरू, गले में सर्पों की माला, माथे पर चंद्रमा और शरीर पर बाघांबर वस्त्र है। साथ में पार्वती की गोदी में गणपति और द्वार पर नंदी है। भक्त जन आपका गुणगान कर रहे हैं, आप उनकी प्रार्थना स्वीकार करिए।
1: हरिद्वार में भगवान शंकर के अनेक सिद्ध मंदिर हैं। जो भी भक्त हरिद्वार आता है, यहाँ के पवित्र स्थान और मंदिरों के दर्शन अवश्य करता है। साथ में कनखल के सती मंदिर वो जरूर जाता है, जो कि हरिद्वार की उपनगरी है, जहाँ राजा दक्ष राज किया करते थे, जिनकी पुत्री सती ने शिव से विवाह किया था।
0: चलिए, हम नीलकंठ होते हुए सारे पवित्र स्थानों के साथ दक्ष प्रजापति मंदिर तक का सफर करते हैं, जहां पर सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। माया देवी के मंदिर में सती की नाभि गिरी थी। आज वो स्थान सिद्ध पीठ के नाम से जाना जाता है।
2: ओम नमः

0: श्रावण मास के प्रारंभ होते ही शिव भक्त कंधे पर कांवड़ सजाकर ब्रह्म कुंड का गंगा जल भरकर अपने इष्ट देव शंकर पर अर्पित करते हैं। इस आस्था के दर्शन बड़े ही मनोहारी हैं। हर आयु के शिव भक्त इस मेले में देखने को मिलते हैं। लाखों शिव भक्त इस मेले में पैदल चलकर अपने गंतव्य तक जाते हैं। कोई कोई तो लेट लेट कर अपनी पीठ पर गंगा जली बांध कर अपने गंतव्य शिव के पास जाते हैं। बड़ी दूर दूर से शिव भक्त हरिद्वार आते हैं और कांवड़ भरकर ले जाते हैं।
1: शीतकाल आते ही गंगा मैया का जल स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। भक्तों के साथ साथ प्रवासी पक्षी भी हरिद्वार भ्रमण को आते हैं, जो मुक्त गंगा के शीतल प्रवाह में अवगाहन करते हैं। उनका हरिद्वार भ्रमण का एक निश्चित समय है।
0: भ्रमण करते करते कब सांझ की वेला ढल जाती है पता ही नहीं चलता। भक्त गणों का विशाल जन समूह हर की पौड़ी के किनारे जमा होने लगता है। विभिन्न जाति धर्म के लोग तथा स्वदेशी विदेशी सब एकत्र होने लगते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है और हाथ में दीप प्रज्वलित करके गंगा माँ की आरती ये सभी करने लगते हैं। पूरे वातावरण में गंगा के कलकल नाद और संगीत की झनकार गूंजने लगती है। माँ की आरती के साथ हमारे सुरताल भी थिरकने लगते हैं। जय गंगे माता, जय श्री गंगे माता।

0: मोमेंटस प्रोडक्शन और उनके तकनीकी सहयोगी दासमती चार्टर, अशोक शरण, अखिलेश अखिल, नारायण साहू एवं विकी के साथ अगली कड़ी में गंगा की महत्ता और उसके इतिहास के साथ हम फिर प्रस्तुत होंगे।
1: हर हर गंगे।

0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड स्थित पहनिया पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में भाग लिया। उन्होंने मां मुंडेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 1 महीने में सहयोग शिविर के माध्यम से प्राप्त आवेदनों में से 90% निष्पादित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जनता से संवाद और जनता की समस्या का हल करना। इधर मुख्यमंत्री का अगला कार्यक्रम सिवान जिले में निर्धारित है। वहां वे पचरुखी प्रखंड के पपौर पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में शामिल होंगे तथा 415 करोड़ रुपए से अधिक की 44 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने पर आज से प्रदेश के सभी प्रखंडों में प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। 18 जून तक चलने वाले इन शिविरों में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवेदन, पंजीकरण, सत्यापन, ई-केवाईसी तथा लाभ वितरण की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि शिविरों में हेल्प डेस्क, प्रशिक्षित स्वयं सेवकों की सहायता और स्वास्थ्य जांच शिविर की भी व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को आवश्यक मार्गदर्शन और सेवाएं आसानी से मिल सके। पूर्व मध्य रेल 17 जून को होने वाली मद निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर पाटलिपुत्र और पटना जंक्शन सहित विभिन्न स्टेशनों से 14 विशेष ट्रेनों का परिचालन करेगा। एडीजी रेल डॉक्टर कमल किशोर सिंह ने बताया कि परीक्षा में लगभग 5.5 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है, जिसे देखते हुए आज और कल विभिन्न रूटों पर विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। पाटलिपुत्र जंक्शन और पटना जंक्शन से अररिया, नवगछिया, भभुआ रोड, गया, बक्सर, राजगीर और झाझा सहित विभिन्न गंतव्यों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर विशेष ध्यान देते हुए इस पुनर्परीक्षा के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया। श्री मोहन ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा शुरू होने के 24 घंटों के भीतर ही 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। एजेंसी ने कहा है कि सभी उम्मीदवारों के लिए सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उनकी टीम सर्वरों पर लोड की लगातार निगरानी कर रही है। एजेंसी ने यह भी आश्वासन दिया है कि सभी उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले समय पर प्रवेश पत्र मिल जाएंगे। 21 जून को निर्धारित राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सीमित और निश्चित अवधि के लिए टेलीग्राम एक्सेस पर रोक लगाने के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्णय का स्वागत किया है। एनटीए ने कहा है कि यह प्रतिबंध पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक

0: पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान औरंगाबाद, अरवल और रोहतास जिले के कुछ भागों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-आला सम्राट चौधरी ने आज कैमूर जिला के भगवानपुर ब्लॉक वाक़े पहनिया पंचायत में मुनक़दा सहयोग शिविर में शिरकत की। उन्होंने मां मुंडेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करके रियासत की खुशहाली के लिए दुआएं की। वज़ीर-आला ने जनसंवाद प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता 1 माह में सहयोग शिविर के तवस्सुत से मौसूला दरख्वास्तों में से 90% हल किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम का खास मकसद है आवाम से बात और अवामी मसाइल को हल करना। इधर वज़ीर-आला का आइंदा प्रोग्राम सीवान ज़िला में तय है। वहाँ वो पचरुखी ब्लॉक के पपौर पंचायत में मुनक़द सहयोग शिविर में शामिल होंगे और 415 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 44 तरक्याती मंसूबों का इजरा और संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-आला की आमद को मद्देनज़र रखते हुए ज़िला इंतज़ामिया ने सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में खिदमात, सुशासन और गरीब फलाह के 12 साल मुकम्मल होने पर आज से रियासत के सभी ब्लॉकों में ब्लॉक सहयोग सह जन कल्याण शिविर मुनक़द किए जा रहे हैं। 18 जून तक चलने वाले इन कैंपों में मरकज़ी और रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ मंसूबों से मुतालिक दरख्वास्त, रजिस्ट्रेशन, EKYC और फ़ायदा पहुँचाने की सहूलत एक ही मुकाम पर दस्तयाब कराई जा रही है। मुख्तलिफ अजला से हमारे नुमाइंदों ने बताया कि कैंपों में हेल्प डेस्क, ट्रेंड स्वयं सेवकों की मदद और सेहत जांच कैंप का भी नज्म किया गया है, जिससे लोगों को ज़रूरी रहनुमाई और खिदमात आसानी से मिल सकें। ईस्ट सेंट्रल रेलवे 17 जून को होने वाले एक्साइज कांस्टेबल दाखिला इम्तहान के पेश नज़र पाटलिपुत्रा और पटना जंक्शन समेत मुख्तलिफ स्टेशनों से 14 खसूसी ट्रेनें चलाएगा। ADG रेल डॉक्टर कमल किशोर सिंह ने बताया कि इम्तहान में तकरीबन 5.5 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने का इम्कान है, जिसे देखते हुए आज और कल मुख्तलिफ रूटों पर खसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। पाटलिपुत्रा जंक्शन और पटना जंक्शन से अररिया, नौगछिया, भभुआ रोड, गया, बक्सर, राजगीर और झाझा समेत मुख्तलिफ स्टेशनों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। मरकजी दाखला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने नीट UG री एग्ज़ाम से कबल तहफ़ और तैयारियों के जायज़ा के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। उन्होंने तलबा की सहूलत, हिफाजती इंतजाम और इम्तहान के अमल की शफाफियत पर ख़ास ध्यान देते हुए इस री एग्ज़ाम के लिए रियासती हुकूमतों की तैयारियों का जायज़ा लिया। दाखला सेक्रेटरी ने सभी रियासती हुकूमतों, यूनियन टेरिटरीज़ और मरकज़ी एजेंसियों को हिफाजती प्रोटोकॉल की तामील करने की हिदायत दी है। जनाब मोहन ने रियासतों और यूनियन टेरिटरीज़ रियासतों से तलबा के सफ़र को आसान बनाने की अपील की है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने मुकम्मल तआवुन का यकीन दिलाया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने बताया है कि आइंदा नीट UG री एग्ज़ाम 2026 के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सहूलत शुरू होने के 24 घंटों के अंदर ही 10 लाख से ज़ायद उम्मीदवारों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं। एजेंसी ने कहा है कि सभी उम्मीदवारों की आसानी के लिए उनकी टीम सर्वरों पर लोड की लगातार निगरानी कर रही है। एजेंसी ने यह भी यकीन दहानी कराई है कि सभी उम्मीदवारों को इम्तहान से कबल वक्त पर एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। 21 जून को मुकर्रा नेशनल इंट्रेंस एंड एलिजिबिलिटी टेस्ट नीट UG 2026 के री एग्ज़ाम को देखते हुए हुकूमत ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन पैगाम भेजने पर रोक लगा दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने महदूद और मुकर्ररा मुद्दत के लिए टेलीग्राम एक्सेस पर रोक लगाने के इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत के फैसले का इस्तकबाल किया है। NTA ने कहा कि ये पाबंदी री एग्ज़ाम के दिन और उसके फौरन बाद तक नाफिज रहेगी। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए पैगाम को नशर करने की सहूलत को भी बंद करने की हिदायत दी गई है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 से 3 घंटों के दौरान औरंगाबाद, अरवल और रोहतास अजला के कुछ हिस्सों में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242। सुनो ना।
0: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
0: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
0: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की, संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया, संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियो में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
3: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश है जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
2: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
4: बिल्कुल जागृति, देखिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले डिजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक

आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण उच्च गुणवत्ता

0: सिडनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
2: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
0: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के रूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे

0: सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित देशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विमर्श बैठक में ये बात कही।
1: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
0: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। AIR चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज और FM के 110.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में फिल्म प्यार किया है प्यार करेंगे का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म प्यार झुकता नहीं से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद, क्षमा करेंगे, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: रानी बक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
3: तिलका मांझी तो बहुत।
2: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
4: बख्शी जगबंधु तो
3: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
5: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
6: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
7: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: कार्यक्रम के अंत में आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म आप आए बाहर आए का एक दुकाना। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से, प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद के 3 बजे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम तरंग। कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और मैथाली सिंह। आइए आरंभ में सुनते हैं मैथाली सिंह की आवाज़ में ये गजल।
1: 12 साल

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कार्यक्रम के अंत में ये सुनते हैं भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की युगल आवाजों में ये गजल।

आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम तरंग, कलाकार थे भूपिंदर सिंह और मैथाली सिंह। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

0: आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत, मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स और एफएम के 110.1 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद के 3:25 हो चुके हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे हमारे केंद्र से विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। इसके लिए आइए शामिल होते हैं विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा में।
1: से दुख से टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी से बड़ी समस्या का सामना भी मुस्कुराकर कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है केवल परिस्थितियों का नहीं है बल्कि मानसिक मजबूती का होता
2: बिल्कुल।
1: है।
2: बिल्कुल, और मानसिक मजबूती व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित रहने, सही निर्णय लेने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये किसी जादू की, ये मतलब किसी जादू की तरह नहीं आती कि एकदम से किसी ने आपको मंत्र पढ़ दिया और आपने एकदम
1: आपके पास जादू की छड़ी आई, आपने गोल गोल घुमाया, खुल जा सिम सिम और ताला खुल गया।
2: बिल्कुल, ये ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा, बल्कि अनुभवों, धैर्य और सकारात्मक सोच से विकसित होती है। प्रतिस्पर्धा, तनाव

0: अपेक्षाएं और तेज रफ्तार जीवन कई बार मन को विचलित कर सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, और मानसिक मजबूती का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति कभी दुखी ना हो या उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। इसका जो मतलब है वो ये, दुख निराशा और कठिनाइयों के बीच भी हम खुद को संभालकर आगे बढ़ते रहें। गिरना जो है जीवन का हिस्सा है आरती, लेकिन हर बार उठकर खड़ा होना मानसिक शक्ति की पहचान होती है।
0: बिल्कुल, और अगर हम धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को अपना साथी बना लें तो कोई भी कठिनाई हमें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। क्योंकि अजय वो नहीं होता जो कभी हारता नहीं, बल्कि वो होता है जो हर हार के बाद फिर से खड़ा हो जाता है। जी, और एक बात का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए कि जिस भी चीज से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है वो ही हमारे ऊपर हावी होकर हमें अंदर से कमजोर बनाती है। क्योंकि वो हमारी कमजोरी का हमारा वीक पॉइंट बन जाती है ना, कि और वो अगर किसी को पता भी चल जाए ना
1: तो उसका फायदा उठाया जाता है। उसका फायदा उठाया जाता है, इसलिए जो कहते हैं ना कि अपनी कमजोरी मत बताइए किसी को। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं
0: तो इतने कमजोर बनिए ही मत, किसी भी कमजोरी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए।
1: बिल्कुल सही,
0: उसका सामना करिए डट के, तो वो कमजोरी आपकी कमजोरी रहेगी ही नहीं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए आरती, कि कोई कितना भी उकसाए, कोई कितनी भी कोशिश क्यों न करे, हमें शांत रहना चाहिए। उकसाने वाला हमारी बुरी प्रतिक्रिया चाहता है और हमें वो बिल्कुल नहीं देनी है, शांत रहना है। और अगर किसी को किसी भी बात के बारे में बताना है तो उसे बहुत विस्तार मत दीजिए, बल्कि जो सच है उतना बताइए, क्योंकि ज्यादा बोलना भी जो है फिर उसमें झूठ मिलाना पड़ता है, झूठ की मिलावट सी लगती है। तो आप दो टुक बात करें, जो सच है वो कह दें, फैक्ट्स जो है, और नहीं तो चुप रहें।
0: बिल्कुल, बहुत ज्यादा आप विस्तार से उसे बताने की कोशिश
1: मत करें, सफाई देना।
0: हाँ, उसको वही सफाई अपनी। और साथ ही अगर हम किसी बात से सहमत नहीं है तो सीधे ना कहना जरूरी है, उसके लिए बहुत ज्यादा तर्क देने की भी जरूरत नहीं है कि इसलिए उसलिए, है ना। तो सिर्फ ना कहना काफी है, ये हमारे अंदर की मजबूती को दिखाता है। अगर कभी कोई बहस हो जाए या किसी बड़ी बात पर प्रतिक्रिया देनी है तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए।
1: होता क्या है, हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। हाँ, वहीं पर हम गलत हो जाते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया हमारे गुस्से की वजह से आ सकती है या हमारे अंदर जो इमोशंस हो रहे हैं, जो भावनाएं आ रही है ना, उसकी वजह से हो सकती है। हम जब ठंडे दिमाग से प्रतिक्रिया देते हैं तो वो बिल्कुल अलग होती है,
1: शांत हो जाते हैं। कई बार तो प्रतिक्रिया देने का मन भी नहीं करता, जब आप शांत रहते हैं, अपने आप को थोड़ा टाइम देते हैं ना आरती, तो लगता है अरे जाने दो ना, क्या पढ़ा इन बातों में। और आपने तुरंत प्रतिक्रिया दी नहीं तो चार बातें गलत आपके मुंह से निकली नहीं, क्योंकि उस वक्त आपके भीतर बहुत सारी भावनाएं जो है घूम रही होती हैं और आपको समझ नहीं आता कि आप क्या कहने जा रहे हैं। तो थोड़ा रुक कर सही होकर बोलना जो है वो आपकी आंतरिक मजबूती को दिखाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कभी कोई मुश्किल परिस्थिति में हो, अपने को बचाव की स्थिति में लाकर घबराने की बजाय हमें चाहिए कि हम बिना घबराए सामने वाले से प्रश्न करें और खुद को मजबूती के साथ प्रस्तुत भी करें।
0: बिल्कुल, क्योंकि जहां हम थोड़ा सा भी पीछे हटने लगते हैं ना, वो एक हिसाब होता है ना कि आप आक्रमण की मुद्रा में रहे हैं ना कि डिफेंस में। जहां हम डिफेंस में अपने को बचाव की स्थिति में ले आते हैं ना, वहीं हम पे लोग हावी होने लगते हैं। तो आप ऐसा स्थिति अपने आपको कभी अपने लिए मत लेकर आइए। तो आप प्रश्न पूछिए, अगर आप हम पे ऐसा कुछ कह रहे हैं, हमारे लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं, ये क्यों, कैसे, ये जरूर आप पूछिए।
1: बिल्कुल, सवाल पूछने, प्रश्न खड़े करने बहुत जरूरी हैं।
0: बिल्कुल,
1: और उसके बगैर अगर आपने अपने आप को अपना कदम पीछे खींच लिया तो लोग आपको कमजोर समझकर बस वहीं पर आप पर वार भी कर देते हैं।
0: बिल्कुल, फिर हम अगर सही भी होंगे ना तो भी कोई नहीं,
1: गलत माने जाते हैं। इसलिए किसी की बात पर आंख बंद करके एक तो विश्वास नहीं कीजिए, और अपनी बात को मतलब ये सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूँ और सामने वाला क्या सुन रहा है। हमें धोखेबाजी से भी बचाना है और कभी भी अपनी भावनाएं हर किसी के साथ साझा नहीं करनी, क्योंकि हर बार हर कोई हमारी भावनाओं को आदर से नहीं देखता। होता क्या, हम इमोशनल होते हैं और हर एक को अपनी बात कह देते हैं।
0: बिल्कुल, और मतलब किसी के ऊपर भी विश्वास मत करिए कि हाँ हमने ये कह दिया कि नहीं नहीं हम आपकी बात को नहीं करेंगे। अगर उसने कभी भी किसी इमोशन में आके कह दिया तो फिर आपकी परेशानी
1: सारी परेशानी खड़ी हो जाती है, फिर आप अपनी सफाई देने लगते हैं। लेकिन इस वक्त हमें सफाई ये देनी है आरती,
0: अंतराल का समय हो गया है,
1: एक छोटा सा अंतराल लेते हैं।
0: जी,

0: तो अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बात क्या चल रही थी?
1: बात हम मानसिक मजबूती की कर रहे हैं। तो और उसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो इस हर किसी के सामने अपनी भावनाओं की मुट्ठी को मत खोलिए। और हाँ, जब कोई बहुत तेज आवाज में और गुस्से से बात कर रहा हो तो खुद को शांत और संयत स्वर से बात करने पर वो धीरे धीरे हमारी आवाज के स्तर पर आने लगेगा। अपनी किसी भी सही बात के लिए 10 लोगों की हामी का इंतजार मत करिए।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: क्योंकि ना देखिए, जब हम बहुत तेज आवाज में कोई हमसे बात कर रहा हो ना, तो जब हम अपने बिल्कुल संयत स्वर से धीरे और जैसे हम बोलते हैं उस हिसाब से बात कर रहे होते हैं ना, तो उसको भी लगता है ना कि अरे सब मुझे देख रहे होंगे कि मैं ही इतनी तेज आवाज में चिल्ला के बात कर रहा हूँ और सामने वाला तो बिल्कुल आवाज में धीरे धीरे से बात कर रहा है। तो धीरे धीरे उसको भी एहसास होगा, वो आपके लेवल पे आना शुरू होगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है कि वो बिना बात के चीख रहा है या चिल्ला रहा है ना
1: जी।
0: तो और एक बात और है आरती, जब हम सॉरी कहते हैं कई बार देर से आए, तो उसकी जगह हम बहुत कुछ कह सकते हैं, यानी सकारात्मक रूप से हम उसे धन्यवाद भी दे सकते हैं,
1: आपने इंतजार किया,
0: आपने हमारा इंतजार किया,
1: है ना। थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, एक सकारात्मक पहलू आ जाएगा इस चीज के सामने,
0: है ना।
1: और जैसे कि हमने कहा कि हामी मत भरिए, मतलब अगर आप सही हैं किसी चीज को लेके आप सही हैं, तो आप उसको अप्रूव कराने के लिए
0: 10 लोगों के पास मत जाइए,
1: है ना, कि देखो देखो ये चीज सही है ना, देखो देखो ये चीज सही है ना। कहते ना कि चार लोग क्या कहेंगे, तो आप उन चारों को भूल जाइए।
0: और ऐसा होता है, लोग जो है 10 लोगों के पास जाकर पूछते हैं, है ना,
1: हम सही हैं, सही हैं। अगर आप सही हैं तो आप
0: सही हैं,
1: बिल्कुल अपने दिमाग से, अपने आपसे निर्णय लीजिए।
0: आपका अपना निर्णय कोई भी हो सकता है, उसमें आपको डरना किस बात का। अगर आपका निर्णय किसी का नुकसान नहीं कर रहा है तो आपको डर नहीं होना चाहिए, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है आरती, हम लोग भावुक लोग जो होते हैं ना, मैं भी वैसी ही हूँ कि मैं लोगों के साथ भावनाओं में बहती हूँ। मतलब किसी ने प्यार से बोला तो उसके साथ अरे कितनी अच्छी है ना, कितना अच्छा है। और लोगों को पढ़ना सीखना चाहिए, जो
1: बहुत जरूरी है,
0: हम नहीं सीख पाते हैं, या भावुकता, जैसा मैंने कहा, हम भावुकता में बह जाते हैं। तो लोगों को पढ़ना सीखें, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है जब हम उन्हें ना बोलते हैं।
1: बारीकी से ध्यान दीजिए, जब आप उनको ना बोलते हैं
0: तब उनके होते हैं,
1: तब उनके चेहरे पे कैसे भाव आते हैं,
0: ये आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने जब तक हाँ भरी तब तक आप बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ही आपकी किसी भी बात पर ना हो गई आप बुरे हो जाते हैं, है ना, आपके बारे में 10 सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है। तो अपने व्यक्तित्व को अजय बनाइए, अपने व्यक्तित्व को अंदर से मजबूत बनाइए।
1: और इसके लिए जरूरी हम दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से सुने, उनको ऑब्जर्व करना सीखें, उनको ध्यान से उनको देखें कि वो कैसे प्रतिक्रिया देते हैं या हमारी किस बात पे कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखें। और जब भी हमें क्रोध आए या गुस्सा आए तो हमें अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि क्रोध हो या गुस्से में हम बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए।
0: बिल्कुल सही।
1: और बात में हमें उसका पछतावा भी होता है।
0: हाँ।
1: लेकिन शब्द ऐसे हैं ना, जब निकल जाते हैं तो वापस नहीं आ सकते।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो इस बात का हमें ध्यान रखे, बोलना
0: समझ के बोले, तोल मोल के बोले। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हर बार हम गणित नहीं संबंधों में लगा पाते और अपना समझ कर कई बार हम बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन ऐसा फिर भी न कहें जो बाद में आपको पछतावा दे।
1: बिल्कुल।
0: और हम सबकी आदत होती है कि अगर कोई हमारी तारीफ कर दे, जैसा कि तुम मेरी अक्सर तारीफ करती हो, आज नहीं की है तुमने, तो मैं तुमसे नाराज हो गई हूँ। ऐसे लोग हमसे नाराज हो जाते हैं जब हम उनकी तारीफ नहीं करते हैं, या कर देते हैं तो हमारी उसमें पसंद वाली लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। तो इससे हमारी कमजोरी जो है लोगों के हाथों में आ जाती है,
1: क्योंकि लगता है ना उनको कि जैसे कि मैं अभी आपकी तारीफ करूं और किसी ऐसी बात की तारीफ करूं जो आप नहीं करती हैं, आपको अंदर से तो लगेगा कि हाँ ये तो मैं करती नहीं हूँ, फिर भी मेरी तारीफ हो रही है, तो लेकिन आपको लगेगा अच्छा लगेगा। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए।
0: हाँ,
1: क्योंकि मैं ये चाटुकारिता में आता है,
0: ये चाटुकारिता में आता है। और फिर पता है क्या होता है, हम हर दिन उस तारीफ की उम्मीद करने लगते हैं सामने वाले से, और जिस दिन उसने नहीं की वो इंसान हमारे लिए बुरा हो जाता है। इसलिए चाटुकारिता की श्रेणी में आपको नहीं आना चाहिए।
1: और अपनी खूबी अपनी खामी हर इंसान को पता होती है।
0: बिल्कुल होती है। और मजबूत मन ही वो जादू है जहाँ व्यक्ति हर परिस्थिति में चमकने की क्षमता बनाता है, अपने आप को चमका लेता है कि किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाना है। इसलिए अपनी खूबियां और अपनी खामियां खुद टटोलनी होगी।
1: बिल्कुल। और इसके लिए आप दूसरों पे निर्भर ना रहे कि वो आपकी तारीफ करेंगे मंदाकिनी जी।
0: जैसा मैंने आज उम्मीद की थी कि आरती आते ही मेरी तारीफ करने वाली है, पर आरती आज तारीफ नहीं की।
1: मैं तारीफ करती हूँ लेकिन ये चीज उसमें नहीं करती हूँ कि भाई कि आपको चाटुकारिता लगी इस चीज को। मैं एकदम सही तरीके से आपकी जिस चीज की भी तारीफ करती हूँ करती हूँ।
0: तो मैं आगे उम्मीद रखती हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद रखिए, अच्छे से तारीफ।
0: तो चलिए, आप श्रोता उम्मीद कर रहे हैं कि हम एक गीत सुनवा दें।
1: जी

0: हाँ, तो अब हम बात करते हैं सखी विशेष के अंतर्गत मेघा मलिक की।
1: अरे वाह, बिल्कुल
0: जी। तो रंगों की दुनिया में सपनों को आकार देने वाली एक सृजनशील व्यक्तित्व का नाम है मेघा मलिक। उन्होंने केवल डिजाइन ही नहीं बनाए बल्कि अपने विचारों को पहचान भी दी, उत्पादों को एक व्यक्तित्व दिया और जो व्यवसाय दिखा रहे थे उनको यादगार ब्रांड्स में बदलने का जादुई काम उन्होंने किया। तो मेघा मलिक भारतीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजाइन उद्योग के एक प्रतिष्ठित उद्यमी है।
1: हाँ बिल्कुल, और उन्होंने 2003 में डिजाइनर पीपल की स्थापना की। विदेशों में अपनी पहचान बना लेने के बाद भारत में डिजाइनर पीपल ने 2012 में अपना आधार स्थापित किया, जो आज भारत की प्रमुख ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों में भी गिनी जाती है। और उनकी शिक्षा की बात करें आरती, तो उन्होंने कला और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त की है
0: जी। और उनके पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में MBA और फाइन आर्ट्स की डिग्री है। कला के प्रति उनकी गहरी रुचि और रचनात्मक सोच ने उन्हें डिजाइन एवं ब्रांडिंग की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मेघा की कंपनी की बात करें तो ये एक पेशेवर क्रिएटिव एजेंसी है जो ब्रांडिंग, पैकेजिंग और प्रिंट और डिजिटल मार्केटिंग के लिए विजुअल कम्युनिकेशन में विशेषज्ञता रखती है।
1: बिल्कुल, और पैकेज डिजाइनिंग, वेब डिजाइन और विकास, ब्रांड विकास जिसमें शामिल है लोगो डिजाइन, स्टेशनरी डिजाइन, कॉर्पोरेट डिजाइन और इसके साथ कैटलॉग, बिजनेस का डिजाइन, साइनेज और वे फाइंडिंग डिजाइन, कस्टम प्रिंटिंग, अन्य सेवाओं में जैसे वाहन रैप डिजाइन, प्रदर्शनी स्टॉल डिजाइन, सोशल मीडिया पेज डिजाइन, कितनी सारी चीजें शामिल है
0: जी। और डिजिटल मार्केटिंग जिसमें शामिल है सामाजिक माध्यम बाजारीकरण, सर्च इंजन अनुकूलन, पीपीसी सेवाएं, इसके अलावा ब्रांड परामर्श, पैकेजिंग परामर्श, उत्पाद डिजाइन परामर्श। मेघा मानती है ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक ऐसी सेवा है जो किसी भी व्यवसाय के लिए अधिकतम ग्राहक लाती है। किसी भी उत्पाद को खरीदने के 70% से अधिक निर्णय स्टोर में ही 5 से 7 सेकंड के भीतर ले लिए जाते हैं। कि कितना सुंदर दिख रहा है वो बस इसी बेस पे उसे ले लिया जाता है।
1: क्या बात है।
0: और इस प्रकार उत्पाद की दिखावट खरीद निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बात अच्छी तरह समझते हुए कि किसी भी ब्रांड को प्रतिस्पर्धा के बीच अलग पहचान दिलाने के लिए सही ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग बेहद जरूरी है। ये वो चीजें हैं जो उत्पाद को ग्राहकों का ध्यान और विश्वास आकर्षित करने में मदद करती हैं।
1: और इसलिए चाहे छोटा व्यवसाय हो या बड़ा, अपने उत्पादों और सेवाओं की उपयुक्त ब्रांडिंग और मार्केटिंग की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत में अगर ब्रांडिंग और पैकेजिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मेघा मलिक ने जो है डिजाइनर पीपल की शुरुआत की, और उनका मानना है कि किसी भी उत्पाद की सफलता केवल उसकी गुणवत्ता पर नहीं बल्कि उसकी पहचान, प्रस्तुति और उपभोक्ताओं से जुड़ाव पर भी निर्भर करती है।
0: बिल्कुल, और उनकी इसी सोच ने उन्हें एक ऐसी संस्था बनाने के लिए प्रेरित किया जो छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूत ब्रांड पहचान दिला सके। क्रिएटिव डायरेक्टर और ब्रांड कंसल्टेंट के रूप में मेघा मलिक ने हजारों व्यवसायों को नई पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी एजेंसी ने खाद्य पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन, उपभोक्ता उत्पादों और अन्य कई क्षेत्रों के ब्रांडों के लिए पैकेजिंग, लोगो, विज्ञापन और डिजिटल रणनीति विकसित की है।
1: हाँ बिल्कुल, और मेघा मलिक का जो नेतृत्व है नवाचार, शोध और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। वो मानती हैं कि प्रभावी ब्रांडिंग केवल आकर्षक डिजाइन नहीं बल्कि उपभोक्ताओं की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझने की कला है, और उनकी कार्यशैली में रचनात्मकता और व्यावसायिक रणनीति का संतुलित समन्वय भी हमें दिखाई देता है।
0: बिल्कुल, उनकी संस्था ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत सारे ब्रांड्स के साथ में काम किया है, और मेघा मलिक को भारत की सफल महिला उद्यमियों में भी स्थान मिला है। उन्होंने ब्रांडिंग और पैकेजिंग के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करते हुए अनेक व्यवसायों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में योगदान दिया है।
1: और उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है आरती कि जब कला और प्रबंधन को खूबसूरती से मिलाया जाता है ना, तब वो रचनात्मकता व्यापार की नई ऊंचाइयों को हासिल करती है। तो मेघा मलिक आज उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने जुनून को उद्यमिता में बदलकर समाज उद्योग जगत में एक नई पहचान बनाना चाहती हैं।
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: और बहुत ही अच्छी बात है ये। और महिलाएं जो कितनी तेजी से अपना नया पहचान, अपनी पहचान बना रही हैं, अपने आप को स्थापित कर रही हैं।
1: बिल्कुल, तभी कहा जाता है देखिए कि दूर के ढोल सुहावने, मतलब अभी जो हम बैठे बैठे यहाँ से कह सकते हैं कि कितने मजे हैं ना मेघा मलिक के, लेकिन उस शानदार जीवन के लिए कितना संघर्ष किया है इस बात को अभी अभी आपने जाना। तो जो अगला विषय हमारा रहेगा वो यही रहेगा कि मुहावरों की जो दुनिया है दूर के ढोल सुहावने, उस पर हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, उस पर बात करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन थोड़े से एक छोटा सा गीत क्यों ना सुने।
1: अच्छा, आपको गीत की तलब हुई गई है चाय की तरह
0: जी।
2: जरा नजरों से कह दो जी,

0: तो धूल के ढोल सुहावने। कई बार ऐसा होता है ना कि वो कोई चीज हम खरीदते हैं ना, वो ऐसी देख के तो देखने में इतनी सुंदर लग रही होती है उसमें, जब हम शॉपिंग ऐप पे जाते हैं और जब वो आती है पास, तो एकदम से लगता है कि ये क्या चीज हमारे पास आ गई।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा, कई बार हम महिलाएं खासतौर से जो ड्रेस के प्रति बड़ी सावचेत रहती है ना, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय बहुत सुंदर ड्रेस लगती है, लेकिन जैसे ही वो घर पे आती है ना आरती, यकीनन बहुत बार लगता है कि ये क्या ले लिया हमने।
0: बिल्कुल, और फिर वापस करो ये करो, गुस्सा
1: सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है,
0: इतना समय आके तो वो आती है ड्रेस।
1: इसलिए दूर के ढोल सुहावने लगना जो है, वो हमारे श्रोता लिखते हैं कि जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थिति दूर से अच्छी और आकर्षक दिखाई देती है, वो पास जाकर उतनी अच्छी होती नहीं है। उदाहरण जैसे गाँव के लोग शहर की चमक दमक देखकर आकर्षित होते हैं, पर शहर की भागदौड़ और महंगाई देखकर पता चलता है, फिर कहते हैं कि दूर के तो ढोल ही सुहावने।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने एकदम सही तरीके से इस चीज को बताया। और एक और मेरे श्रोता है जो कहते हैं कि यदि आप पहाड़ों को दूर से देखते हैं तो बड़े सुंदर दिखाई देंगे, जितना करीब जाओगे उतना ही ऊबड़ खाबड़ दिखाई देंगे। जैसे चांद को रात में देखते हुए बड़ा ही सुंदर दिखता है, लेकिन साल जब मतलब उस पर जब यान भेजा गया तो उस पर देखा कि उसमें कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, कैसा अजीब सा है वो जगह। तो वही है ना कि दूर के ढोल सुहावने, यहाँ से देखने में कितना सुंदर
1: चमकता है, सुंदर लगता है। हम उसकी तुलना करते हैं हरे चेहरे से, चांद की तरह सुंदर चेहरा है ना, चांद जैसा हमारा टुकड़ा।
0: जी जी जी, लेकिन जब से वहां पे पहुंचे तब से थोड़ा
1: पता चलता है कि भाई जो है दूर से जो दिखता है वो पास आके पता चलता है कि सच्चाई क्या है। एक श्रोता लिखते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं और नजदीक बजे तो डब डब, एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है जिसका आम आदमी में भी बहुत प्रयोग होता है। इसका अर्थ है कि जो चीजें या परिस्थितियां हमसे दूर होती हैं वे हमें बहुत आकर्षक और अच्छी लगती हैं, लेकिन पास आने पर उनकी असलियत समझ में आती है। कहने का मतलब है कि रिश्ता कैसा भी हो, दोस्ती परिवार, एक दूरी मेंटेन करनी ही चाहिए, तब वो सुंदर लगता है या संभालना अच्छा लगता है। नजदीक जाने पर सुंदरता तो दिखती नहीं, उसकी क्रूरता भी दिखाई देने लग जाती है।
0: तो हमारे एक श्रोता, इन्होंने एक गुजराती मुहावरा भी इसको लेके लिखा है कि दूर थी डूंगरा रलियामणा। जी, यहाँ डूंगरा मतलब पहाड़ या पर्वत और रलियामणा मतलब सुहाना, यानी मतलब दूर से सुनाई दे रही आवाज या दृश्य सुहाने लगते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही होती है। तो वही अभी हमने जो
1: कहा कि पहाड़ों को दूर से जब हम देखते हैं, वही एक श्रोता भी लिखते हैं कि कई बार क्या है तो दूर से मधुर आवाज लगती है हमें, पास आने पर वही आवाज कानफोड़ लगने लगती है, अनजानी चीजें हमेशा अधिक आकर्षित लगती हैं, वास्तविकता हमेशा बाहरी रूप से अलग होती है।
0: बिल्कुल,
1: और वही एक श्रोता कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने ही होते हैं, ये हमारी आदत होती है कि दूसरों को देखकर हम आह भरते हैं कि काश हमारी जिंदगी भी दूसरों की तरह आरामदायक होती, जब करीब जाकर उनकी असलियत पता चलती है तो लगता है कि भाई हम जैसे हैं
0: वैसे ही सही है। जी, तो बहुत सी चीजें जो हमें दूर से तो वो लगती है, जैसे हमारे श्रोता जो लिखती हैं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं और नजदीक बजे तो जैसे आपने बताया भी इनके बारे में, तो इन्होंने बताया कि किस तरह से कठिनाई और कमियां हमारे सामने आती हैं उस चीज के लिए लेके, तो बहुत से जो श्रोता है हमारे इसी चीज को लिख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है।
1: बिल्कुल, लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी आरती कि दूर से आरती और मंदाकिनी जैसी सखियां भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन यकीनन पास आने पर भी वो अच्छी लगेगी।
0: ऐसा नहीं है कि आपको निराशा हाथ लगी है, आप बिल्कुल हमसे मिलिए तो हम आपको और बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगे
1: जैसे हम अभी आपको लग रहे हैं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।

0: हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से बजट पे तकरार होती है। तो इस पर हमारे श्रोता ने लिखा है, एक श्रोता में लिखते हैं कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि घर के सभी सदस्यों में, खास करके पति पत्नी में, इस बात पर तकरार होती है। परंतु स्वयं मैंने धर्म पत्नी और बच्चों को शुरू में ही बैठा कर समझा दिया था कि बेटियों बेटियां और बेटे सभी टॉप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे, जिनके खर्चे बहुत ज्यादा हैं, इसलिए कोई भी अननेसेसरी खर्चे हम में से कोई नहीं करेगा, ताकि घर का बजट ना बिगड़े। और माता रानी की कृपा रही कि सभी ने माना और आज तक इस बात पर सभी कायम है, तकरार होने की नौबत ही नहीं आई।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप समझदारी से चले, आपके बच्चे भी समझदार निकले, कि इस बात पर तकरार नहीं होती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आम मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है घरेलू बजट पर तकरार होना। जब घर चलाने वाले अतिरिक्त पैसे की मांग करें तो कमाने वाले के मुंह से निकलता है, अरे अभी तो इतना पैसा हो जाता था, पर अब क्या कारण है, मतलब इतने पैसे देता था उसमें तो काम निकल आता था। और फिर पता चलता है कि विवाद सामने आ गया। विवाद का मुख्य कारण लगातार बढ़ती महंगाई, रसोई के सामान, दूध गैस के बढ़ते जो दाम है, घर की भौतिक वस्तुएं, फ्लैट, बच्चों की शिक्षा, ईएमआई, ये सभी जो है मध्यम वर्गीय परिवारों के मासिक खर्चों में जो है भारी वृद्धि हुई है। सभी बातों से सीमित आय और बढ़ते खर्चों के बीच तालमेल न बैठने से घर में तनाव और बहस की स्थिति पैदा हो जाती है।
0: जी, और एक श्रोता जो लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत आवश्यक है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन जाता है। सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं होता, तब मतभेद पैदा होने लगते हैं। यदि परिवार के सदस्य मिल बैठकर आय, खर्च और बजट की योजनाएं बनाएं तथा एक दूसरे की जरूरतों को समझें, तो अधिकांश समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन जाता है। सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाएं पूरी करना संभव नहीं होता, तो मतभेद पैदा होते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच में क्या होता है, आपस में तनाव।
0: देखिए, आपका एक श्रोता का हम लोगों ने दो दो बार उसको उनको पढ़ लिया।
1: हाँ।
0: उनको इतना ज्यादा इनका बढ़िया उन्होंने इस चीज को लिखा तरीके समझा के, क्योंकि बजट की जो चीजें होती है ना,
1: बिल्कुल
0: वो यही चीजें होती है, हर घर की समस्या ही यही है। जो कि मतलब जब भी बजट बनाने बैठते हैं ना, तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है,
1: बिल्कुल
0: है ना, और सबको लगता है हमारी बात पूरी की जाए, हमारी बात पूरी की, और इसी बात पे मतभेद पैदा होने शुरू हो जाते हैं परिवार में।
1: बिल्कुल सही कहा, मतभेद नहीं होने चाहिए, है ना
0: जी। बिल्कुल,

0: तो आरती, अब हम अपने श्रोताओं से ये इल्तिजा करते हैं कि उनकी नजरें इनायत बनी रहे,
1: बिल्कुल, वो बिल्कुल, हम पे अपनी कृपा बनाए रखिए।
0: तो भाई अब जो है सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चला है और इस कार्यक्रम से अब मंदाकिनी जोशी
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।

दोस्तों नमस्कार। सेल्युलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में सेल्युलॉइड के आसमान से पिछले सप्ताह एक सितारा नहीं बल्कि एक चांद उतरा था, 14वीं का चांद।

0: चौदहवीं का चांद यानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने विविध भारती के स्टूडियोज को और सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को जगमग रोशन कर दिया था। बातों का सिलसिला कुछ इस तरह चला कि हमें प्रोग्राम के वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा, इसलिए इस हफ्ते भी वहीदा जी विविध भारती के इस कार्यक्रम को रोशन कर रही हैं और बातें वहीं से शुरू कर रही हैं जहां पिछले सप्ताह छूट गई थीं। वहीदा जी से बातें कर रहे हैं कमल शर्मा।
1: वहीदा जी, गोल्डी साहब का भी जिक्र आया था, फिर अधूरा रह गया। गोल्डी साहब का शुमार बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से होता है और उन्होंने बड़ी कामयाब फिल्में बनाई और आपने भी उनके साथ में काम किया। एक निर्देशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में आपने उनमें क्या खूबियां पाए?
2: वो भी काफी इंटेलिजेंट डायरेक्टर थे।
1: कैसा था उनका काम करने का स्टाइल जो था?
2: वेरी इजी टू वर्क विद। गाइड में पहले शुरू में क्या होता था, अगर डायरेक्टर को कोई सजेशन दे, मेरा एक्सपीरियंस है दूसरे आर्टिस्टों का, आई डोंट नो, तो उतना वो लाइक नहीं करते थे। खासकर वो दिमाग में उस वक्त तो ज्यादा ही था, अभी भी है थोड़ा बहुत, कि तो लड़की का क्या सजेशन लेना चाहिए, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो गोल्डी में ये बात नहीं थी, तो कभी कभी मैं कहती ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे नहीं ठीक लग रहा है, तो वो हाँ या ना नहीं कहते थे मगर उस चीज को ले लेते थे। फिर चुपके से उसको करा के मैं कह रही मैंने जो कहा वो ही किया ना आपने, तो कहते हाँ तो सही सजेशन था, इसके लिए मैंने किया, यू नो। सो वो बात बड़ी अच्छी थी और गाइड का ट्रीटमेंट उनका बहुत ही बढ़िया और अच्छा था। खासकर गाइड का एक सीन था जहाँ मैं मुझसे छल किए जाए परफॉर्म करने से पहले बैक स्टेज पता चलता है कि राजू इज बीन अरेस्टेड फॉर फोर्जरी, और उसके या उससे पहले मार्को आते हैं, अपनी किताब प्रिंट हो चुकी है, तो वो राजू को कहते मुझे अंदर जाना है, मिलना है, जाने नहीं देते, तो वो मना करते हैं। अगर मैंने सोचा अगर आज की फिल्म होती तो जरूर एक वहाँ फाइट होनी थी बिटवीन राजू एंड मार्को, जो उसको इतना डिसेंटली और इतना डिग्निफाइड मैनर में उसको ट्रीट किया। वो खाली सिर्फ थोड़ा टाइट करते हैं मार्को की और ठीक करके कोट कहते नहीं आप नहीं मिल सकते, मैं किताब दे दूंगा, आप जाइए। मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा, छोटा सा सीन था मगर बहुत अच्छा लगा, और उसमें दोनों का यू नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स बहुत ही खूबसूरत, ही वाज अ वेरी गुड डायरेक्टर।
1: लेकिन वो जो गाना है मुझसे छल किए जाए, ये तो जरूर हम सुनवाना चाहेंगे,
2: जरूर।

0: वेदा जी, लिविंग लेजेंड में शुमार होता है दिलीप कुमार साहब का, और उनके साथ में भी आपने बहुत काम किया, बहुत एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। खास उससे मुझे यहाँ दिल दिया दर्द दिया दर्द दिया याद आ रही है फिल्म, वोदरिंग हाइट्स से मेरे खास से इंस्पायर्ड थी वो फिल्म। दिलीप साहब के बारे में कुछ बताइए।
1: दिलीप साहब के साथ पहली फिल्म थी मेरी दिल दिया दर्द लिया, और फिर उन्होंने मुझे ये किताब दी थी वुदरिंग हाइट्स के, इसको पढ़िए, इससे हमने इंस्पायर करके बना रहे। और मुझसे एक गलती हो गई, जब किताब पढ़ चुकी मैं एक बार सेट पे गई तो दिलीप साहब ने, कोई और असिस्टेंट ने पूछा, कैसी लगी आपको ये किताब, वही है तो हम बना रहे हैं। तो मैंने गलती से कह दिया, जी साहब किताब से और फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है। बोले क्या बात कर रही हैं आप, उसी से तो हम आइडिया लेके बना रहे हैं, मतलब इंस्पिरेशन के साथ। मैंने कहा वुदरिंग हाइट्स में कहानी का जोर शो होता है जब कैथरीन मर जाती है, उसके प्यार में जो इनका बुरा हाल होता है। यहाँ तो ये रूपा जी जो है अंत तक चली हैं और मिल भी जाती हैं, इनमें तो कहाँ से है। तो बोले नहीं नहीं भैया जी, आप बहुत मीम मेक निकालते हैं, अब नहीं उसी से लेते हैं। तो अब पता नहीं दिलीप साहब को सही लगा कि नहीं लगा, आई डोंट नो, बट ही वॉज वेरी नाइस एंड कोऑपरेटिव। और दिलीप साहब की एक बड़ी अच्छी बात थी, अपना शॉट होने के बाद अगर उस वो शॉट में खुद हैं या ना, तो वो दूसरे आर्टिस्ट का देखते रहते थे कि सही हो रहा है कि नहीं। अगर उनको लगता था कि नहीं सही हुआ, तो चुपके से आके कह देते, भाई इसको आप ऐसे ऐसे करें तो नहीं अच्छा होगा, इसको इस तरह करते हैं।
0: आपको कहा?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सबको कहते थे।
0: दिल दिया
1: दर्द लिया, उसके बाद कौन सी थी, आदमी, राम और श्याम, इसमें
0: कोई खास सीन याद आता है जिसमें उन्होंने कहा हो कि?
1: राम और श्याम में एक लाइट सीन था, तो मैं अपने फादर को जाके कह रही हूँ कि एक आदमी मिला और ऐसे हुआ वैसे हुआ, उस गाड़ी जूम करके जाती, वो होता है यूं होता है, बोले बोले बोले जा रही हूँ। तो मैंने, हम कोडेकनाल में थे होटल में, मैंने कहा साहब डायलॉग दे दीजिए, सीन दे दीजिए, याद करना है, नहीं तो आउटडोर में टाइम वेस्ट होगा। और मुझे बहुत ये लगता था कि यू नो प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो कहने लगे नहीं आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा क्यों? आपने कहा इतना लंबा सीन है। तो मेरी आदत थी यू नो, मेरी हाथ बहुत चला के बात करती हूँ और साउंड्स निकालती हूँ, जैसे उनके जो जो आप बोलती हैं उसको मैंने नोट किया है, आपको वही करना है। मगर जिस वक्त मैं क्या बोलती मुझे क्या पता। तो बोले एक रफली देख लीजिए, मैं कल दे दूंगा या नहीं तो आज रात को दूंगा मैं सीन। तो फिर भी मैं बड़ी काफी नर्वस थी कि भाई दे दीजिए याद करने डालो। तो मैं कहूँ पढ़ती रही, तो मैंने कहा कि ये क्या है भाई, जूम करके गाड़ी चली गई। तो बोले मैंने आपसे सुना है वो लफ्ज। मैंने कहा कब? तो आपको याद नहीं होगा, हम नोट करते रहते हैं आर्टिस्ट कब क्या से बिहेव करता है, तो इसमें आपको ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। तो आप अपने खुल के जैसे आप भूल जाइए कि आप ये कैरेक्टर हैं, थोड़ी देर के लिए आप सोच लीजिए मैं बहिदा ही हूँ, हम कैमरा ऑन कर देंगे, सिर्फ थोड़े जो कनेक्टेड जॉइंट के डायलॉग्स हैं वो याद रखे, बाकी आप ना कीजिए। मैंने कहा अच्छी बात है।
0: आदमी भी एक थोड़ी सी अलग तरह की फिल्म थी, टफ सा करेक्टर था, इसमें भी बड़ा चैलेंजिंग रोल था क्योंकि ट्रायंगल था, लव ट्रायंगल था आदमी का। इसका कोई गाना सुनवा दिया जाए
1: आदमी का? हाँ, वो जो उनके एक्सीडेंट के बाद एक गाना होता है,
0: आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज ना दे,
1: वो समथिंग। हाँ,

0: अपने समकालीन जो आर्टिस्ट रही आपकी, जो समकालीन अभिनेत्रियां रही, उनमें आपको कौन बहुत पसंद थी?
1: मेरे से पहले जो थे, मतलब मेरे से सीनियर, उसमें मुझे गीता बाली जी बहुत अच्छे लगते थे, फिर नरगिस जी, और मीना जी का क्या था, उनके एक जैसे रोल होने लगे थे, एक टाइप की पर्सनालिटी हो गई थी, हालांकि उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस जो थी वो बहुत ही बढ़िया थी, इट वाज वेरी कैरिस्मेटिक। उनको देखो तो दिल करता था, कई नज़र इधर उधर नहीं जाते थे, उन्हीं को देखते रहिए। बड़ी ग्रेट फिल्म, आई मीन पर्सनैलिटी थी उनकी। उसके बाद हमारे, मेरे साथ के वक्त मैं कहूँ, साधना बहुत अच्छी थी, और माला सिन्हा, नंदा, ये नहीं कि नंदा मेरी फ्रेंड है, मगर उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी थी, बड़ा स्वीट सा चेहरा था।
0: अच्छा, क्रिटिक के रूप में कभी अपनी फिल्मों को देखा आपने कि भाई ये सीन ऐसे हो जाना चाहिए था कभी?
1: हाँ, वो तो इसीलिए मैं अपनी फिल्में देखती नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि ओ हो, इसको, इस सीन को और बेटर गाइड में खुद मैं इतने नुक्स निकालती हूँ कि ओ हो, ये क्या किया मैंने, इससे तो ऐसे करना चाहिए था, बेहतर होता था सीन। सो फिर मजा ही नहीं आता मुझे, जब तक मैं बिल्कुल बोर होके टीवी लगाऊं, मेरी फिल्म हो तो चलो वक्त गुजारने के लिए देख लेती, मैं कहती अभी जाने दो, हो चुका, अभी मैं क्रिटिसाइज करके क्या फायदा, तो वरना मैं उतना एंजॉय नहीं करती अपनी फिल्में।
0: टीवी की अगर बात करें तो उसमें आज का सिनेमा भी

0: मौजूद है घर में ही, और पुरानी फिल्में भी आती हैं तो नई फिल्में भी आप देखती होंगी, जब आप उन दोनों को कंपेयर करती हैं, उनका कंपैरिजन करती हैं, तो क्या महसूस होता है आपको?
1: नहीं देखिए, लेटली एक दो साल से कुछ बहुत ही अच्छा दौर आया है जो हर किस्म की फिल्म बन रही है. मेनली शायद ये मल्टीप्लेक्सेस जो शुरू हो गए हैं, एक थिएटर में हर किस्म की फिल्म चल सकती है, चलती है. मगर थोड़े अरसे पहले कुछ ज़्यादा ही वायलेंट पे बेस्ड होती थी और कहानियाँ रट्टी पट्टी एक ही के दो भाई हैं, बिछड़ गए बचपन में, वो माँ होती है एक अच्छी, नेचुरली माँ तो अच्छी होना चाहिए, फिर जो अच्छा लड़का है माँ के साथ रह जाता है, यू नो इट वाज वेरी बोरिंग. अभी थोड़ी वैरायटी आ गई है और बोल्ड सब्जेक्ट्स, और आजकल के जो आर्टिस्ट हैं मेल या फीमेल वो हर किस्म का रोल करने के लिए तैयार हो गए हैं जो हमारे ज़माने में नहीं होते थे.
0: आपका एक बेटा है, एक बेटी है, क्या नाम है उनके?
1: वो सब बड़े शर्माते हैं, क्यों कहते हैं आप क्यों हमारा वो करते हैं, एक लड़का एक लड़की हो बस.
0: वो फिल्में देख रहे हैं आपकी?
1: मेरी फिल्में इतनी नहीं देखते हैं, कभी देखी नहीं उन्होंने. मेरी लड़की और लड़के ने कनाडा में ग्रेजुएशन किया टोरंटो में, तो वहाँ मेरी लड़की ने फिल्म स्टडीज की, तो फिर एक बार वापस जो हिंदुस्तान आई तो कहने लगी जो प्यासा में ऐसी है प्यासा में. मैंने कहा बेटा आपने प्यासा कब देखी, आपको तो अच्छी नहीं लगती थी हमारी मेरी फिल्में देखना. तो बोले टोरंटो में देखी. ओ मैंने कहा अच्छा थिएटर में लगी थी प्यासा? तो बोले नहीं कॉलेज में देखी. मैंने कहा कॉलेज में प्यासा कैसे दिखाई गई? तो कहने लगे वहाँ के आर्काइव में प्यासा रखी हुई है. मेरे ख्याल से गुरुदत्त जी की एक दो फिल्में हैं. तो आई फेल्ट वेरी प्राउड कि वाह क्या बात है. तो उसने कहा मैंने प्यासा देखी है. अब वो ख्वाहिश जाहिर कर रही हैं और दोनों बच्चे मेरे कि हम अब आपके साहब बीबी और गुलाम देखना चाहते हैं.
0: तो यहाँ प्यासा का भी जिक्र आया है और साहब बीबी गुलाम का भी आया है. साहब बीबी गुलाम का तो इन दोनों में से कोई किसी एक फिल्म का एक गाना और हो जाए उसमें.
1: प्यासा का वो है ये दुनिया में, हाँ नहीं जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यारों को प्यार मिला.
0: हेमंत कुमार साहब की
1: हाँ, हेमंत कुमार साहब की आवाज वो बहुत अच्छा था.

मेरा जी दिल दिया दर्दलिया में प्राण साहब का भी एक बहुत ही अलग तरह का रोल था और विलन थे उसमें, और सिनेमा के बहुत ही नामी कलाकार तो हैं ही, उनसे भी जुड़ा

0: कोई संस्मरण हम जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि तो उनके साथ में भी आपकी कई फिल्में आई, राम और श्याम में भी वो खलनायक
1: थे। बहुत फिल्मों में थे, पत्थर के सनम, राम और श्याम, दिल दिया दर्द लिया, आदमी।

0: कामयाबी का फल अच्छा
1: बिल्कुल
0: खूब चखा। आपकी फिल्मों की अगर हम बात करें तो मुझे दो तीन फिल्में और बहुत याद आती हैं, रुला भी देती हैं। उसमें एक मास्टरपीस है आपकी एक और फिल्म, तीसरी कसम। शैलेंद्र साहब उससे जुड़े हुए थे जिनकी बड़ी दर्दनाक, फिर उसके साथ में जो घटना टजडी हुई उसके साथ में, वो भी राज कपूर साहब आपके उसमें नायक थे और मेरे खास बासु भट्टाचार्य साहब ने उसको डायरेक्ट किया था। उसके बारे में जरूर बताइए, उस फिल्म के बारे में। एक तो उसमें वो पूरी कमाल की है वो फिल्म, आज भी उसको जितनी बार देखा जाए ऐसे मन ही नहीं भरता उस फिल्म को।
1: उसकी बड़ी सिंपल कहानी थी, बड़ी सिंपल स्वीट पिक्चर थी, मगर उसकी फिलॉसफी बहुत डीप थी। उनके गानों में भी सिंपल वर्ड्स थे मगर उसकी मीनिंग, उसकी फिलॉसफी में बहुत डेप्थ थी। और आप मानोगे नहीं, आधी से ज्यादा फिल्म बनी थी बिना, मतलब एक सीन में मैं और राजी हैं तो मैं नहीं हूँ यानी तो राजी नहीं है। तो डायरेक्टर ने बड़ी मुश्किल से ये नहीं, क्योंकि वो बहुत देर से आते थे सेट्स पे और वो बहुत मसरूफ थे। अपने संगम बन रही थी उसके बाद, हाँ संगम बन रही थी उस वक्त, वो इतने ज्यादा उसमें जुड़े हुए थे, मसरूफ थे, तो इसको उन्होंने इतनी तवज्जो नहीं दी। उन्होंने इसलिए की क्योंकि शैलेंद्र उनके दोस्त थे और वो उसके प्रोड्यूसर थे। बड़ी मुश्किल होती थी मगर देख के फिल्म मुझे खुद ताज्जुब होता था, कैसी बनी फिल्म, क्योंकि कई दफा सीन्स में एक बैक शॉट ले लिया कंबाइंड, उसके बाद मेरे क्लोजअप हो रहे हैं और मेरे से बैक शॉट ले लिया तो उसके बाद राज साहब के क्लोजअप हो रहे हैं, मगर सीन टोटली ऑन द स्क्रीन एक सीन होता था। तो वही वैसे हालात में फिल्म बनी और फिर वो मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल एंट्री थी, उसके लिए हम साथ गए थे मैं और राज जी। और वाकई में मैंने देखा राज जी यूज्ड टू गेट मॉब्ड इन मॉस्को, लिटरली राजू राजू राजू, यू नो, बहुत। और जो जो रशियन था वो उनके पूरे गाने, एक क्या 420 और फिल्मों के गाने आवारा के सब गाया थे, गाते थे।
0: वेदा जी इस फिल्म में नौटंकी वाली का एक किरदार किया था और म्यूजिक भी उसमें काफी कुछ तरह का था, शंकर जयकिशन साहब का संगीत था। इस फिल्म में क्या आपको संतुष्टि मिली भूमिका निभा करके, तीसरी कसम की अगर मैं बात करूं?
1: हाँ, मुझे अच्छा लगा था क्योंकि वो भी एक डिफरेंट कैरेक्टर था, यू नो, और सिंपल एंड वेरी स्वीट। उससे वो फिल्म कभी भी देखो बोर नहीं लगती है, यू नो, अच्छी लगती है, दिल को छूती है।
0: कुछ चीजें ऐसी कि जैसे सेल्यूलॉइड पर पोएट्री किसी ने लिख दी, कुछ उसी तरह की वो फिल्म है। उसमें भी गाने बहुत अच्छे थे, एक गाना उस फिल्म का हम जरूर सुनाएं।
1: सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, हमें तो पैदल ही जाना है।

0: बासु भट्टाचार्य, उन्होंने हालांकि बड़ी ऑफ बीट फिल्में बनाई, समानांतर सिनेमा से भी उनका नाम जोड़ा जाता था, पैरेलल सिनेमा से, और इस फिल्म में उनके साथ में काम करने का मौका मिला आपको। बिमल रॉय साहब के साथ में उनका लंबा एसोसिएशन रहा, उनको कैसा निर्देशक पाया आपने?
1: पहले उनको समझना जरा मुश्किल था, क्योंकि वो नेचुरली उनकी पहली फिल्म थी, तो टेंस रहते थे, और फिर अक्सर उनको उनका कैमरामैन के साथ ये नोकझोंक हो जाती थी छटपट। और फिर एक बार राजी ने कहा, वहीदा जी ये क्या हो रहा है, कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने उनसे कहा, तो वो बेचारे नए हैं, तो आप उनको बता दीजिए कि जो गलत हो रहा है। तो कहने लगे, नहीं मेरा ये प्रिंसिपल है, जब मैं एक्टर बनता हूँ मैं सिर्फ एक्टर रहता हूँ। मैंने कहा, मैं मानती हूँ, मगर आप इतने पुराने डायरेक्टर हैं, बेचारा वो नया है, उसकी मदद करो, फिर मुझे क्यों कह रहे हैं? तो बोले, कोई तो चाहिए ना कंप्लेन करने के लिए। तो मैंने कहा, आपको क्या मैं ही मिली जो आप मुझे कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? उससे मैं और परेशान हो रही हूँ कि आपको लग रहा है गलत तो है, तो क्या करें। तो ऑन द होल जब फाइनली फिल्म बनी तो बहुत अच्छी बनी थी, तो हमने कहा वेल ठीक हो गई, यू नो।
0: वेदा जी, आपने सत्यजीत रे साहब की भी किस फिल्म में काम किया है? कौन सी फिल्म थी वो?
1: अभिजान।
0: बंगला आपको हुआ थी?
1: नहीं, उसमें इतनी ज्यादा शुद्ध बंगाली बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा ये बिहारी लड़की है, टूटी पुटी बंगाली और भोजपुरी जबान बोलती है, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। तो मगर जब उसका ऑफर आया, मुझे बहुत बेहद खुशी हुई और ताज्जुब भी हुआ।
0: उसके पहले आपने उनकी कोई फिल्म देखी थी सत्यजीत रे?
1: हाँ, पाथर पंचली देखी थी। अच्छा। उसके बाद भी और दो तीन फिल्में देखी थी मैंने, तो आई वॉज रियली वेरी थ्रिल्ड, और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और
0: उन्होंने क्या कहा के बारे में? उनको कैसा लगा आपका काम?
1: हाँ, उन्होंने कहा, जब हम डिस्कस कर रहे थे सौमित्र चटर्जी और हम, उनके वो फेवरेट एक्टर थे, तो कि इस कैरेक्टर को किसको लिया जाए, क्योंकि कोई प्योर बंगाली की जरूरत नहीं है, जो जबान जो बोलती है उसके लिए। तो सबने कोरस में कहा वहीदा रहमान। तो मैंने कहा सच? तो बोले आई वॉज रियली थ्रिल्ड। और उनका समझाना और शॉट लेना इतना प्रिसाइज होता था, ना वक्त जाया होता था ना नेगेटिव जाया। वो तो कहते थे, भाई मेरा नेगेटिव इतना निकलता है, इससे कोई चूड़ियां प्लास्टिक की चूड़ियां भी नहीं बन सकती है, क्योंकि आई कांट अफोर्ड, क्योंकि इतने छोटे बजट पे फिल्म बनती है। हम नहीं कह रीटेक्स इतने सारे 20-25 रीटेक हो रहे हैं, या इतने ज्यादा शॉट्स ले लिए उसके बाद निकाल के फेंक दिया। मैं दिमाग में पेपर पे लिख लेता हूँ कि इसकी टाइमिंग इतनी इतना ही होगा शॉट, उससे शायद 3-4 फुट ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा आपको शुरू के लिए या एंड के लिए, वरना नहीं।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान, इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। सुनिए आगे की बातचीत।
0: दूसरे डायरेक्टर्स आए तो फिर भी कहीं ना कहीं मोल भाव तो हो ही जाता है पैसे को लेकर के। जब उनका ऑफर आया, पैसे की क्या बात थी? पैसे आपने
1: सवाल ही नहीं पैदा हुआ था, वो ऑलरेडी वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट 10 डायरेक्टर्स में थे। तो पैसा, देखिए हम पैसे के लिए जरूर करते हैं, ये आफ्टर ऑल इज अ प्रोफेशन, कोई चैरिटी तो नहीं कर रहे, मगर कई दफा जैसे रेशमा शेरा मैंने की, सुनील जी ने कहा था ये 25-30 में बनेगी, और आप कहिए, क्योंकि उस वक्त सुखदेव डायरेक्टर थे, सुखदेव या खुद सुनील या मैं, कोई आर्टिस्ट पैसे नहीं लेगा, जब पिक्चर खत्म हो जाएगी तो हम पैसे लेंगे और बिक जाएगी। तो वो उसके इतने मुश्किलात से गुजर रहे थे वो, तो उस फिल्म में मैंने नहीं पैसे लिए रेशमा शेरा में। और जब सत्यजीत ने कहा, मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं आपसे पैसे की बात करूं। कई दफा आर्टिस्ट अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए या बहुत बढ़िया डायरेक्टर के लिए काम करते हैं बिना पैसे के, या बहुत कम पैसे जो डायरेक्टर के मन में आए तो दे दे, तो दे दे, नहीं तो नहीं।
0: आपकी एक फिल्म और है बांग्ला, जीवन जीरो को।
1: हाँ, वो नहीं ठीक बनी, मैंने हालांकि देखी भी नहीं, क्योंकि उसमें बनती रही रुकती रही, उसमें कोई एक्सीडेंट आग हो गया था, तो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुछ अरेस्ट भी हो गए थे, कॉम्प्लिकेशंस थे, तो वो ठीक से मुझे मजा नहीं आया वो फिल्म में काम करके।
0: मनोज कुमार साहब का नाम आया था, मनोज जी का नाम लिया जाता है बड़े ही सफल बड़े टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से, जैसे गोल्डी साहब को लोग याद करते हैं, तो कहते हैं कि मनोज साहब, ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी, कहते हैं कि वो एक्टर से बेहतर डायरेक्टर है। आप क्या कहेंगे उनके बारे में, कैसे उनके साथ में काम?
1: नहीं, आई एग्री विद हिम, वो आई अग्री विद हिम, इज अ बेटर डायरेक्टर देन एन एक्टर.
0: कोई यादगार घटना है उनके साथ?
1: उनके साथ एक फिल्म बनी थी पत्थर के सनम.
0: जी जी.
1: तो वो बैठ के, उस वक्त क्या होता था कि मोबाइल फोन्स नहीं थे और एसी मेकअप रूम नहीं होते थे, ना वैन्स होते थे, तो हम ज्यादातर एक बार सेट पे गए तो सेट पे ही बैठे रहते थे जब तक लंच ब्रेक ना हो या पैकअप ना हो. तो आपस में बैठ के बातें करते थे जब लाइटिंग हो रही हो. तो सब एक्टर्स हम साथ में पिछली शूटिंग कौन सी थी, क्या सीन था, वो डायरेक्टर कैसे हैं, ये बातें करते थे. तो मनोज हमेशा अपनी कहानियां, अपने सीन सुनाया करते थे. तो उससे मुझे लगा कि यार लिखते बहुत अच्छा है. तो पत्थर के सनम के डायरेक्टर को मैंने कहा इन चंद सीन आप इनसे लिखवाया कीजिए, लिखवाइए, क्योंकि बहुत अच्छा लिखते हैं. तो बोले अच्छा क्यों? मैंने कहा ये सीन्स अपने फिल्मों के सुना रहे हैं तो उससे लगता है कि बात है इस आदमी में. तो काफी सारे पत्थर के सनम के सीन्स उन्होंने फिर मनोज से लिखवाए, यू नो. तो लाइट सीन्स वगैरह बहुत अच्छे थे.
0: अच्छा वहीदा जी, फिल्मों में तो गाने पिक्चराइज किए जाते हैं, आपके ऊपर बहुत सारे गाने हैं, और वो फिल्में जब उतर भी जाए सिनेमा हॉल से, लेकिन गाने तो गूंजते रहते हैं, रेडियो से हम आज तक सुना रहे हैं लोगों को.

0: लता जी ने आपके लिए बहुत सारे गाने गाए हैं। लता जी से कोई इंटरेस्टिंग मुलाकात याद है आपको? उन्होंने उनको वो गाना आप पे जब जो पिक्चराइज हुआ उसको देख करके उनको मजा आया होगा, आपको मजा आया होगा वो गाना जो उन्होंने आपके लिए गाया हो।
1: लता जी ने कहा, मुझे बाद में कई डायरेक्टरों ने भी कहा, वो हमेशा पूछा करती थी कौन सा आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाला है, तो वो बताते थे कि नूतन या मीना कुमारी हुआ वो। तो एक बार एक म्यूजिक डायरेक्टर ने पूछा ये क्या फर्क पड़ता है आपको, गाने से मतलब है, आर्टिस्ट क्यों पूछते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जब उनकी फिल्में देखती हूँ या पर्सनली मिलती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ कि वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बोलते हैं, कि ये मैं उसमें अलाप लूँ या इस ढंग से गाऊँ तो क्या वो करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं। तो वो भी बहुत इंटेलिजेंट आर्टिस्ट हैं, तो वो हमेशा पूछती हैं। तो एक वक्त क्या हुआ, उनको चॉकलेट्स का बहुत शौक है, तो बांग्लादेश की वॉर जब हुई तो मैं प्रोग्राम कमेटी में थी, तो मेरा जिम्मा था कि फंड कलेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने इंडस्ट्री को जमा करके बहुत बड़ा शो किया था और लता जी मान नहीं रही थी। कल्याण जी, आनंद जी भाई जाके बहुत कहा, फिर सुनील नरगिस ने कहा कि लता जी आ जाइए इस शो में, बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा शो होने वाला है। तो पता नहीं क्यों उन्होंने कहा नहीं, बहुत बरसों से मैंने हिंदुस्तान में शो करना छोड़ दिया। तो फिर कल्याण जी भाई से मैंने कहा चलो एक बार आखिरी बार कोशिश करते हैं, कहीं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनकी गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो हम पहुंच गए बिना अपॉइंटमेंट के। वो देख के फिर चौंक गए कि ये फिर आ गए। तो बस ब्रेक हुआ तो मैंने कहा लता जी आपके बगैर शो पूरा नहीं होगा, और किशोरदा भी मान गए हैं तो वो कहते कि लता के बगैर मुझे नहीं मजा आएगा, ये क्या बात है ये। नहीं क्योंकि तुम क्यों नहीं मानती, मुझे सुनील ने भी कहा, नरगिस जी ने भी कहा, मैं नहीं करती। पता नहीं क्यों अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई जो जबान से निकल गई, जो बहुत उसका फायदा हुआ। मैंने कहा लता जी क्या है, हिंदुस्तान में सिर्फ दो हीरोइंस हैं। तो देखने लगी, बोले दो कौन? मैंने कहा एक इंदिरा गांधी जी हैं, फिर एक आप हैं। तो वो इतनी ऐसे मुंह खुला देखने लगी, और फिर कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई मुझे देखने लगे, ये क्या बोल रहे हैं। वो बोल के एक सेकंड के लिए सन्नाटा हुआ, मैंने सोचा गलत कहा है कि सही कहा, मेरी समझ में नहीं आया। तो फिर वो मुस्कुराने लगे, तो बोले अच्छा भाई तुम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती हो, अच्छा आ जाऊंगी।
0: कहीं कहीं लड़ियाना पड़ता है, मान मनावर सब चलता है। तो फिर वो आई। तो यहाँ लता जी का कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है?
1: उनका हम दोनों का गाना अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, मैं जब भी सुनती हूँ चुपचाप खामोशी से तो मेरा दिल भर आता है, तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है गाना। उनके तो खैर वो इतने हैं, मुश्किल है ढूंढना या चुनना।

0: खामोशी जो है, अंदर की जो पीड़ा है, वो जिस तरह से वो अंदर ही अंदर बर्दाश्त कर रही चीजों को, वो रुला देती है वो। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही कठिन रोल है, जिसमें आपके पास में संवादों से ज्यादा आपको अपने चेहरे से, अपनी आंखों से बात करनी है। कोई यादगार घटना है इस फिल्म से जुड़ी हुई?
1: तो वो सीन डिफिकल्ट था, हालांकि उसमें डायलॉग्स नहीं थे। जब राजेश खन्ना के साथ, राजेश खन्ना को इससे ज्यादा लगाव हो जाता है, पहले केस में इसको धर्मेंद्र के साथ लगाव होता है, तो वो चले जाते हैं शादी करके जब ठीक हो जाते हैं। तो फिर जब दोबारा ये रिपीटेशन होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि हमारे प्रोफेशन में आपको ऐसा लगाव होना नहीं चाहिए, ये मुश्किल बात है। तब इसको महसूस होता है कि अब ये कैरेक्टर को इससे लगाव हो गया है, अब कैसे बचे। तो वो उसको बड़ा समझाने की कोशिश करती, होता नहीं है, तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। वो बड़ा कठिन सीन था, क्योंकि वो दरवाजा ठोक रहा है, पीट रहा है, आवाजें दे रहा है, राधा राधा राधा, और वो कमरे से निकलती नहीं है। कैसे वो अपने आप को कंट्रोल करती है, और उसका स्ट्रेन उस पर इतना पड़ता है कि वो देन शी गोज मैड। तो वो बड़ा डिफिकल्ट सीन था। और एक डिफिकल्टी हो रही थी, क्योंकि जैसे मैं राजेश को बोट राइड पर ले जाती हूँ, वो गाना गा रहे हैं और मैं उसके साथ हूँ एज ए नर्स, और वो इसको सोच रहा है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मुझे भी, मैं प्यार कर रहा हूँ तो ये भी शायद मुझे प्यार कर रही है। उसमें उस वक्त प्रॉब्लम क्या हुई थी, इट वॉज वेरी कॉमिकल, इट वॉज मेरे जो एक्सप्रेशन थे सीरियस थे, क्योंकि वो महसूस कर रही, ओ ये तो फिर से गड़बड़ हो रही है, अब इसको मेरे से लगाव होने लगा है। वो गाना गा रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि अब कैसे इसको मैं दूर करूँ और कैसे समझाऊँ। तो उस वक्त राजेश खन्ना नए नए थे, तो वो लिप मूवमेंट नहीं कैच कर पाते थे, और जब ऐसे हम एम्ब्रेस कर रहे हैं तो कैमरा पीछे जाता था, तो मैं राजेश कहते थे वहीदा जी प्लीज हेल्प मी, तो मेरा स्टार्टिंग दे दीजिए। अब उनके गाना उनका है, तो मैं कहती थी ये शाम कुछ अजीब है, फिर वो कैमरा आ जाता था, मैं फिर चुप उदास चेहरा लेके, बड़ी मुश्किल हुई, बड़ी मुश्किल हुई, और हंसते थे। मैंने कहा राजेश थोड़ा कॉन्सेंट तो कीजिए, तो बोले क्या करूं भूल जाता हूँ, तो आप मुझे थोड़ा क्यू दे दिया करें। वो कैमरा पीछे राजेश के फेस पे जाता था, क्यों मैं देती थी, गाना उनका था, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई।
0: वही गाना सुनते हैं?
1: हाँ जी, वो बहुत मेरा फेवरेट गाना है।

0: वहीदा जी, असिस्टेंट साहब का जिक्र आया, फिर हेमंदा की वो फिल्म थी, हेमंदा ने गाया भी, संगीत भी दिया और फिल्में भी प्रोड्यूस की, कोहरा और 20 साल बाद, ये दो फिल्में भी उन्हीं की थी। हेमंत साहब की फिल्मों की खासियत ये रही कि संगीत जो है उनका बहुत बढ़िया रहा। उनसे कोई पर्सनल आपकी मुलाकात, कोई ऐसी यादगार
1: पर्सनल? एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट हुआ कि हेमंदा को गुरुदत्त जी की वजह से वो गाने वगैरह गाते थे, सेट पे आते थे, मिले हैं। तो 20 साल बाद नहीं, कोहरा के वक्त शूटिंग खत्म हो गई तो हम कोई फिल्म देखने गए थे, मैं, मेरी बहनें थी, तो उसी थिएटर में हेमंदा भी थे, उनकी बीवी और भी उनके फैमिली वाले थे। तो जब फिल्म खत्म हुई तो वो माशाल्लाह वो कुछ 6 फुट 4 इंच के थे और मैं ऊपर के सीट पे थी, तो वो मुड़े तो उन्होंने मुझे देखा, तो सुना उन्होंने मुझे नमस्कार किया। और कभी कभी मैं खो जाती थी, मतलब एब्सेंट माइंडेड सी, तो मैंने नहीं जवाब दिया, मैं चली आई। इत्तेफाक से मेरी बहनों ने भी नहीं देखा, नहीं तो वो विश करते, उनको जानते थे। तो उनकी बीबी उनसे बहुत नाराज हुई कि ये क्या बात है, आप प्रोड्यूसर हैं, दूसरी पिक्चर बना रहे हैं, कब से जानती हैं वहीदा, और आपने मत नमस्कार किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, चली गई। तो हेमंदा ने कहा नहीं, जितना मैं उनको जानता हूँ मुझे लगता वो वहां थी नहीं। बोले क्या मतलब आपका वहां नहीं थी? वो फिजिकली थी, वो फिजिकली थी, मेंटली नहीं थी, क्योंकि शी इज नॉट अ रूड पर्सन, हो नहीं सकता। बोले अरे इतने लंबे चौड़े आदमी के उनको तो आपको दिखाई नहीं दिए। तो नहीं, मेरा तो ख्याल है ऐसे। खैर उन दोनों की बहस हुई तो एक दो महीने के बाद उनकी सेट पे मैं गई, तो मुझे पूछने गया वो फिल्म कैसी लगी आपको फलाने थिएटर में। हाँ मैंने कहा बड़ी अच्छी थी, वो नहीं अच्छा था, ये था वो था, काफी बहस हुई। फिर मैंने सोचा आपको कैसा पता मैंने फिल्म देखी।

0: तो बोले क्योंकि मैं भी वहीं था. ओ रियली? मैंने कहा मैंने नहीं देखा आपको. आपने नहीं देखा ना, मुझे पता था आपने मुझे नहीं देखा. और मजे की तो बात यह है, मैंने कहा क्योंकि मैं ऊंचाई पे थी और कद कम, वो नीचे थे, मगर बराबर आई टू आई लेवल ठीक था. तो बोले मैंने आपको नमस्कार किया, आपने सीधे स्ट्रेट देखा और मुड़ के चली गई. तो मेरी बीवी मुझसे बड़ी नाराज हुई. अब मुझे पता था कि आप मेंटली नहीं थी, वो पिक्चर के बारे में सोच रही थी कि पता नहीं का. तो बड़ी नाइस ऑफ फिल्म के वो मिसअंडरस्टैंड नहीं किया उन्होंने.
1: वेदा जी, उनकी फिल्म 20 साल बाद की अगर हम बात करें या कोहरा, संगीत दोनों का बहुत बढ़िया है. किस फिल्म का गाना सुनवाएंगे?
0: कोहरा का गाना झूम झूम ढलती रात.

0: वेदा जी, फिल्मों की खूब बातें हो गई, लेकिन फिल्मों से हट करके भी आप काम कर रही हैं, और खास तौर से हमें पता चला कि बेसहारा बेघर जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी आप अपनी सर्विसेज दे रही हैं। उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, क्या है ये काम?
1: ये एनजीओ है जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए शुरू हुआ 10 साल पहले, और 10 साल रहा है और काफ़ी कामयाब हुआ है। और ये जो स्लम्स के बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते हैं, म्यूनिसिपल स्कूल्स फर्स्ट स्टैंडर्ड से, मगर उनका फाउंडेशन नहीं बनता प्राइमरी एजुकेशन के लिए, और वो बेचारे माँ बाप दोनों काम करते हैं तो वो उनकी ज़िंदगी फाउंडेशन नहीं, क्योंकि चूँकि ठीक होता है तो वो भटक जाते हैं, सड़कों में घूमते रहते कुछ नहीं। तो ये एक फाउंडर हैं निर्मला निकेतन की, शुरू किया। तो अभी धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान में इसका शुरू हुआ है। इसका नाम है प्रथम, प्रथम मतलब फर्स्ट स्टेप। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी आई फील, तालीम की, एजुकेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे मुल्क में, उससे कई बातें सॉल्व हो सकती हैं। तो कई माँ बाप को पहले जाके समझाना पड़ता है, वो सोचते हैं हाँ म्यूनसिपल स्कूल, पहले तो वो डर जाते हैं कि हम पे नहीं कर सकते, म्यूनसिपल स्कूल तो फ्री है, अब आप लोग आगे पढ़ाने के लिए हम नहीं पे

0: कर सकते हैं। हम कहते हैं नहीं आपको पे करने की जरूरत नहीं है। तो वो मोहल्लों में हम लड़कियों को पिकअप करते हैं टीचर्स, उनको कहानियों से गानों से उनका दिलचस्पी पैदा करते हैं। मेन मकसद तो बच्चों को पढ़ाना, फिर वो स्कूल जाते हैं। तो ये लड़कियों की जिंदगी बड़ी इंप्रूव हुई है, मगर आगे का जेनरेशन जो पढ़ा लिखा होगा वो अपने बच्चे या अपने छोटे भाई बहनों को अनपढ़ नहीं रखेंगे, वो भी चाहेंगे कि वो भी जरूर पढ़ें, इसके इसका फायदा क्या है।
1: तो वेदा जी, जैसी आपको तृप्ति संतुष्टि मिली अपनी भूमिकाओं को करते हुए फिल्मों में, वैसी संतुष्टि इसमें मिली आपको?
0: हाँ जी।
1: वेदा जी, दिल तो नहीं करता कि आपको छोड़ें, आपसे बात करने का और भी मन करता है, और हम अपनी ओर से विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से और विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने अपने जीवन, अपने करियर, अपने साथियों और न जाने किन किन विषयों पर बातें की। इनसे कमल शर्मा ने बातचीत की। चलते चलते आपको ये बता दें, इस कार्यक्रम को तैयार करने में हमारे तकनीकी सहयोगी थे दिलीप कुलकर्णी, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। प्रस्तुत है युवा वर्ग को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

आज युववाणी सुनने वाले आप सभी श्रोता मित्रों को प्रशांत कुमार आर्य का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी मेरी ही तरह कुशलता से होंगे। साथियों, आज के कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताऊँ तो मुख्य रूप से आप जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस के बारे में। फिर आज के साप्ताहिक स्तंभ विज्ञान जगत में आप सुनेंगे एक विज्ञान वार्ता। इसके पश्चात आपको संगीत पहेली एवं कुछ महत्वपूर्ण खबरें भी बताएंगे। इसके इतर कार्यक्रम के प्रारंभ में ही आप जानेंगे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय एवं देशबंधु चितरंजन दास के बारे में, और कार्यक्रम के दौरान कुछ हिंदी फिल्मी गीतों का भी लुत्फ लेंगे। तो आइए जानें आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय के बारे में। साथियों, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय भारत के एक महान रसायनज्ञ, दूरदर्शी उद्यमी, महान शिक्षक एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्हें व्यापक रूप से भारतीय रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। हर साल 16 जून को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म 2 अगस्त 1861 को बंगाल प्रेसिडेंसी के खुलना जिले के रारुली कातीपारा गांव में हुआ था। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय स्कॉटलैंड से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने भारत लौटकर प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन विज्ञान और राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया और 16 जून 1944 को 82 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का जीवन इस बात का प्रतीक है कि किस प्रकार विज्ञान को आम जनता के कल्याण और राष्ट्र निर्माण से जोड़ा जा सकता है। उनका यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके दिखाए आत्मनिर्भरता एवं वैज्ञानिक चेतना के मार्ग पर आगे बढ़ें। साथियों, इसके बाद हम चितरंजन दास के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पूर्व आइए कार्यक्रम में ले लेते हैं एक प्यारे से गीत का आनंद। फिल्म है सिर्फ तुम और आवाज़ है अलका याग्निक की।

0: दोस्तों, अब आइए जानते हैं देशबंधु चित्तरंजन दास के बारे में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा, प्रसिद्ध वकील तथा राष्ट्रवादी नेता देशबंधु चित्तरंजन दास की पुण्यतिथि हर साल 16 जून को मनाई जाती है। 16 जून 1925 को दार्जिलिंग में मात्र 55 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। वे एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपनी सुख सुविधाओं तथा शानदार वकालत के करियर को छोड़कर अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। जनता के प्रति उनके अगाध प्रेम के कारण उन्हें सम्मानपूर्वक देशबंधु की उपाधि दी गई थी। चित्तरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को कोलकाता के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने भारत लौटकर वकालत शुरू की और बहुत कम समय में देश के सबसे बड़े बैरिस्टरों में शुमार हो गए। एक वकील के रूप में उनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक सफलता 16 अप्रैल 1908 के अलीपुर बम कांड में महर्षि अरबिंदो घोष का बचाव करना और उन्हें ब्रिटिश सरकार की कैद से रिहा कराना है। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी लाखों रुपए की वकालत छोड़ दी और पूरी तरह से आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। उन्होंने खुद के महंगे यूरोपीय कपड़ों को जलाकर खादी पहनने का संकल्प लिया और लोगों के लिए मिसाल पेश की। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद उन्होंने वर्ष 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे और उनके मार्गदर्शन में ही बोस ने देश सेवा का पाठ सीखा था। सामाजिक कार्यों और प्रशासनिक कुशलता के कारण वे 16 अप्रैल 1924 को कलकत्ता नगर निगम के पहले निर्वाचित मेयर बने थे। चित्तरंजन दास ने अपने जीवन की आखिरी सांस तक देश की आज़ादी के लिए काम किया। उनकी पुण्यतिथि पर देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनके महान बलिदानों को याद करता है। एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी चित्तरंजन दास न केवल एक क्रांतिकारी नेता थे बल्कि एक बेहतरीन कवि और पत्रकार भी थे। दोस्तों, अब आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस के बारे में। ये दिवस हर साल 16 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये दिवस उन प्रवासी कामगारों के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जो अपने देश से दूर रहकर विदेशों में काम करते हैं और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पैसे भेजते हैं। इस भेजे गए धन को प्रेषण या रेमिटेंस कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने की मंजूरी दी थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्रवासियों के कड़े परिश्रम को पहचानना एवं उनके द्वारा भेजे गए धन के आर्थिक महत्व को उजागर करना है। विदेशी कामगारों द्वारा भेजा गया यह धन उनके परिवारों एवं गृह देशों के लिए एक जीवन रेखा की तरह काम करता है। विकासशील देशों के लिए रेमिटेंस विदेशी मुद्रा का एक बहुत बड़ा तथा स्थिर स्रोत है। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों में शीर्ष पर है, जो देश की आर्थिक स्थिति को मजबूती देता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस हमें ये भी बताता है कि प्रवासी कामगार केवल अपने परिवार की ही मदद नहीं कर रहे हैं बल्कि वे वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी चला रहे हैं। डिजिटल तकनीकों को बढ़ावा देकर और पैसे भेजने की लागत को कम करके हम उनके इस योगदान को और अधिक सुरक्षित एवं प्रभावी बना सकते हैं। साथियों, आज चर्चा में इतना ही। अब हम आज के साप्ताहिक स्तंभ की ओर बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: बदलो बदलो, आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
6: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: इस छोटे से अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी साथियों का पुनः स्वागत है। अब आइए वार्ताकार ताबिंदा इरम से जानते हैं भारत में हॉटस्पॉट का फैलता जाल पर एक विज्ञान वार्ता।
7: कंप्यूटर की भाषा बहुत ही कठिन होती है, इसलिए आप सबों से अनुरोध है कि एकाग्रित होकर सुने। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई बार लोग केबल या डोंगल वाले इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और वाईफाई राउटर ना होने की वजह से वे केवल एक ही सिस्टम पर इंटरनेट का उपयोग कर पाते हैं। वाईफाई राउटर की अनुपस्थिति में घर के किसी और कंप्यूटर, टैबलेट या मोबाइल पर इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगर घर के सारे डिवाइस पर आप इंटरनेट की सुविधा चाहते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप अपने लैपटॉप या टैबलेट को ही वाईफाई हॉटस्पॉट में बदल कर सभी डिवाइस पर इंटरनेट की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। विंडोज़ के लिए इंटरनेट शेयरिंग। विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 8.1 में इंटरनेट शेयरिंग करना अमूमन मुश्किल होता है, लेकिन अब कई ऐसे ऐप्स मौजूद हैं जिनके उपयोग से

काम आसान हो गया है। ये ऐप्स आपके कंप्यूटर या लैपटॉप को वाईफाई हॉटस्पॉट में बदल देते हैं। हम यहाँ आपको एक ऐसी ही लोकप्रिय ऐप कनेक्टिफाई के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कनेक्टिफाई कंप्यूटर को एक वाईफाई हॉटस्पॉट बनाने के लिए भरोसेमंद ऐप है। इसको चलाने के लिए आपके पास वाईफाई अडाप्टर या बिल्ट इन वाईफाई सुविधा के साथ विंडोज़ पीसी होनी चाहिए। अगर आपके सिस्टम में बिल्ट इन वाईफाई नहीं है तो इसे USB से कनेक्ट करने का सिस्टम खरीदना होगा। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार होगी। कनेक्टिफाई को डाउनलोड करें और उसे इंस्टॉल करें। इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें। कंप्यूटर रीस्टार्ट करने के बाद ये जांच लें कि उसमें इंटरनेट कनेक्ट है या नहीं। इंटरनेट कनेक्ट है तो कनेक्टिफाई हॉटस्पॉट ऐप को रन करें। आपको ऐप में दो टैब दिखाई देंगे, सेटिंग्स और क्लाइंट्स। सेटिंग टैब में आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे, जिनमें से क्रिएट अ वाईफाई हॉटस्पॉट पर क्लिक करें। इंटरनेट टू शेयर विकल्प में आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगा। इसको एक्सपैंड कर उस कनेक्शन को सेलेक्ट करें जिसे आप शेयर करना चाहते हैं। दूसरे डिवाइस में अब आपको कनेक्टिफाई दी लेबल वाला वाईफाई नेटवर्क दिखाई देगा। पासवर्ड डालें और इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू करें। ये पेड ऐप है। OS X में इंटरनेट शेयरिंग। मैक कंप्यूटर को वाईफाई हॉटस्पॉट में बदलना बेहद आसान है। सिस्टम प्रेफरेंसेस खोलें, शेयरिंग पर क्लिक करें, बाईं तरफ बने चेक इंटरनेट शेयरिंग पर क्लिक करें। इस तरह आप इंटरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ या आईफोन USB से इंटरनेट कनेक्शन शेयर कर सकते हैं। इसके नीचे आपको एक बॉक्स दिखाई देगा, नेक्स्ट टू कंप्यूटर्स यूजिंग। इसमें आपको नेक्स्ट टू वाईफाई बॉक्स पर चेक करना होगा। बॉक्स के नीचे वाईफाई बॉक्स पर क्लिक करें, नेटवर्क नेम सिक्योरिटी टाइप का चयन करें और पासवर्ड डालकर वेरीफाई करें। आपको पासवर्ड विकल्प ज़रूर चुनना चाहिए। भारत के दूरसंचार विभाग ने वाईफाई इस्तेमाल करने वालों ग्राहकों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। कहा जा रहा है कि विभाग की ओर से उन सभी शहरों में वाईफाई हॉटस्पॉट सिस्टम लगा दिया जाएगा जहां की जनसंख्या कम से कम 10 लाख से ऊपर है। इस काम को सफल बनाने के लिए दूरसंचार विभाग ने कई दूरसंचार कंपनियों से बातचीत भी की है। फिलहाल ये सुविधा निशुल्क होगी या आपको इसके लिए कोई कीमत अदा करनी होगी, इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है। सूचना के अनुसार इस प्रोग्राम को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इस एक प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार ने विभिन्न प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। ये कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की मदद से लोगों को उच्च तकनीक के जरिए सरकार के साथ जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट में अलग अलग क्षेत्रों पर काम किया जा रहा है, जैसे सेहत, शिक्षा आदि। साथ ही लोगों के बीच डिजिटल शिक्षा को बढ़ाया जा रहा है, जिसकी मदद से लोगों में आज के युग को अपनाने की क्षमता आए। सरकार के इस प्रोजेक्ट को विभिन्न चरणों में पूरा किया जाएगा, जो अब से शुरू होकर वर्ष 2018 तक चलने वाला है। इस प्रोग्राम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा बनाई गई एक संस्था की देखरेख में चलाया जा रहा है। अगले 3 वर्षों में भारत संचार निगम लिमिटेड 40,000 वाईफाई हॉटस्पॉट्स के लिए 6,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ये बात BSNL के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर अनुपम श्रीवास्तव ने कही। उन्होंने कहा, अगले 3 वर्षों में हम 40,000 वाईफाई हॉटस्पॉट का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और इसके लिए 6,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। निजी क्षेत्र के लिए किया जा रहा पहल के लिए कंपनी ने 2015-16 में 250 स्थानों पर 2500 हॉटस्पॉट बनाने का लक्ष्य तय किया है। वाईफाई हॉटस्पॉट पर ग्राहक एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क लैन पर इंटरनेट का उपयोग करते हैं।

कंपनी ने पहले ही देश के 70 से 75 लोकेशंस में वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित कर दिया है। श्रीवास्तव ने कहा कि कंपनी पहले

0: मिलेगी। इससे मात्र 20 रुपए खर्च कर यात्री अपने लैपटॉप या मोबाइल पर 1 घंटे इंटरनेट का प्रयोग कर सकेंगे। ट्रेनों के इंतजार के दौरान स्टेशन पर यात्री मोबाइल पर इंटरनेट या व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं तो कुछ लैपटॉप में डाटा कार्ड लगाकर इंटरनेट का प्रयोग कर समय बिताते हैं। इंटरनेट का प्रयोग करने वालों की संख्या अधिक होने से अक्सर कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। यदि कनेक्टिविटी हो भी जाए तो स्पीड काफ़ी कम होती है, लेकिन अब एक साथ 1000 लोगों के इंटरनेट यूज़ करने पर भी इसकी स्पीड धीमी नहीं होगी। स्टेशनों के अलावा विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, बड़े अस्पताल, युवाओं को एकत्रित होने वाले स्थल, हॉस्टल आदि भी हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं। बीएसएनएल इन स्थानों पर 50 से 500 मेगाबाइट क्षमता वाला हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सिस्टम लगाएगा। इसकी न्यूनतम गति 3.6 से 20 एमबी होगी। इसका उपयोग लैपटॉप व एंड्रॉयड मोबाइल उपभोक्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य मोबाइल से इंटरनेट प्रयोग करने वालों के लिए आधुनिक सिस्टम लगाया जाएगा जिसकी स्पीड 3.6 से 8 एमबी तक होगी। बीएसएनएल की इस सुविधा का लाभ सभी मोबाइल कंपनियों के उपभोक्ता उठा सकेंगे। बीएसएनएल इसके लिए हॉटस्पॉट रिचार्ज कूपन बनाएगा जो रेलवे स्टेशन के सभी बुक व अन्य स्टॉल पर उपलब्ध होंगे। अधिक डाउनलोड करने के लिए अधिक कीमत का रिचार्ज कूपन होना पड़ेगा। उपभोक्ता द्वारा रिचार्ज कराते ही मोबाइल या लैपटॉप पर गोपनीय यूजर नेम व पासवर्ड आएगा जिसके माध्यम से उपभोक्ता इंटरनेट का निर्धारित समय तक प्रयोग कर सकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे विज्ञान जगत में एक विज्ञान वार्ता। विषय था भारत में हॉटस्पॉट का फैलता जाल और वार्ताकार थी ताबिंदा इरम। अब आइए बढ़ते हैं संगीत पहेली की ओर। साथियों, पिछले सप्ताह के संगीत पहेली का जवाब भेजने वाले हमारे साथी थे देशावर भागलपुर से सार्जन, टोनी, आयुष, रजनीश और सत्यम। अब आइए मैं आप सभी से एक संगीत पहेली पूछ लेता हूँ। पहेली है दिलबर दिलबर गीत की गायिका कौन है। संगीत पहले के इस सेगमेंट के बाद अब आइए जानते हैं देश और दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। न्यूजीलैंड के बैट्समैन केन विलियमसन ने जून 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की। लगभग 16 वर्ष के करियर में उन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में न्यूजीलैंड का रिप्रेजेंटेशन करते हुए कई हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स हासिल की। केन विलियमसन को क्रिकेट के फैब फोर में शामिल किया जाता है। वे न्यूजीलैंड के मोस्ट इंटरनेशनल रन्स बनाने वाले बल्लेबाज हैं। ओडिशा के फेमस सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रसिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतकर इतिहास रच दिया है। वे यह सम्मान प्राप्त करने वाले फर्स्ट इंडियन बने हैं। उन्होंने रसिया के कलिनग्राड में आयोजित इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ सैंड स्कल्पचर में ग्लोबल वार्मिंग विषय पर बेस्ड 3 मीटर हाई सैंड की कलाकृति प्रस्तुत की जिसे सर्वसम्मति से विजेता चुना गया। इलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन गए हैं। भारत ने जून 2026 में मिशन सुदर्शन चक्र के तहत अपनी इंडिजेनस मल्टीलेयर मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी को और मजबूत करते हुए कई महत्वपूर्ण मिसाइल टेस्ट सफलतापूर्वक किए। इसी क्रम में DRDO ने लगातार 3 मिसाइल परीक्षण किए जिनमें 2 उन्नत BMD इंटरसेप्टर मिसाइल्स तथा नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज का पहला सफल फ्लाइट टेस्ट शामिल था। साथियों, करंट अफेयर्स के इस सेगमेंट के बाद अब आइए कार्यक्रम में लेते हैं एक गीत का आनंद। आवाजें हैं पंकज उदास और साधना सरगम की और फिल्म का नाम है मोहरा।

0: साथियों, संगीत पहेली के जवाब के साथ आप हमें ये अवश्य बताइएगा कि आज का कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है, युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर, पिन कोड नंबर है 8120001 एवं हमारा ईमेल एड्रेस है phairbhagalpur@gmail.com। तो साथियों, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको हमारा ये प्रस्तुतीकरण पसंद आया होगा। अपने सुझाव एवं प्रतिक्रियाएं हमें अवश्य भेजें। अगले कार्यक्रम में हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र प्रशांत को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा वर्ग को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आइए अब प्रस्तुत करते हैं आपको फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत, जिसमें आइए सबसे पहले सुनते हैं फिल्म अनवर से रूप कुमार राठौर की आवाज़ में ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं सईद कादरी ने और संगीत से सवारा है मिथुन ने।

0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम में आइए बढ़ते हैं आगे और अब सुनते हैं फिल्म नमस्ते लंदन से राहत फतेह अली खान और कृष्णा की आवाज़ में ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, संगीत है हिमेश रेशमिया का।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: क्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: श्रोताओं, चलिए फिल्म संगीत कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और अब आइए आपको सुनाते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म गदर का ये गाना, जिसके बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था उत्तम सिंह ने।

श्रोताओं, अब चलते हैं कार्यक्रम, बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अंतिम गाना अली ब्रदर्स की आवाज़ में फिल्म हक से। और इस गाने को के बोल लिखे हैं कौशल किशोर ने, संगीत है विशाल मिश्रा का।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब आइए कार्यक्रम विवरण में जानते हैं हमारी आज की सभा के शेष और हमारी कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही पलों बाद यानी कि शाम 6 बजे से आप सुनेंगे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। आज शाम 7:10 पर हमारा पर्यावरण कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता जैविक खेती की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य में इसकी संभावनाएं, और इसके वार्ताकार होंगे विनय कुमार सिंह। आज शाम 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी, जहां कलाकार होंगी शर्मिला गुप्ता। आज रात 8 बजे से आप सुनेंगे रजनीगंधा फिल्म संगीत कार्यक्रम। आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे नाटक फैसला, इसकी लेखिका होंगी श्री प्रकाश सूर्यवंशी और इसके प्रस्तुतकर्ता होंगे डॉक्टर संतोष अवस्थी निर्मल। आज रात 10 बजे से आप सुनेंगे अंगिका लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंजे बिहार, और आज रात 10:30 पर आप सुनेंगे भावगीत, जिसमें आप सुनेंगे गीत और गजल। अब आइए एक नज़र हमारी कल की सभा की ओर। हमारी कल की सभा आरंभ होगी प्रातः 5:48 पर, जिसमें 5:55 पर आप सुनेंगे खेत खलिहान कार्यक्रम, 6:05 पर आप सुनेंगे चिंतन मनन कार्यक्रम। कल प्रातः 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सुनेंगे आवाज़ में अचानक बदलाव पर डॉक्टर प्रखर उपाध्याय से भेंटकर्ता होंगे सचिन कुमार। कल प्रातः 6:40 पर आप सुनेंगे रामचरित मानस गान पाठ, जहां गायक कलाकार होंगे श्रीकांत पारगावकर और रविंद्र साठे। कल सुबह 7 बजे से लेकर 7:55 तक आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, जिसमें आप जानेंगे मौसम का मिजाज, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियाँ और कल का इतिहास। साथ ही रेस्लिंग कार्यक्रम में कुमारी ज्योति से आप सुनेंगे सुगम संगीत। कार्यक्रम में आगे 7:20 से आप सुनेंगे काव्यांजलि में कृष्णानंद चौधरी से कविता पाठ, और इसके बाद 7:30 से आप सुनेंगे फिल्मी गीत। कल दिन के 9:06 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। 9:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत कार्यक्रम, जहां कलाकार होंगे राजीव कुमार सिंह। कल दिन के 10 बजे से आप सुनेंगे फिल्म संगीत पुरानी फिल्मों से। 10:30 पर आप सुनेंगे लोकगीत कार्यक्रम, जहाँ कलाकार होंगी लीला कुमारी। कल दिन के 10:45 से आप सुनेंगे हमारा समन्वित कार्यक्रम आओ साथ चले हमारे पटना केंद्र से। कल दिन के 11 बजे से आप सुनेंगे फिल्म संगीत नई फिल्मों से। 11:30 पर आप सुनेंगे कंपेयरिंग आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। कल दोपहर 12 बजे से आप सुनेंगे नारी लोक कार्यक्रम। 1 बजे से आप सुनेंगे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग, कलाकार होंगे संचित कुमार सुमन। कल दोपहर 1:30 से आप सुनेंगे घर आंगन कार्यक्रम। 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत चित्रपट से। कल दोपहर 3 बजे से आप सुनेंगे रविंद्र संगीत कार्यक्रम में कलाकार लोप मुद्रा मित्रा को। कल शाम 5 बजे से आप सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम। 5:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। कल शाम 6 बजे से आप सुनेंगे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। कल शाम 7:10 पर श्रमिक जगत कार्यक्रम में आप सुनेंगे, और श्रमिक जगत कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रदर्शन। कल शाम 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी, जहां कलाकार होंगी डॉक्टर स्मिता सिन्हा। कल रात 8 बजे से आप सुनेंगे रजनीगंधा फिल्म संगीत कार्यक्रम। कल रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है हमारे दिल्ली केंद्र से। कल रात 10 बजे से आप सुनेंगे कंपेयरिंग आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक फनकार। कल रात 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत पुरानी फिल्मों से। श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न हुआ। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी।

0: स्वागत है श्रोताओं, आपका इस प्यारे कार्यक्रम में सबको किशन का नमस्कार।
1: सबको पूरो का भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार किशन भाई।
0: नमस्कार पूरो भाई, सुनाइए और सब क्या हाल समाचार हैं?
1: सब हाल समाचार तो बहुत बढ़िया है, सब ठीक है। लेकिन किशन भाई, चिलचिलाती धूप
0: जी,
1: इस यही बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। ये जो गर्मी और मौसम का अचानक परिवर्तित होना, यही बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है।
0: सब प्रकृति की देन है पूरो भाई, इसे घबराने की बात नहीं है। और देश में, हमारे देश में जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो ऋतुओं की बात होती है,
1: तो
0: कभी बड़ा सदाबहार वातावरण भी रहता है, कभी चिलचिलाती धूप भी रहती है, कभी बरसात रहते हैं, कभी कड़ाके की ठंड भी पड़ती है। तो हर मौसम का अपना अलग मिजाज है
1: और
0: सबकी अलग खूबसूरती भी है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्रियाकलाप तो होते ही रहते हैं।
1: हो क्या रहा है किशन भाई, जैसे अभी गर्मी ज्यादा बढ़ रही है ना, तो इसके वजह से हमारा जो पर्यावरण है, हमारे आसपास को जो प्रकृति है, वो भी उसके वजह से ज्यादा, मतलब एक तरह से खतरे में आ रही है। क्योंकि पेड़ लगातार कट रहे हैं, लगातार प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है, जिसके वजह से अब मौसम ज्यादा प्रभाव कर रहे हैं हमारे शरीर पर, हमारे वातावरण पर।
0: जी जी
1: जी,
0: प्रदूषण के कारण तो निश्चित रूप से जान जोखिम में आता है
1: जी।
0: प्रकृति में, खास करके जो वायुमंडल में कल कारखाने से धुआं निकलते हैं, जो छोटे वाहन, बड़े वाहन, बड़े बड़े वाहन, और शहरी क्षेत्र में, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तो चूंकि एक फैले हुए परिवेश में आवासीय पर्यावरण होते हैं, तो वहाँ पर आदमी का, इंसानों का जीवन ज़्यादा बेहतर है, खुशहाल है, स्वस्थ हैं, क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण है। लेकिन शहरी क्षेत्र में, बड़े महानगरों में या औद्योगिक क्षेत्रों में, बड़े बड़े जहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगी हैं, काल कारखाने लगे हुए हैं,
1: जी जी,
0: तो इसके भी उपाय हैं वो। और इस क्षेत्र में वैज्ञानिक भी बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में, पहले के बनिस्पत जो पर्यावरण प्रदूषित होते थे, उस समय के बनिस्पत आज के परिप्रेक्ष्य में उसमें कमियाँ आई हैं, निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
1: जी जी,
0: और
1: जी।
0: वैसे जीवन की जो तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र और आवास, इसके लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील रहते हैं। कमाने खाने लोग शहर में भी रहते हैं, गांव में भी रहते हैं, रोजगार भी करते हैं, नौकरी चाकरी भी करते हैं, व्यवसाय भी करते हैं।
1: जी जी,
0: लेकिन अंत में सबका उद्देश्य होता है आर्थिक उपार्जन करना।
1: जी,
0: तो ऐसे परिस्थिति में हमें चाहिए कि हमारे पास जो भी साधन है, जो संसाधन है, उसमें बेहतर करें, और जो भी साधन है उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दें, और उसी से जो आपको जो बेहतर आमदनी होती है, अपने घर परिवार का गुजारा करें।
1: बिल्कुल,
0: और उसी में 2 पैसा बचा के भी रखें, भविष्य के लिए सुनिश्चित सुरक्षित रख सके।
1: बिल्कुल, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है। जो पैसा तो हर तरीके से कमा दिया जाता है, कम या ज्यादा, लेकिन अगर पैसा कम हो तो इसमें स्वास्थ्य में अगर कोताही करी जाए, अगर हम व्यायाम पर ध्यान ना दे, संतुलित भोजन पर ध्यान ना दे, तो फिर ये करना ठीक नहीं होगा, जिसकी वजह से फिर हम बीमार पड़ सकते हैं, फिर सारा पैसा डॉक्टर के पास।
0: जी, एक बात और भी है पूर्व भाई
1: जी,
0: रोजगार पाने के लिए या आर्थिक समृद्धि या आर्थिक लाभ कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए, नौकरी करने के लिए, जो भी आप समझ सकते हैं
1: जी,
0: कि हमारे बीच, हमारे समाज में रहने वाले लोग दूसरे जिलों में भी जाते हैं, प्रदेशों में भी जाते हैं, कुछ लोग दूसरे देशों में भी जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: लेकिन मूल बात वही आती है कि हमको अर्थोपार्जन करना है और परिवार चलाना है, और परिवार की खुशहाली समृद्धि के लिए बेहतर से बेहतर जो उपाय हो सकते हैं, जो साधन संसाधन हो सकते हैं, उसका इंतजाम करना
1: जी।
0: कुछ इस तरह की बातों की चर्चा आप करना चाह रहे थे।
1: बिल्कुल किशन भाई, ये होता है क्या है कि जब भी हम देखिए बीमार पड़ जाते हैं, या फिर हम दुख में होते हैं, सुख में होते हैं, तो सबसे पहले हमारा परिवार हमारे साथ होता है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और परिवार का कोई सदस्य रोजगार के लिए, जैसा आप बता रहे थे, व्यवसाय के लिए, या फिर बेहतर अवसरों की तलाश में, अपने गाँव से, अपने शहर से, अपने घर से दूर देश चला जाता है, और वहां से अपने परिवार के भरण पोषण और बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए धन भेजता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग परिवार प्रेषण या फिर फैमिली रेमिटेंस कहा जाता है।
0: और भी है पूर्व भाई, हम भी थोड़ा समझना चाह रहे हैं कि जब दूसरे देशों में लोग रहते हैं, तो क्या वहां से कोई मनी ऑर्डर या अपने बैंक के खाते में या किस माध्यम से वो राशि हमारे तक यानी कि उस मुखिया के परिवार तक पहुंचते हैं, जरा इसके बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी बतावे
1: बिल्कुल
0: अपने
1: बिल्कुल किशन
0: श्रोताओं
1: भाई,
0: को।
1: ये होता है ना कि अभी देखिए ये केवल धन का लेन देन नहीं है
2: जी
1: बल्कि इसके साथ बहुत सारी बातें जुड़ी है। एक तो परिवार की उम्मीद है सबसे
0: जी
1: बड़ी,
0: जी जी
1: माता
0: बिल्कुल
1: पिता का जो मुस्कान है वो पैसों से जुड़ा हुआ है,
0: बिल्कुल
1: और बच्चों के सपने जो वो अपने बेहतर भविष्य के लिए बहुत सारे सपने देख रहे हैं वो भी पैसे से है
2: जी।
1: तो अब पैसों का लेन देन कैसे होगा?
2: जी
1: तो आज बदलते परिवेश के साथ हमारा विज्ञान हमारा टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर गया है
2: जी
1: कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बहुत सारे साधन हमारे पास आ चुके हैं। आप
2: है?
1: देखेंगे कि जैसे मोबाइल बैंकिंग
2: जी,
1: अब मोबाइल बैंकिंग में अगर आप किसी भी बैंक के आप खाता धारक हैं तो आजकल मोबाइल में बहुत सारे ऐप आ रहे हैं जिसके चलते आप सिर्फ आसानी से आराम से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं।
0: अच्छा अच्छा ये मोबाइल से लेन देन कर
1: जी
0: लेते हैं, जिनके पास मोबाइल है ही नहीं पूरा,
1: जिनके पास मोबाइल नहीं है
2: जी,
1: तो आप उनके खाता में डायरेक्टली पैसा, खाता नंबर अगर आपके पास हो तो आप उनको एकदम पैसा भेज सकते हैं।
0: यानी कि
1: और
0: जिस
1: अब
0: संस्थान
1: तो
0: में आप काम करते हैं
1: जी जी
0: जिस भी जगह पर हैं जिस भी देश में हैं वहां से सीधे आप अपना राशि खाते में अपने खाते में या अपने परिवार के खाते में वहां से भेज सकते
1: जी,
0: हैं।
1: किशन भाई खाते में तो डाल सकते हैं, अब तो आधार कार्ड के नंबर में भी पैसा दिया जा सकता है
0: जी, ये भी एक उपलब्धि हमारे बीच
1: जी। और यूपीआई के तरह से यूपीआई जो आजकल यूपीआई एक कोड होता है उसके चलते भी आप पैसा भेज सकते हैं, उससे पैसा भेज सकते हैं। और ये नहीं कि ये किसी दूसरे के खाते में चला जाता है, जो सही जानकारी होती है नाम के साथ आता है और आपके परिवारजनों तक वो पैसा पहुंच जाता है।
0: ये तो बड़ी अच्छी सुविधा है पूर्व भाई
1: जी।
0: हम श्रोताओं से आग्रह करेंगे कि कार्यक्रम में और भी बातों की हम चर्चा करेंगे, पूरे घंटे तक आप हमारे साथ बने रहें।
1: जी
0: कार्यक्रम में एक बढ़िया से लोक भजन से शुरुआत करें।
1: एकदम आइए।

0: जी कितना अच्छा भजन अभी हम
1: बहुत
0: लोगों ने
1: मौका
0: सुना।
1: मिलेगा तो और इनसे सुनेंगे।
0: जी जी जी जी बिल्कुल।
1: और पूर्व भाई देखिए, प्रगतिशील समाज के निर्माण में समाज के हर व्यक्तियों का योगदान होता है,
0: एकदम होता है।
1: और आज सरकार के द्वारा भी देखिए ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और चलाए जाते हैं,
0: जी
1: जिसका खास उद्देश्य होता है कि समाज में रहने वाले जो निचले पायदान पर ही व्यक्ति हैं वहाँ तक उस योजना का
0: लाभ
1: लाभ
0: पहुंचे।
1: पहुँचे।
0: जी
1: और ऐसे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अलग हो सकते हैं। कहते हैं सामूहिक दृष्टिकोण से, यदि सामूहिक रूप से मिलके कोई काम को करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें प्रगति मिलती है, काम में
0: बिल्कुल
1: मजबूती आती है और निश्चित रूप से प्रगतिशील समाज का निर्माण होता है।
0: जी जी
1: और ये बिल्कुल प्रमाणित बात है कि प्रगतिशील समाज के निर्माण में समाज के हर व्यक्तियों का योगदान होता है, चाहे वो
0: बिल्कुल होता
1: आंशिक
0: है।
1: रूप से ही सही हो या जितने मजबूती से आप अपनी योग्यता से योगदान दे सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और हमारा समाज इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जरा हम
0: जी
1: लोग भी
0: जी
1: सुनते हैं।
2: विगत 3-4 शताब्दियों से हमारा विश्व समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण को परखने में संलग्न है। इससे पहले भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण था जो महज अटकलों पर आधारित माना जाता था, और तब उसकी स्वीकार्यता नगण्य थी। आदियोगीन और मध्ययुगीन समाज तंत्र मंत्र, हठ साधना, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता तथा चमत्कारों को ही प्रश्रय देने में कायल रहे। हमारा भारतीय समाज आज भी अध्यात्म और विज्ञान की श्रेष्ठता के द्वंद्व में उलझा है, किंतु धीरे धीरे विज्ञान एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण नित्य नए प्रयोग से हमारे समाज पर हावी होकर अपनी श्रेष्ठताओं को प्रामाणिक स्तर पर दृष्टिगोचर कर रहे हैं। समाज के हर वर्ग के लोग जो अंधविश्वास, चमत्कार, टोटके, रूढ़िवाद आदि परंपराओं से ग्रसित रहे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने उसके जकड़नों पर प्रहार कर उसकी आंखें खोल दी। सिर्फ दकियानुसी विचारों से ही विज्ञान ने समाज को नहीं उभारा, बल्कि कृषि, सहकारिता एवं समाज की आम जरूरतों के क्षेत्र में ऐसी क्रांति पैदा कर दी कि उसके महत्व को समाज ने सरे आंखों पर लिया। और आज हर कार्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कसौटी पर अग्रसर है। अब भूत प्रेत, डायन ओझा आदि भूतकाल की बातें बनकर रह गई है। पहले इन बातों में रुचि थी तथा समाज में इसकी स्वीकार्यता भी थी, किंतु आज यह भूले बिसरे दिनों की कहानी बनकर रह गई है। हाल तक चांद और सूरज देवताओं के प्रतीक रूप में समाहित रहे, कवि की कल्पनाएं, कविताओं तथा प्रेमी प्रेमिकाओं एवं बच्चों के चंदा मामा अब गत 70 के दशक से वैज्ञानिकों के चारागाह बन चुके हैं। जब से नील आर्मस्ट्रांग के पैर चांद की धरती का स्पर्श कर गया, पूर्व के सारे मिथक टूटते गए। आज का समाज अब पूर्व की भांति अध्यात्म बंधन से जकड़ा समाज नहीं रहा। वैज्ञानिकों की सोच एवं यांत्रिकरण प्रौद्योगिकी ने समाज में 4 चांद लगा दी है। समाज के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण कल्याणकारी हो और इसका प्रयोग सामाजिक हितों के लिए किया जाना चाहिए। कृषि एवं उद्योग जगत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर समाज सफलता की नई इबारत लिख रही है। आज हम समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संवाद सूत्र एवं इंटरनेट से जुटकर विश्व समाज को एक माला में पिरोया है। आज का समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाकर समाज में व्याप्त आडंबरों का पर्दाफाश किए हैं। प्रत्येक पहलुओं पर सूक्ष्म दृष्टि चिंतन कर सच्चाई की को जान सकने में समर्थ हो रहे हैं। भारतीय समाज का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष है, जहां विविध समुदाय एवं जातिगत लोगों से समाज सुसज्जित है। ऐसी सामाजिक परिस्थितियों में हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाज में संतुलन एवं एकता बनाने में कामयाब रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो समाज में सूक्ष्म विचारों एवं नई तकनीक को जन्म देता है, जो प्रमाणिक तौर पर खरे उतरता है, रूढ़िवादी परंपरागत एवं दकियानुसी विचारों को समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी थोपी जा रही है। इन रूढ़िवादिता एवं भ्रामक तथ्यों को हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचकर इसके खामियों को उजागर करते हैं। अब तमन्नाएं हैं युवाओं की हसरतों में, जिसके कंधे पर सामाजिक बुनियाद टिकी है। विज्ञानवाद एवं समाजवाद का सम्मिश्रण कर इस समाज की विकास गाथा को परिलक्षित करना है। सामाजिक सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कार की रक्षा करते हुए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर सामाजिक गतिशीलता कायम करना होगा। विज्ञान आज समाज के प्रत्येक क्षेत्रों में अपना साम्राज्य कायम कर नित्य निरंतर विकास गाथा को दृष्टिगोचर की है। कंप्यूटर युग के प्रत्यक्ष सहभागिता से समाज संपन्नता की ओर अग्रसर है। विभिन्न ग्रहों की खोज एवं परमाणु प्रसार से विज्ञान का प्रभाव समाज के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। परमाणु अस्त्रों की भयावहता से विश्व समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझने हेतु बाध्य किया और आज जिस चौराहे पर समाज स्थित है वहाँ प्रलय और सृजन दोनों साथ साथ दिखाई पड़ने लगा है। कृषि एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने इतनी विकसित कर दी है कि आज का किसान मजदूर हाथों में मोबाइल धारण किए खेतों में रेडियो बजाते कहां से कहां पहुंचने की स्थिति में है, जिसकी कल्पना आज से शताब्दी पहले तक नहीं की गई। समाज में आम लोगों की जीवन शैली वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इतना प्रभावित हुई है कि लोग वैज्ञानिक उपकरणों वैज्ञानिक विचारों एवं वैज्ञानिक तथ्यों में दिनों दिन रुचि लेते जा रहे हैं। अध्यात्म भले ही उन्हें ललकारे किंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आगे वह बौना साबित हो रहा है और विज्ञान है कि हमारा समाज को कहां से कहां सैर करा रहे हैं। सृजन और विनाशक क्षमता के साथ विज्ञान समाज के बीच अटखेलियों में मस्त है तो सामाजिक परिवेश के ताने बाने भी बिखरने पर हैं। चूंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की गर्म हवाएं पाश्चात्य समाज की ओर से भारत में आयत हुई है, जिसमें भारतीय समाज की नगण्य वैज्ञानिक भागीदारी है, ये हवाएं वहाँ की सभ्यता के इतिहास के साथ साथ वहाँ के रहन सहन वेशभूषा और मानव प्रकृति सहित अनेक अव्ययों के साथ भारत में आयत हुई है कि भारतीय समाज की परंपरागत जीवन शैली डगमगाने की कगार पर हो गई है। अपनी परंपरागत जीवन शैली को छोड़ वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने पश्चात जीवन शैली में ढालने का भी काम किया है। अतः हमारे भारतीय समाज की मर्यादाएं मनुष्यों के कथानायक तथा संयुक्त परिवार की अवधारणाएं समाप्त होने की कगार पर है, जिसे बचाने समाज के मुट्ठी भर के लोग और सफल प्रयासरत है। समाज के लिए विकास एवं सफलता वरदान रही है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण का स्वरूप ऐसा न हो कि हमारे समाज का अपना मूलभूत ढांचे का अस्तित्व ही मिट जाए और हम उस समाज को खो दें जिसे हमारे प्राचीन पुरखों एवं मनुष्यों ने अपने विचारों एवं संस्कारों से संरचित किया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का स्वरूप इस कदर हो कि सामाजिक सांस्कृतिक एवं परंपरागत सभ्यताओं का मूलभूत आधार बची रहे। आज का समाज पश्चात देशों का अवलोकन कर अपनी संस्कृति को नज़रअंदाज कर रहा है। वैलेंटाइन डे बर्थडे पश्चिमी संगीत जैसी शैली अपनाकर हम अपनी संस्कृति एवं विरासत की अवहेलना कर रहे हैं। इस प्रकार आधुनिक समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के साथ साथ विरासतों की रक्षा भी संभालने की जिम्मेदारी आन पड़ी है, किंतु इसे संभाल पाना टेढ़ी खीर साबित हो रहे हैं। दरअसल भारतीय समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के सामने आध्यात्मिक दृष्टिकोण को भी सुरक्षित रखना अनिवार्य है, किंतु यह जिम्मेदारी अपरोड़ों एवं अध्यात्म गुरुओं तक सिमटती जा रही है। जबकि युवा शक्ति एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के व्यक्ति अपने जिम्मेदारी विज्ञान एवं उसके जनक देशों से आकर्षित होकर इससे युद्ध राह टटोलने में समाज की भलाई समझने लगे हैं। विज्ञान की प्रत्यक्ष और अध्यात्म की परोक्ष को एक साथ देखने में वो यकीन नहीं रखते। आज समाज में कुरीतियों एवं रूढ़िवादिताओं का आलम है। ठगी एवं धोखाधड़ी का जाल नित्य प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे बचाने के लिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करना होगा। आज समाज में वैज्ञानिक चिंतन एवं प्रमाणिक तथ्यों का अवलोकन करना नितांत आवश्यक है। किसी मत मतांतर को अपनाने आस्था को जगाने एवं विचारों को थोपने से पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना अनिवार्य है। वैज्ञानिक तथ्यों एवं विश्लेषण से समाज के प्रत्येक पहलुओं प्रभावित होते हैं। समाज प्रबुद्ध संपन्न एवं समृद्ध तभी हो सकता है जब हम प्रत्येक पहलुओं पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार कर कार्य करें तो सफलता में चार चांद लग जाएगी और हमारा समाज विश्व के प्रबलतम देशों की श्रेणी में खड़ी होगी। परंपरागत समाज की बुनियादी विचार अवधारणा जो मध्यकालीन समाज से होकर आधुनिकता की ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिपक्वता की ओर अग्रसर है, समाज की मूलभूत ढांचे जो सामाजिक संस्कृति को परिलक्षित करती है, भौगोलिक एवं अंतरिक्ष खोज के साथ साथ नए आविष्कार इसी विज्ञान जगत की सौगात है। जिन साधनों एवं उपकरणों के बल पर सामाजिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण में तब्दील हुई है, आवश्यकता है कि हम अपने परंपरागत बुनियादी ढांचों से निर्मित समाज का मूल संरचनाओं की रक्षा करते हुए विज्ञानवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अवलोकन करें, ताकि हमारा समाज सफलता की क्षितिज पर पहुंचकर अपना नई परिभाषा को परिलक्षित कर सके।
0: जी, तो हम श्री रमन कुमार मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, जिन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण और हमारा समाज और उस पर क्या प्रभाव पड़ते हैं इस पर विशेष जानकारी दी, और हमारे श्रोताओं को भी ये बात समझ में आ ही गई होगी। तो अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है कि हम अपने लोक संगीत की जो धारा है, हमारी लोक परंपराओं का एक बड़ा खूबसूरत अंग है जिसमें बहुत सारे गीत की विधाएँ हैं, और उसी में से एक बड़ा सुंदर और

0: लगे हाथ कुछ संदेशों को सुनते हैं।
1: जी।
2: Some cars are designed to blend in, others are designed to be remembered. Meet the Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0-liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV-inspired design, already trusted by more than 4 lakh proud owners across India. Fronx is now available starting at just Rs. 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now. Nexa.
3: सुनो ना,
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो

0: बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001-4242।
0: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Only for rupees 10.99 lakh, with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric. Nexa.
5: चलिए, बहुत सारे संदेशों को हम लोग सुने पूर्व भाई।
6: जी जी जी।
5: और गीत संगीत की बात हो रही थी, आंचलिक गीत की भी बात हो रही थी, क्षेत्रीय गीत की भी बात कर रहे थे
6: जी,
5: लोक गीत की विधा के बारे में बता रहे थे। लगे हाथ बढ़िया से एक और झूमर अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं
6: जी। बिल्कुल।

0: कुछ मौसम सूचना दें
1: बिल्कुल
0: ताकि
1: बिल्कुल
0: किसान भाई खेती बाड़ी का जो अभी समय आने वाला है, कब बिचड़ा उछड़ा गिराएंगे या अभी कौन सा फसल के बारे में जानकारी रखें कि उसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं।
1: जी, मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि 13 से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में दो स्थानों के साथ गरज चमक, 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने एवं हल्के मध्यम वर्षा होने की अनुमान है। हालांकि भागलपुर एवं बांका में भारी बारिश की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80% तथा दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है।
0: पूर्व भाई देखिए, धान हमारे क्षेत्र का बल्कि देश का एक प्रमुख फसल है और ऐसे में धान की खेती मुख्य रूप से,
1: जी जी बिल्कुल,
0: अभी हल्की बारिश भी होने की संभावना है। आने वाले दिनों में रोहनिया बिहन ये सभी बुनाई करेंगे किसान भाई।
1: जी जी,
0: तो धान के बारे में कुछ जरा स्पष्ट करें।
1: बिल्कुल, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे कि सबौर श्री, स्वर्ण सब एक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र श्वेता, स्वर्णा एवं BPT 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करें। स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी से सड़ी हुई गोबर के खाद व्यवहार करें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर तथा लंबाई सुविधानुसार रखें।
0: पूर्व किसान भाइयों से एक आग्रह अभी और करना चाहेंगे, जिस खेत में आप धान की बुआई बिहन के लिए आप करेंगे, बढ़िया से 2-3 चास आप उसको जोत लीजिए और हल जो भी हो, चाहे देसी हल हो या ट्रैक्टर से हो, ठीक है। और इसमें एक अच्छी बात ये होगी कि जो अभी चिलचिलाती धूप है तो जमीन के अंदर, खेत के अंदर जो भी कीड़े मकोड़े कीट व्याधि होते हैं इस धूप से मर जाएंगे। उसके बाद में आप थोड़ा सा कंपोस्ट उसमें छिड़िया दीजिए, फिर आप पलट दीजिए। उसके बाद जब आप धान की बुआई करेंगे तो बड़ा सुंदर बिहन निकलेगा।
1: जी जी, और एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी तैयार करनी चाहिए। बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से करें और बीज गिराने के पूर्व बीजोपचार अवश्य कर लें। जितने क्षेत्र का धान को रोपना है उसके दशांश हिस्से में बीज गिराएं और बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम आपको बाविस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए।
0: जी,
1: अब मक्के की बात कर लें तो खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें।
0: बिल्कुल,
1: खेत की जुताई 10 से 15 टन गोबर सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर दर से हमें व्यवहार में लाना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 40 किलोग्राम स्फूर, 50 किलोग्राम पोटास आप व्यवहार में ला सकते हैं।
0: जी,
1: और अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे कि सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है, तो आप इसकी बुआई भी कर सकते हैं।
0: जी,
1: अब मूंग की बात करें तो मूंग की तैयार फलियों की आप तुड़ाई करें और हरी खाद हेतु पौधों की मिट्टी पलटे और हल से जमीन में आप एकदम हल्के हल्के जमीन में आप
0: पूर्व भाई दें। लगता है सारी जानकारी आज ही बता देंगे अपने किसान भाइयों को, आगे के कार्यक्रम के लिए भी कुछ सुरक्षित रखें।
1: बिल्कुल,
0: पता
1: बिल्कुल।
0: चला आप इतनी बात बता रहे हैं कि कुछ उनके ध्यान में रहा, कुछ दूसरे कान से निकल गया। खेती बाड़ी की चर्चा हो रही, किसान भाई आप ही की बात करते हैं, बढ़िया सा कृषि गीत सुनते हैं।

0: जी कितना बढ़िया एकदम, मतलब कृषि गीत सुनने के बाद
1: जी
0: किशन भाई लगता है कि नहीं हमारे किसान भाई जो अपने भावों को, एक
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: मतलब जो खेत में तो प्रस्तुति कर ही रहे हैं, उससे
1: जी
0: अनाज जो आ रहा है उनके
1: जी जी
0: जो मुनाफा हो रहा है वो भी दिख
1: बिल्कुल
0: रहा है, लेकिन गीतों में जो दिख रहा है वो बिल्कुल एकदम मधुर है
1: बिल्कुल।
0: जी।
1: खेती बाड़ी के समय उनका जब उनका मनमोहक अंदाज आप देखेंगे तो बड़ा प्रफुल्लित आप भी हो जाएंगे पूर्व भाई। अब कुछ खेती बाड़ी की और चर्चा कर लें अपने किसान भाइयों के साथ।
0: जी
1: खरीफ फसल की तैयारी कैसे करेंगे,
0: जी
1: इस विषय पर भी थोड़ी जानकारी प्राप्त करें किसान भाई। फसल उत्पादन की दृष्टि से यह महीना काफी महत्व

पंकज, राजेंद्र मसूरी एवं स्वर्णा सावन की रोपनी करते हैं। इसके उपरांत मध्यम यानी 130 से 135 दिनों में तैयार होने वाली किस्म

ताकि उनके पुष्पन के समय वायुमंडलीय तापमान अपेक्षाकृत कम हो जाए, जिससे चावल की खुशबू एवं गुणवत्ता और भी अच्छी हो जाती है। प्रकाश से संवेदनशील दानों की किस्में जैसे कतरनी, सुगंधा, तुलसी मंजरी आदि तो चाहें जब भी बीज गिराएं, उसमें पुष्पन 20 अक्टूबर के बाद ही होगा। अतः धान की सुगंधित किस्मों की बुवाई जुलाई के प्रथम पखवाड़े में करें। नर्सरी में बीज गिराने से पहले उसे बेविस्टीन की 2 ग्राम दवा 1 किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें, क्योंकि बीजोपचार से बीज जनित बीमारियों की रोकथाम के अलावा बीजों का जमा प्रतिशत भी बढ़ जाता है। धान की रोपनी हेतु खेत की तैयारी अच्छी तरह करें। यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि जमीन समतल हो, अन्यथा कहीं पानी कम और कहीं बहुत अधिक जल होने से फसल में उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उपज कम होती है। बिचड़ों की समय पर रोपनी करना अति आवश्यक है। देर पर रोपनी करने पर कल्ले कम निकलते हैं और पकने की अवधि भी बढ़ जाती है, जिससे रबी फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। धान की रोपनी के लिए जो बिचड़ा प्रयोग में लाया जा रहा है वह 25 दिनों से अधिक उम्र का नहीं हो। पुराना बिचड़ा होने पर पौधों की संख्या एक जगह पर 1-2 से के स्थान पर 2-3 कर देनी चाहिए। बिचड़ा को लगाने के समय ध्यान रखें कि उनकी जड़ें क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए। अगर बिचड़ों की जड़ें क्षतिग्रस्त होंगी तो उन्हें रोपा वाले खेत में स्थापित होने में अधिक समय लगेगा और उनमें कल्ले भी कम निकलेंगे। धान की रोपनी करने के लिए जब बिचड़ों को कदवा में डाला जाए तो उंगलियां जड़ों के नीचे तक रखनी चाहिए। इससे जड़ें कम क्षतिग्रस्त होती हैं और जल्दी स्थापित होती हैं। रोपनी अधिक गहराई में नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से कल्ले कम निकलते हैं। अच्छा होगा कि रोपनी 1 इंच की गहराई पर ही की जाए। ऐसा कर आप पौधों में कल्लों की संख्या बढ़ा सकते हैं। खेत में उर्वरकों की मात्रा एवं उनके प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि धान की फसल में पोषक तत्वों की हानि अधिक होती है। इससे बचने के लिए आप किसी भी तरह उर्वरकों को कदवा से 3-4 इंच नीचे पहुँचा दें। यदि उर्वरक सतह पर रह गया तो नत्रजनीय उर्वरकों की अत्यधिक हानि होगी तथा फॉस्फोरस एवं पोटास भी पौधों को उपलब्ध नहीं होंगे। इसलिए जब कदवा के लिए आखिरी जुताई करने जा रहे हैं तो उसके पहले खेत में उर्वरक समान रूप से छींट दें। उर्वरक डालने के बाद आखिरी जुताई कर पाटा दे दें। इस प्रकार उर्वरक अपने उचित स्थान पर पहुँच जाएंगे और हानि कम होगी। आमतौर पर धान के उन्नतशील प्रभेदों के लिए प्रति हेक्टेयर 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्पोर एवं 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा अनुशंसित की गई है, परंतु लंबे प्रकाश से संवेदनशील प्रभेदों के लिए इसकी आधी मात्रा ही पर्याप्त होगी। रोपनी के समय नत्रजन की आधी मात्रा तथा स्पोर एवं पोटास की पूरी मात्रा को खेत में समान रूप से छींट कर कदवा कर दें। जिंक की कमी से खैरा रोग का प्रकोप आजकल बहुत देखा जा रहा है, अतः रोपनी के 5-6 दिन पूर्व 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। नत्रजन की 1/4 मात्रा का उपरवेशन रोपनी के 20 दिनों के बाद अवश्य कर दें। जब खेत में चिपचिपा पानी हो या मिट्टी गीली हो तो यूरिया खाद का उपरवेशन करना चाहिए। खाद डालने से 1 दिन पूर्व या 1 दिन बाद खरपतवार अवश्य निकाल दें। इस मौसम में अनुकूल वातावरण के कारण खरपतवार में वृद्धि अधिक होती है और ये फसल की उपज को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। अधिकतर किसान धान की फसल में खरपतवार हाथ से निकालते हैं, जो बहुत ही खर्चीला तरीका है। आप खरपतवार नाशी दवाओं का प्रयोग कर इस खर्च को कम कर सकते हैं। धान की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए ब्यूटाक्लोर की 3 लीटर दवा या प्रीतिला क्लोर की 1.5 लीटर दवा को 100 किलोग्राम बालू में अच्छी तरह मिलाकर रोपनी के 3-4 दिनों के अंदर रोपे गए 1 हेक्टेयर खेत में छिड़काव करें। फसल सुरक्षा के बारे में उनके विशेषज्ञ से समय समय पर सलाह लेते रहें। धान की पारंपरिक खेती यानी नीची एवं मध्यम भूमि में नील हरित शैवाल कल्चर का व्यवहार बहुत आवश्यक होता है। यह एक जीवाणु खाद है जो पौधों को अधिक नत्रजन उपलब्ध कराने में सहायक होता है। इसके व्यवहार करने की विस्तृत जानकारी आप उनके विशेषज्ञ से बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर आकर प्राप्त कर सकते हैं। मक्का। किसान भाई ने मक्का की बुवाई जून माह में संपन्न कर ली होगी। मक्के की फसल में निकाई गुड़ाई करें। मक्के के खेत में पानी को जमने नहीं दें, अर्थात जल निकास की अच्छी व्यवस्था करें, क्योंकि मक्के के पौधे अधिक पानी सहन नहीं कर सकते।
मक्के के घुटने भर के पौधे होने पर नत्रजन की एक तिहाई मात्रा को कतार में डालकर मिट्टी चढ़ा दें। धड़छेदक कीड़े के प्रभाव से बचने के लिए फुराडोन 3G दानेदार दवा का मक्का के गाभा में 4 से 5 दाना डालकर व्यवहार करें। मक्का की फसल में धनवाल निकलने के समय बची हुई नत्रजन की मात्रा का व्यवहार कतार में करें। दलहनी फसलें जैसे ऊंची जमीन में की जानी चाहिए। दलहनी फसल में निकाई गुड़ाई एवं कीट व्याधियों का नियंत्रण करें। जिन किसान भाइयों ने दलहनी फसलों की बुवाई अभी नहीं की है तो वे इस माह के प्रथम सप्ताह में संपन्न कर लें। किसान भाई अरहर की किस्में जैसे बहार, पूसा 9, नरेंद्र अरहर 1 एवं मालवीय चमत्कार की बुवाई कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर एवं पौधा से पौधा की दूरी 20 सेंटीमीटर पर करें। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 20 किलोग्राम बीज एवं 100 किलोग्राम DAP खाद की आवश्यकता होगी। अरहर के साथ मिश्रित खेती काफ़ी लाभप्रद साबित होती है। मिश्रित खेती के लिए अरहर की बुवाई कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर एवं पौधा से पौधा की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इसके लिए अरहर की 2 कतारों के बीच में 1 पंक्ति मकई या 2 पंक्ति मड़ुआ या 2 पंक्ति कलाई या 1 पंक्ति हल्दी की करें। कलाई की बुवाई के लिए T9, पंतोरद 30, पंतोरद 31 एवं शेखर का व्यवहार करें। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें एवं 1 हेक्टेयर खेत के लिए 20 किलोग्राम बीज एवं 100 किलोग्राम DAP खाद का व्यवहार करें। तिलहनी फसलें जैसे मूंगफली, तिल एवं सोयाबीन की फसल में आवश्यकता से अधिक पौधों की बछनी कर निकाई गुड़ाई करें। फसलों की बुवाई इस माह के प्रथम सप्ताह में भी कर

0: सकते हैं। जल निकासी की समुचित व्यवस्था करें। मूंगफली की गुच्छेदार किस्में जैसे AK1224, कुबेर, JL24 और फैलने वाली किस्में जैसे M13 की बुवाई कतार से कतार की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर पर करें। एक हेक्टेयर खेत के लिए 75 से 80 किलोग्राम पुष्ट बीज की आवश्यकता होगी। मूंगफली की खेती के लिए एक हेक्टेयर खेत में 100 किलोग्राम DAP खाद का व्यवहार करें। जस्ता की कमी वाले खेत में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से दें। किसान भाइयों ने यदि तिल की बुवाई अभी संपन्न नहीं की है तो ऊंची जमीन में तिल की किस्में जैसे कृष्णा, कांके सफ़ेद, कालिका एवं प्रकृति की बुवाई कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर एवं पौधा से पौधा की दूरी 15 सेंटीमीटर रखकर कर सकते हैं। एक हेक्टेयर खेत के लिए 5 किलोग्राम बीज एवं 40 किलोग्राम नत्रजन, 20 किलोग्राम स्पोर एवं 20 किलोग्राम पोटास का व्यवहार करें। नत्रजन की आधी मात्रा एवं स्पोर एवं पोटास की पूरी मात्रा खेत में अंतिम जुताई के समय अच्छी तरह मिलाएं। किसान भाई ऊंची जमीन में सोयाबीन की बुवाई भी कर सकते हैं। सोयाबीन की किस्में जैसे बीरसा सोयाबीन 1, ब्रेक, JS21, अलंकार को कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर एवं पौधा से पौधा की दूरी 15 सेंटीमीटर रखकर बुवाई करें। एक हेक्टेयर खेत के लिए 75 किलोग्राम बीज एवं 20 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम स्पोर और 40 किलोग्राम पोटास का व्यवहार करें। नत्रजन, स्पोर, पोटास की पूरी मात्रा खेत में अंतिम जुताई के समय अच्छी तरह मिलाएं। ईख, शरद एवं बसंतकालीन में रोपी गई गन्ने की फसल में कल्ले निकलने की अवस्था समाप्त कर बढ़वार की अवस्था में प्रवेश करेगी। इस समय खासकर आद्रा नक्षत्र में गन्ने के पौधों पर मिट्टी चढ़ाने का कार्य करना अत्यंत ही आवश्यक है। आप पौधों को के बढ़ोतरी में मिट्टी चढ़ाते समय नत्रजन की बची हुई मात्रा यानी 77 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें।
1: जी, खरीफ फसल की तैयारी कैसे करें इस विषय पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे किसान भाई
2: जी।
1: हाँ, RP शर्मा इस विषय पर टिप्पणी कर रहे थे। और पूर्व भाई, जैसे शुरू में हम लोग चर्चा कर रहे थे
2: जी
1: कि टका पैसा कमाने के लिए घर परिवार की अच्छे ढंग से व्यवस्थित ढंग से रहे चले
2: जी,
1: उसके लिए कमाने के लिए लोग देश विदेश में भी जाते हैं। उसी तरह हमारे ग्रामीण परिवेश में भी देखिए कि जब फसल कटाई के बाद थोड़े फुर्सत में रहते हैं या एक फसल दो फसल के बीच का कुछ खाली समय रहता है
2: जी जी,
1: तब वो भी हमारे किसान भाई या ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर भाई दूसरे शहरों में प्रदेशों में खेती बाड़ी के बाद कुछ कमाने धमाने के लिए भी
2: निकल
1: जाते हैं। उनकी क्या व्यथा होती है इस परिस्थिति में वहाँ पर रहते हुए, जरा इस पूर्वी के माध्यम से महसूस करें।

0: गे जयपुर के, जयपुर के, जयपुर के महिमा अपार थे।
1: चलिए
2: जी,
1: इस गीत के बाद हम लोग अपने किसान भाइयों से यही अनुमति लेते हैं, कल के कार्यक्रम में ढेर सारी बातों की चर्चा करेंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे किसान भाइयों को ये कार्यक्रम पसंद भी आया होगा।
1: सबको किसान का नमस्कार,
2: सभी को पूर्व का भी नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में किया झारखंड कृषि व्यापार मेला का उद्घाटन। जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने और कृषि निर्यात में वैश्विक पहचान बनाने का दिया संदेश। राज्य में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव का काउंटडाउन शुरू। मिशन 28 के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन ने 23 की चुनावी रणनीति। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दी SIR प्रक्रिया की जानकारी। राज्य के 1,63,00,000 मौजूदा मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने से मिली छूट। राज्य के क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक में अमरीकी कंपनियों ने दिखाई निवेश की रुचि। प्रोजेक्ट भवन में मुख्य सचिव के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक। और रांची में कल से थ्रो बॉल और स्केटिंग का महाकुंभ। दक्षिण एशियाई चैंपियनशिप और 12वीं नेशनल रैंकिंग के लिए रांची में जुटेंगे 5 देशों के खिलाड़ी और देश भर से 1,000 स्केटर्स। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोराबादी मैदान में 3 दिवसीय झारखंड कृषि व्यापार मेला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने मेले के लोगों का लोकार्पण किया और ताना भगत परिवारों को पशु शेड निर्माण के लिए 100% अनुदान राशि सौंपी। मुख्यमंत्री ने जैविक खेती तथा आधुनिक तकनीक अपनाने पर जोर दिया।
1: हम लोगों ने पिछले कार्यकाल में ही बिरसा हरित ग्राम योजना प्रारंभ किया, जहां किसान अपने खेतों में बंजर भूमि में फलदार वृक्ष लगाने का, और आज उसका फल मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर सिमडेगा की वो महिलाएं जो बिरसा हरित ग्राम योजना से जुड़ी हुई हैं, आज वो अपना आम इंग्लैंड में भेजने का काम कर रही है। आप सभी किसान भाइयों से एक ही चीज निवेदन करूंगा कि आपने इन फसलों में कोई जहरीला पदार्थ का उपयोग ना करें, वो शारीरिक रूप से काफी नुकसानदेह होता है।
0: राज्य में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। रणनीति के तहत एनडीए ने अपने सभी विधायकों को रांची के 1 5-सितारा होटल में शिफ्ट कर दिया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने कहा कि सभी विधायक एकजुट हैं।
2: पार्टी के विधायक पार्टी लाइन से हट के कभी कुछ नहीं सोचता है। लाइन प्रत्याशी को समर्थन देने का परिमल नाथवानी जी को सभी पूरी तरीके से एकजुट होकर के उस निर्णय के साथ खड़े हैं। अभी तो आना होगा, फिर आगे देखा जाए।
0: इधर इंडिया गठबंधन ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आज और कल रांची में मुख्यमंत्री आवास पर गठबंधन के सभी विधायकों और प्रमुख नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बीच राज्य के मंत्री इरफान अंसारी ने दावा किया है कि इस चुनाव में गठबंधन की जीत निश्चित है।
3: हम लोग जीतेंगे, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। देखिए, ये बंगाल नहीं है, झारखंड है, और यहाँ इस बार लोग अस्मिता के साथ झारखंड की मान मर्यादा के साथ वोट करने जा रहे हैं।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन ने रांची स्थित लोक भवन में शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को बताया कि नामकुम मिलिट्री हॉस्पिटल में 19 जून तक विशेष नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और आम नागरिकों को निःशुल्क नेत्र जाँच की सुविधा मिल रही है। राज्यपाल ने इस लोक कल्याणकारी पहल की सराहना की। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि वर्ष 2003 की SIR सूची से मैपिंग पूरी होने के बाद राज्य के 1,63,00,000 मौजूदा मतदाताओं को कोई दस्तावेज नहीं देने होंगे। इन मतदाताओं को केवल प्री फिल्ड गणना फॉर्म और रंगीन फोटो जमा करना होगा। प्रवासियों के लिए बुक ए कॉल की सुविधा दी गई है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
4: तकनीक
0: से समाचार इस विराम के बाद।
4: खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
5: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हां, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं, महा उत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
7: भाइयों बहनों जोहार, झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार।
6: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखे झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
8: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
9: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के रोक बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने गुमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार के क्रियाकलापों की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि देश की खुशहाली के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है।
10: 1 रुपया यदि भेजते हैं तो लाभ के 15 पैसा पहुंचते थे, 85 पैसा बिचौलिया। वही चीज को एक बड़ा पारदर्शिता ये भारत में लाया प्रधानमंत्री, ताकि कोई बिचौलिया किसी ऐसा तत्व का कोई हाथ ना लगे, 100% लाभुक के बीच में पहुंचे।
0: अमेरिकी कंपनियों ने झारखंड में दुर्लभ और रणनीतिक खनिजों के खनन में गहरी रुचि दिखाई है। इस संबंध में आज रांची में मुख्य सचिव अविनाश कुमार और अमेरिकी काउंसलेट जनरल के प्रतिनिधिमंडल के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई। मुख्य सचिव ने कंपनियों को लिथियम और टाइटेनियम जैसे खनिजों के अन्वेषण में निवेश के लिए आमंत्रित किया। राज्य में मानसून का विस्तार तेजी से हो रहा है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 2 दिनों तक इसके कुछ कमजोर रहने के आसार जताए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि प्रशांत महासागर में अलनीनो की सक्रियता से खेती किसानी प्रभावित हो सकती है। हालांकि मानसून धनबाद, बोकारो और कोल्हान प्रमंडल को पूरी तरह कवर कर चुका है। विभाग ने कल रांची और रामगढ़ सहित अधिकांश जिलों में वज्रपात और तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी रांची कल से 2 बड़े खेल आयोजनों के साथ खेल मानचित्र पर चमकने के लिए तैयार है। खेल गांव में कल से द्वितीय दक्षिण एशियाई थ्रो बॉल चैंपियनशिप 2026 का आगाज हो रहा है, जिसमें भारत, नेपाल और श्रीलंका सहित 5 देशों के 150 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। झारखंड की अरुणा यादव भारतीय महिला टीम की कमान संभाल रही हैं। इसके साथ ही कल से ही खेलगांव में 5 दिवसीय 12वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप भी शुरू हो रही है। इसमें देश भर के 1000 से अधिक स्केटर्स अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में किया झारखंड कृषि व्यापार मेला का उद्घाटन। जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने और कृषि निर्यात में वैश्विक पहचान बनाने का दिया संदेश। राज्य में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव का काउंटडाउन शुरू। मिशन 28 के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन ने 23 की चुनावी रणनीति। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दी SIR प्रक्रिया की जानकारी। राज्य के 1,63,00,000 मौजूदा मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने से मिली छूट। राज्य के क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक में अमेरिकी कंपनियों ने दिखाई निवेश की रुचि। प्रोजेक्ट भवन में मुख्य सचिव के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक। और रांची में कल से थ्रो बॉल और स्केटिंग का महाकुंभ। दक्षिण एशियाई चैंपियनशिप और 12वीं नेशनल रैंकिंग के लिए रांची में जुटेंगे 5 देशों के खिलाड़ी और देश भर से 1000 स्केटर्स। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
11: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड के 110.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा पर्यावरण कार्यक्रम। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं वार्ता। वार्ता का विषय होगा जैविक खेती की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की भविष्य में इसकी संभावनाओं। और इस वार्ता के वार्ताकार हैं विनय कुमार सिंह।
1: यह जगत जैव एवं अजैव पदार्थों से परिपूर्ण है। जैविक पदार्थों से उपजे या उपजाए जाने वाली खेती जैविक खेती कही जाती है। जैविक खाद में से गोबर, पक्षी के मल, वृक्ष पौधे की पत्तियां, डंठल, फल के छिलके, पुआल, गेहूं, मक्का, ईक, दलहन, तेलहन, ढैचा, कुद्रुम, जूट, केंचुआ, सड़े गले जानवर, जानवर की हड्डियां, नीम का खल्ली आदि जैविक खाद के अंतर्गत आते हैं। चीन जापान में जैविक खाद का प्रयोग बहुत बड़े मात्रा में करते हैं। इन देशों में 5000 वर्षों से जैविक खेती कृषक करते आ रहे हैं। भूतकाल से करते हुए वर्तमान समय में भी बड़ी मात्रा में जैविक खेती कर प्रचुर मात्रा में अनाज, फल, सब्जी उत्पादन करते हैं और चीन, जापान एवं इसकी अपार संभावनाएं हैं। भारत में 1960-1965 के बीच जैविक खेती की ही अधिकता थी, जिससे उपजे अनाज, दलहन, तेलहन, फल, सब्जी अति सुस्वादु एवं पोषक युक्त था। वर्तमान में तो भारत में जैविक खेती संपूर्ण भारतवर्ष के 2.5% कृषि भूमि में की जाती है, जबकि हजारों वर्ष पूर्व भारत के सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, सोन, कोसी, चांदन, बदुआ, क्यूल मैदानी क्षेत्रों में जैविक खेती भूतकाल में हो रहा था। जैविक खेती से प्रचुर मात्रा में फसल का उत्पादन होता है, जबकि रासायनिक खाद से एकाध बार छोड़कर बकिये कृषि काल में उत्पादन दर कम हो जाती है, खेतों में क्षारीयता बढ़ जाती है। दूसरी हरित क्रांति पूर्वी भारत एवं दक्षिणी भारत में करने की संभावनाएं हैं। यह कृषि पट्टी हरित क्रांति दूसरी ग्रीन रेवोल्यूशन सेकेंड के लिए बड़ा ही उपयुक्त एवं उपजाऊ है। दूसरी हरित क्रांति के दौरान जैविक खाद का प्रचुर मात्रा में प्रयोग कर बड़े मात्रा में फसलों, फलों, सब्जियों की खेती की जा सकेगी। इस कृषि पट्टी में जैविक खेती की अपार संभावनाएं भविष्य में है। भारतवर्ष में मात्र 2.5% कृषि भूमि में जैविक खेती की जाती है, जबकि वर्तमान समय में ही इसके प्रतिशत में वर्ष दर वर्ष सतत बढ़ोतरी की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में इसका प्रतिशत 25-85% हो जाए। फलत खाद्यान्न, दलहन, तेलहन, गन्ना, तंबाकू, काफ़ी, नारियल, फल, सब्जी के उत्पादन में कई गुना बढ़ोतरी हो जाए, जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहे, जीव जंतुओं की मृत्यु रासायनिक खाद से जो होता था वह जैविक खाद के प्रयोग से रुक जाएगा, जल, मृदा, वायु प्रदूषण मुक्त एवं स्वच्छ रह पाएंगी। भारतवर्ष में जैविक खाद एवं 350 तरह के जीवनाशी कीटनाशक से फसलों, फलों, खाद्यान्न, दलहन, तेलहन, सब्जी की खेती में बढ़ोतरी कई गुना कर सकते हैं। इससे मानव सहित जीव जंतु सभी स्वस्थ एवं प्रदूषण मुक्त रह सकते हैं। स्वस्थता के कारण बीमार लोगों की जनसंख्या कम हो जाएगी और स्वस्थ लोगों की जनसंख्या में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। भारत ही नहीं, दुनिया के सभी राष्ट्रों में प्रचुर मात्रा में जैविक खाद है, जिसका प्रयोग कर भविष्य इसका उज्ज्वल करने की असीम संभावनाएं हैं। हरित आर्थिक नीति ग्रीन इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत कृषि क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में जैविक खेती की जानी चाहिए, ताकि भूमि की उर्वरता जस की तस बनी रहे। इस नीति के तहत फलों, फसलों, अनाजों, दलहन, तेलहन खेती की अपार संभावनाएं भविष्य में है। इस नीति के तहत कृषि जन उद्योग एवं खाद्यान्न फल प्रसंस्करण उद्योग स्थापित कर आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाएगा। भारतवर्ष में 10 अरब एवं बिहार में 1.5 अरब लोगों के लिए खाद्यान्न फसल उपजाया जा सकता है। भारतवर्ष में 14-15 करोड़ टन के बजाय 60 करोड़ टन फल सब्जी उपजाया जा सकता है। ग्रीन इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत जैविक खेती की जाएगी तो जगत हरी भरी स्वर्ग हो जाएगी, जिसे जलवायु परिवर्तन को संतुलित किया जा सकता है। भविष्य में अपार संभावनाएं इस खेती की है। अगर भविष्य में पहाड़ी पठारी मैदानी समुद्रतटीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में जैविक खेती के माध्यम से अनाज दलहन तेलहन केतारी फल सब्जी की खेती की जाए तो पर्याप्त मात्रा में अनाज फल सब्जी का उत्पादन होगा। यह खाद्य उत्पाद तो सुस्वादु होगा ही, मनुष्य सहित पशु पक्षी जीवाणु कीटाणु का जैव विविधताएं जस का तस बनी रहेगी। रासायनिक खाद के प्रयोग से मेढक मछली केचुआ पक्षी आदि इसके उपजे दाना डंठल मांस खाने से काल कल्पित हो जाते हैं। भारत समेत एशियाई देशों के लाखों की संख्या में मरे जानवरों के लाश का मांस खाने से काल के गाल में समा गए हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में मछली मेढक सांप कछुआ रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशी का प्रयोग फसल फल सब्जी के खेती में प्रयोग करने से उसके प्रदूषित जल वायु मृदा के सेवन से काल कल्पित हो गए हैं। अब हम मानव जातियों का यह कर्तव्य बन जाता है कि रासायनिक उर्वरक का अत्यल्प मात्रा में प्रयोग फसलों फलों सब्जियों की खेती में की जाए, जैविक खेती की मात्रा अधिकाधिक उत्तरोत्तर बढ़ाया जाए ताकि मानव सहित सभी संबंधित जीव जंतु पशु पक्षी स्वस्थ सुरक्षित संरक्षित एवं दीर्घायु रह सके। जैविक पारिस्थितिकी तंत्र भी पर्यावरण में संतुलित रह सके। जैविक कीटनाशी जो हमारे देश में 400-500 प्रजाति के हैं उसका प्रयोग कृषि फसलों फलों एवं सब्जियों की खेती में की जानी चाहिए। भारत ही नहीं विश्व के सभी राष्ट्रों में जैविक खेती ही की जानी चाहिए ताकि इससे हजारों वर्षों तक कृषि भूमि की उर्वरता बनी रहे। वर्तमान समय में रासायनिक खादों एवं कीटनाशी का प्रयोग करने से मात्र 100 से 50 वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका का करोड़ों एकड़ कृषि भूमि बंजर हो गई। इससे बचने के लिए तो अनिवार्य रूप से यूएसए ही नहीं सभी राष्ट्र को जैविक खेती पर ही जोर देना चाहिए। भारत चीन जापान आदि देशों में 5000 वर्षों से लगातार जैविक खेती हो रही है, जिसके वजह से मृदा की उर्वरता जस की तस है। हमारे भारतवर्ष में पर्वत पठार मैदान समुद्र तटीय उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में कृषि कार्य की जाती है। जहाँ जलाभाव है उस क्षेत्र में जल प्रबंधन कर बढ़ती जनसंख्या को अनाज आपूर्ति के लिए कृषि क्षेत्र में भी वृद्धि की जानी चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र में कृषि भूमि में जैविक खाद जीवनाशी कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए। अगर इस जैविक खेती को बढ़ावा देंगे तो मेरा आर्थिक खर्च भी घटेगा और मुनाफा अधिक होगा। मुनाफा इसलिए अधिक होगा कि कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन तो ज़्यादा मुनाफा, पौधे फसल मानव जीव जंतु भी स्वस्थ, जैव विविधताओं में घटोतरी के बजाय बढ़ोतरी बहुत ही ज़्यादा होगा। इसलिए सभी राष्ट्रों को जैविक खेती को ही उच्च प्राथमिकता देना चाहिए। अगर भविष्य में जैविक खेती को प्रत्येक राष्ट्र उच्च प्राथमिकता देंगे तो जरूरत से ज़्यादा खाद्यान्न पदार्थ दुनिया का कृषि भूमि मानव जाति को देने में सक्षम हो सकेगा। सिर्फ मानव जाति का दृढ़ इच्छा शक्ति और काम करने पर जोर दे सकें। मानव जाति के अनुकूल ही जैविक खेती है

आप मानवों का ही पुनित कर्तव्य है कि इसे अपनाएं, अपने भी समृद्ध और हमारा पर्यावरण भी समृद्ध। सुकर्म कुकर्म के आधार पर आपको भविष्य में फल मिलेगा।

श्रोताओं, अभी हमारा पर्यावरण कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जैविक खेती की वर्तमान स्थिति और भविष्य में इसकी संभावनाओं पर विनय कुमार सिंह से वार्ता। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेशों को।

0: विज्ञापनों की बुकिंग
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग हेतु संपर्क करें 8700001424 पर
1: 8700001424।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोती सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के सभी प्रखंडों में आज से 3 दिवसीय सहयोग सहजन कल्याण शिविर का आयोजन। मंत्री सम्राट चौधरी कैमूर और सिवान के शिविरों में हुए शामिल। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले 22 जून तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम सेवा पर लगाया प्रतिबंध। मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए पूर्व मध्य रेलवे कर रहा है 30 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की 12 वर्ष पूरे होने पर आज से प्रदेश के सभी 534 प्रखंडों में 3 दिवसीय प्रखंड सहयोग सहजन कल्याण शिविर की शुरुआत हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कैमूर और सिवान जिले में आयोजित शिविर में शामिल हुए। कैमूर के भगवानपुर प्रखंड स्थित पहड़िया पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार आम लोगों की समस्याओं के समयबद्ध समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते एक महीने में सहयोग शिविर के माध्यम से 3,03,678 प्राप्त हुए आवेदनों में से 2,61,618 आवेदन निष्पादित किए जा चुके हैं, जो कुल प्राप्त आवेदनों का 90% है।
1: साथियों, हम लोगों ने शिविर कार्यक्रम शुरुआत किया है और लगभग एक महीना पूरने वाला है एक दो दिनों के अंदर, और इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 3,03,678 लोगों का आवेदन प्राप्त हुआ। 2,61,628 लोगों का आवेदन निष्पादित किया गया। कार्यक्रम का मकसद है जनता से संवाद, जनता के समस्या का हल करना।
0: उन्होंने कहा सहयोग शिविरों के माध्यम से लोगों की शिकायतों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित किया जा रहा है और निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएंगे।
1: जनता जो लगातार किसी भी तरह के परेशानी को झेल रहा हो, उन समस्या को समाप्त करना है। और इसके जो कानून है बड़ा स्पष्ट है साथियों, 10 दिन के अंदर यदि कोई आदेश पारित नहीं हुआ तो मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय से वैसे पदाधिकारी को पहला नोटिस दिया जाता है, दूसरा नोटिस जब 20 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है, और तीसरा नोटिस 25 दिन के बाद, और 30 दिन तक यदि किसी पदाधिकारी ने आदेश नहीं किया तो 31वें दिन वह स्वतः निलंबित कर दिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे बिहार में रहकर अपराध करते हैं तो इसे चुनौती माना जाएगा और 48 घंटे के भीतर जवाब दिया जाएगा।
1: कोई अपराधी हो उसको पहले दिन हाथ जोड़कर कहिए कि बिहार छोड़कर चले जाओ, तुम्हारी भलाई है, और बिहार नहीं छोड़ता है, और यदि अपराध करता है तो एक तरह से चैलेंज माना जाएगा, और यदि उसने चैलेंज किया तो उसको 48 घंटे में जवाब भी हमारी पुलिस देने का काम करेगी।
0: इससे पहले उन्होंने मां मुंडेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि और विकास की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लगभग 196 करोड़ रुपए की लागत से 60 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि मां मुंडेश्वरी धाम में रोपवे निर्माण की दिशा में जल्द पहल की जाएगी, साथ ही मंदिर परिसर के विकास और वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे को मां मुंडेश्वरी धाम से जोड़ने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आज सिवान के पचरुखी प्रखंड के पपौर पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में भी शामिल हुए। श्री चौधरी ने यहां 180 करोड़ रुपए की लागत वाली 38 विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी सहयोग शिविरों का आयोजन किया गया। यहां बड़ी संख्या में लोगों ने विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ ही योजनाओं के लिए आवेदन भी दिया। एक रिपोर्ट।
2: पटना जिले के सभी 23 प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में आज सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इन शिविरों में 25 विभागों के अलग अलग काउंटर लगाए गए, जहां आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया गया। जहानाबाद में जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडेय ने मोदनगंज प्रखंड के जयतीपुर कुरुआ सहित विभिन्न पंचायतों में आयोजित सहयोग शिविरों का निरीक्षण कर प्राप्त आवेदनों के निष्पादन और पोर्टल पर अपलोड की स्थिति की समीक्षा की और उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इधर सुपौल जिले के निर्मली प्रखंड स्थित बेला सिंगार मोती पंचायत में जिलाधिकारी सावन कुमार और पुलिस अधीक्षक शरत आरएस ने सहयोग शिविर के दौरान पात्र लाभुकों के बीच मौके पर ही जॉब कार्ड का वितरण किया। वहीं अरवल जिले के प्रभारी मंत्री दीपक प्रकाश ने सदर प्रखंड के सोनबरसा पंचायत में आयोजित शिविर के दौरान लोगों से संवाद किया और अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। शेखपुरा जिले के पंचायतों में आयोजित विभिन्न सहयोग शिविरों में प्रभारी मंत्री श्वेता गुप्ता, जिलाधिकारी शेखर आनंद तथा पुलिस अधीक्षक बलराम कुमार चौधरी सहित बड़ी संख्या में अधिकारियों ने भाग लिया। दूसरी तरफ सारण में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में आयोजित सहयोग शिविरों में लोगों की समस्याएं सुनी तथा इनके त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। उधर भागलपुर के अंबा पंचायत सहयोग शिविर में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने लोगों की शिकायतें सुनी और शिविर में प्राप्त अधिकांश आवेदनों का मौके पर ही निस्तारण किया। समाचार कक्ष से निधिश्री।
0: 18 जून तक चलने वाले इन शिविरों में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवेदन, पंजीकरण, सत्यापन, ई-केवाईसी तथा लाभ वितरण की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि यह प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम पर 30 जून तक संदेशों को संपादित करने की सुविधा भी बंद रहेगी। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर विशेष ध्यान देते हुए इस पुनर्परीक्षा के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया। पूर्व मध्य रेल कल होने वाली मद निषेध भर्ती परीक्षा को लेकर पाटलिपुत्र और पटना जंक्शन सहित विभिन्न स्टेशनों से 30 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करेगा। एडीजी रेल डॉक्टर कमल किशोर सिंह ने बताया कि परीक्षा में लगभग 5.5 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। परीक्षार्थियों के आवागमन सुविधा के लिए आज और कल विभिन्न रूटों पर विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। आज पाटलिपुत्र और पटना से किशनगंज, नरकटियागंज, अररिया, नवगछिया तथा भभुआ के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं कल भी पटना, गया, बक्सर, कियूल, राजगीर, बेतिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, औरंगाबाद, हाजीपुर तथा नवगछिया सहित विभिन्न स्टेशनों से 26 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: AIR at 90.
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज देर शाम 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचेंगे। श्री चौहान इस दौरान कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे कल पटना के नौबतपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान वे किसानों से संवाद करेंगे तथा कृषि भूमि संरक्षण, टिकाऊ खेती और किसानों की आय बढ़ाने से जुड़े विषयों पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश में तेजी से और समग्र विकास हुआ है, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ी है और विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर खुले हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 91,000 किलोमीटर से बढ़कर 146,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। वहीं मेट्रो रेल का नेटवर्क लगभग 250 किलोमीटर से बढ़कर लगभग 1,200 किलोमीटर हो गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनों से अधिक हो गई है। पश्चिम चंपारण के बेतिया अंचल कार्यालय के RTPS काउंटर पर कार्यरत क्लर्क राजकुमार मिश्रा को निगरानी विभाग की टीम ने 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। निगरानी DSP श्याम बाबू प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार क्लर्क ने शिकायतकर्ता से जमीन की जमाबंदी अनलॉक करने के लिए रिश्वत की मांग की थी, जिसके सत्यापन के बाद यह कार्रवाई की गई। राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मॉनसून की उत्तरी सीमा जमुई और मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है। हालांकि मॉनसून की सक्रियता में कमी आने से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।
3: राज्य के उत्तर, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों में वर्षा होने की संभावना है, जबकि शेष भाग शुष्क रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भागलपुर, कटिहार, किशनगंज एवं पूर्णिया जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 42.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अरवल जिले के मेहंदिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने 331 लीटर शराब की एक बड़ी खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। लखीसराय जिले के हलसी प्रखंड के कैदी गांव में कृषि उद्यमी सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को खाद, बीज, कृषि संसाधन और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराई जाएगी। पूर्वी चंपारण जिले में टीबी उन्मूलन अभियान को गति देने के लिए सभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को कफ अगेंस्ट टीबी ऐप के उपयोग का 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस डिजिटल ऐप की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित टीबी मरीजों की शीघ्र पहचान और स्क्रीनिंग आसान होगी, जिससे समय पर उपचार सुनिश्चित किया जा सकेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के सभी प्रखंडों में आज से 3 दिवसीय सहयोग सहजन कल्याण शिविर का आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कैमूर और सिवान के शिविरों में हुए शामिल। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले 22 जून तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम सेवा पर लगाया प्रतिबंध। मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए पूर्व मध्य रेलवे कर रहा है 30 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।

0: AIR at 90.
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है गया जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मवीर भारती।
2: गया जिले के खिजरसराय में बीते दिनों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय सूक्ष्म और लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने 170 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले प्रौद्योगिकी केंद्र का शिलान्यास किया। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने गया जी इस्लामपुर खिजरसराय पथ से देवगांव स्थित टेक्नोलॉजी सेंटर तक सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का भी शुभारम्भ किया। कार्यक्रम में बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार भी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी केंद्र क्षेत्र में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति देगा। उन्होंने कहा कि राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गया के प्रसिद्ध पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट के शिल्पकारों को बधाई देते हुए कहा कि जीआई टैग मिलने से बिहार की पारंपरिक कला और शिल्प को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य की लोक कला, हस्तशिल्प और हथकरघा परंपराएं हमारी अमूल्य धरोहर है तथा जीआई टैग से इन उत्पादों को कानूनी संरक्षण के साथ वैश्विक बाजार में नई प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। गया जी के शुभम कुमार ने जेईई एडवांस्ड 2026 परीक्षा में पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया। शुभम ने आईआईटी दिल्ली जोन के छात्र हैं। उन्होंने कुल 360 में से 330 अंक प्राप्त किए हैं। इससे पहले शुभम ने जेईई मेन 2026 में दोनों सेशन में भी 100% स्कोर किया था। शुभम ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के लिए उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी और रोजाना 8 घंटे अध्ययन करते थे। उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम और निरंतर मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। भारत सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत आयोजित युवा संगम के फेज 6 कार्यक्रम के तहत पंजाब से आए युवाओं के प्रतिनिधि मंडल ने गया की ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत से परिचय प्राप्त किया। प्रतिनिधि मंडल ने विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर परिसर तथा विष्णु पद मंदिर का भ्रमण किया और बिहार की सांस्कृतिक परंपराओं की जानकारी ली। इधर बीते दिनों संसदीय राजभाषा समिति की द्वितीय उप समिति के 10 सांसदों के एक शिष्टमंडल ने महाबोधि मंदिर का भ्रमण किया और मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जनजातीय गरिमा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जनजातीय समुदाय के लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तथा वनाधिकार अधिनियम के तहत भूमि के पट्टे वितरित किए गए। अपने संबोधन में श्री मांझी ने कहा कि आदिवासी समाज देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है और सरकार उनकी सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पिछले दिनों म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग एक दिवसीय दौरे पर बोधगया पहुंचे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर तथा बकरौर स्थित सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का शिष्टमंडल भी मौजूद रहा। भारत सरकार की ज्ञान भारतम परियोजना के अंतर्गत प्राचीन ज्ञान संपदा के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी तथा नव नालंदा विहार की विशेषज्ञ टीम ने गया जी स्थित एक निजी पुस्तकालय में संरक्षित दुर्लभ हस्तलिखित पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया। इस दौरान लगभग 700 वर्ष पुराने कई महत्वपूर्ण हस्तलिखित ग्रंथ मिले। विशेषज्ञों ने इन पांडुलिपियों को इतिहास, संस्कृति और शोध की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गया वन परमंडल द्वारा ब्रह्म वन में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने भाग लिया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का विस्तार चर्चा की गई। श्री कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बढ़ते प्रदूषण, जल संकट और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विभिन्न राष्ट्रीय अभियानों की सराहना करते हुए अधिक से अधिक वृक्षारोपण तथा जन जागरूकता पर बल दिया।
1: अभी आप सुन रहे थे गया जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता धर्मवीर भारती।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। कलाकार है शर्मिला गुप्ता। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में इनसे सबसे पहले सुनते हैं एक नाचारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। कलाकार थीं शर्मिला गुप्ता। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है रजनीगंधा फिल्म संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में आइए आपको सुनाते हैं अलका याग्निक और सुखविंदर सिंह की आवाज़ में फिल्म ताल का ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं अनंत बख्शी ने, संगीत दिया था ARRahman ने।

0: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronks. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronks owners starting at just Rs. 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
1: दोस्तों रजनीगंधा कार्यक्रम में चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको सुनाते हैं अब रोजा फिल्म से एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाज़ में ये गाना।

0: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
1: तिलका मांझी तो बहुत।
0: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
2: बख्शी जगबंधु तो
1: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: श्रोताओं अब आइए आपको सुनाते हैं रजनीगंधा कार्यक्रम में उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म राजा का ये गाना, जिसे लिखा था समीर ने और जिसे लयबद्ध किया था नदीम श्रवण ने।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: दोस्तों, रजनीगंधा कार्यक्रम में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कमलेश अवस्थी की आवाज़ में फिल्म प्यासा सावन का ये गाना।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: दोस्तों, रजनीकांत कार्यक्रम में भैया सुनते हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का ये गाना, जिसके बोल हैं जावेद अख्तर के लिखे हुए, संगीत है जतिन ललित का।

दोस्तों रजनीगंधा कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म लेकिन से ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं गुलजार ने, संगीत है हृदयनाथ मंगेशकर का।

श्रोताओं, इसी के साथ आइए सुनते हैं कच्चे धागे फिल्म से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में आज के रजनीगंधा कार्यक्रम का यह अंतिम गीत। इस गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत नुसरत फतेह अली खान का।

0: सुनेंगे समाचार संध्या और ठीक 9 बजे आप सुनेंगे इवनिंग न्यूज। 9:15 पर समय होगा उर्दू में खबरों का। कृपया अब समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए जो है समाचार संध्या। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियाम में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए

0: कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जाँच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैंड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में

0: सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेररिज्म एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है। उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है।

किलोमीटर से ज्यादा अपनी जमीनी सरहदों के तहफ्फुज़ के लिए आज भारत मुल्क को अवलियत देने के उसूल की रहनुमाई में अपनी मुअस्सर खारजा पॉलिसी पर अमल कर रहा है। साथ ही वो दिफा के शोबे में खुद कफील होने की जानिब पेशरफ कर रहा है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने कहा कि आसाम में खुली सरहद एक बड़ा मसला था और नरेंद्र मोदी हुकूमत ने इस मामले से निमटने के लिए तेजी के साथ काम किया है। एनडीए हुकूमत दहशतगर्दी को कतई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी के तई पूरी तरह पुरअज़्म है। नई दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मेहताब आलम। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने पेरिस मुआहदे की दफा 6.2 के तहत मुश्तरका क्रेडिटिंग मैकेनिज्म JCM पर अमल आवरी के जवाबित को इख्तियार किया है ताकि आबोहवा से मुतालिक कार्रवाई, जहरीली गैसों के अखराज में कमी और पायदार तरक्की की स्कीमों के मुतालिक तआवुन को फरोग दिया जा सके। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली की वजारत के मुताबिक अमल आवरी के जवाबित को क्रेडिटिंग के मुश्तरका मैकेनिज्म के लिए पिछले बरस दोनों मुल्कों के दरमियान तय पाए तआवुन के मुफाहमत नामे के बाद इस बरस 8 जून को इख्तियार किया गया। ये मैकेनिज्म तख़फीफ के प्रोजेक्टों में शराकत दारी का एक खाका फराहम करता है जिसकी रूह से भारत में जहरीली गैसों के अखराज में तख़फीफ या कतई ख़त्म किए जाने की बात की गई है, साथ ही पायदार तरक्की के लिए तआवुन की बात भी की गई है। ईरान ने आज कहा है कि अमेरिका के साथ जंग के खात्मे के मुआहदे के तहत इसराइल को लिबनान से बाहर निकलना होगा। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची ने कहा कि जनूबी लिबनान में इसराइल की जारी मौजूदगी अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाए मुफाहमत नामे की खिलाफ वर्जी होगी। अमेरिका ने वजाहत नहीं की है कि आया लिबनान कतई मुआहदे का हिस्सा है या नहीं। इधर इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने कल मुआहदे को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फैसला करार दिया था और कहा था कि इसराइल की अपनी तरजीहात हैं और वो जब तक ज़रूरी होगा उस वक्त तक लिबनान में एक बफर जोन में रहेगा। नीट UG 2026 का दोबारा इम्तहान 21 जून को होने वाला है और इससे कब सरकार ने ऑनलाइन मैसेजिंग और सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर इस महीने की 22 तारीख तक बंदिशें आयद की हैं। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। एक बयान में इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने कहा है कि मस्कूरा प्लेटफॉर्म को यह हिदायत भी दी गई है कि वो इस महीने की 30 तारीख तक पहले पोस्ट किए गए मैसेज को एडिट करने की सहूलत को गैर फ़ाल बनाए। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने पेशगोई की है कि कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गरज चमक, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं चलने के साथ बारिश का इम्कान है। इसी तरह के मौसमी हालात बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, साहिली आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अंडमान निकोबार जजायर में भी रहने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कल ज़ैली, हिमालयाई, मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में शुमाल मशरकी भारत, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के बाद हिस्सों में भी तेज़ बारिश का इम्कान है। भारत की फेंसिंग एसोसिएशन FAI ने शमशेर जनी की 26वीं सीनियर एशियाई चैम्पियनशिप 2026 के लिए भारत की सीनियर टीम का बाकायदा ऐलान कर दिया है। ये चैंपियनशिप 19 से 24 जून तक दिल्ली में मुनक़िद होगी। भारत इस बावकार कॉन्टीनेंटल मुकाबले की पहली मरतबा मेज़बानी करेगा जो कि एक तारीखी संग मील है। 30 से ज़्यादा ममालिक और 400 से ज़्यादा सरकर्दा खिलाड़ी इस मुकाबले में शिरकत करेंगे। भारत की 24 रुकनी टीम में 12 ख्वातीन और 12 मर्द शामिल हैं जिसकी क़्यादत भारत की पहली और वाहिद शमशेर जनी की ओलंपिक खिलाड़ी CA भवानी देवी करेंगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज रात अमरीका के शहर न्यूजर्सी में ग्रुप एक मुकाबले में फ्रांस और सेनेगल के दरमियान मैच होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। आखिर में ब्रिटेन की खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के शहर एविया में G7 सरबरा इजलास में शिरकत की। वो आज रात कनाडा और बरतानिया के वज़राए आज़म नीज़ मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ बाहमी मीटिंग भी करेंगे। वो कल अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। ज़राअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने मौजूदा खरीफ सीज़न के लिए तैयारियों का जायज़ा लेने की गरज से आला सतह की एक मीटिंग की। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स को जल्द ही नई जिंदगी अता की जाएगी और इस फोर्स में 1000 से ज़्यादा गोरखा जवानों को भर्ती किया जाएगा। ईरान ने

0: शर्मिंदा हो तो उसे माफ कर देना चाहिए। आप घर जाएं और अपने बीबी बच्चों के साथ रहें। जाओ करो, क्योंकि अपने बीच पैदा हुई दरार को खुद तुम खत्म कर सकते हो।
1: हाँ हाँ काजी साहब, अब मैं कभी गलती नहीं करूंगी। आप इत्मीनान रहें, अपनी गलतियों पे मैं खुद भी शर्मिंदा हूँ। मुन्नू के अब्बू, घर चलिए। ऐ अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी जिंदगी तबाह होने से बचा ली।
2: मालिक क्या कर रहे हैं?
3: देख नहीं रहा क्या? मैं दूध पी रहा हूँ।
2: वो तो ठीक है मालिक, पर मेरा काम कब होगा?
3: कौन सा काम?
2: भूल गए क्या मालिक?
3: तू क्या कहना चाह रहा है मंगलू? जा जल्दी जल्दी घर का काम खत्म कर, मुझे फिल्म देखने जाना है। तेरी मालकिन अब आती ही होगी टिकट लेकर।
2: पर मालिक, आपने मेरी फीस नहीं दी।
3: फीस? कौन सी फीस? क्या बक बक कर रहा है? देख मुझे गुस्सा आ जाएगा, जा जल्दी काम कर।
2: देखिए मालिक, अगर आप हमारी फीस नहीं देंगे तो मैं सारी बातें मालकिन से कह दूंगा।
3: क्या कहेगा?
2: हाँ हाँ, क्या कहेगा मालकिन से? मैं कह दूंगा कि वो सारा ड्रामा मालिक ने मुझे मिलाकर ही रचाया था।
3: अरे मंगलू सुन सुन, मेरे प्यारे मंगलू, तू ऐसा हरगिज नहीं करेगा। अरे मैं तो भूल गया था, क्या करूं, आजकल सोचने का मौका ही नहीं मिलता। आजा आजा, आज तेरा भी कर्ज चुका दूं, पर हाँ वादा याद रखना, फिर ऐसी बातों को जवान पर मत लाना।
2: जी अच्छा मालिक, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, और जब आप मेरी फीस दे देंगे तो मैं ऐसी गलती क्यों करूंगा? ये तो मैं अकलमंदी की कीमत मांग रहा हूं।
3: अच्छा अच्छा, चुप कर, आजा जल्दी कर, मालकिन आ जाएगी। ये ले 100 रुपये।
2: हाँ लीजिए मालिक।
3: और ये ले 50 रुपये।
2: हाँ।
3: और ये अब हो गया ना
2: मालिक? और वो 20 वाला क्या, आपने अपना कमीशन रख लिया
3: है?
1: हाय हाय हाय हाय, मैं लूट गई, बर्बाद हो गई। आप ये सब क्या कर रहे हैं? इतने सारे रुपए मंगलू को क्यों दिए जा रहे हैं? क्यों रे मंगलू, तो किस बात के पैसे मेरे भोले शोहर से ले रहा है?
2: ओ मालकिन, वो बात ये है कि मालिक ने कहा था।
3: मंगलू क्या कहा था मैंने?
2: तू मालकिन, मालिक आपको इतना मानते हैं, इतना मानते हैं कि आपके और मुन्नू के सदके गरीब, ताकि आपकी जान सलामत रहे और आपको गरीबों की दुआ भी।
1: अच्छा अच्छा, बहुत नेक काम कर रहे हैं। ठहर मंगलू, कुछ रुपया और ले जा, ये तुम खाने में दे आना।
3: नहीं बेगम, बस बस छोड़ दो, बहुत हो गया, अब फिर कभी नेकी कर लेना।
1: नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए, और फिर आप हमारी जान का सदका निकालेंगे तो क्या मैं आपकी जान का सदका नहीं निकाल सकती?
2: मालिक आप परेशान ना हो, नेकी आती है। जिस तरह आप मालकिन को मानते हैं उसी तरह मालकिन भी तो आपको चाहती हैं। खुदा आप दोनों की चाहत हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रखे, और मुझे मेरी अकलमंदी की कीमत मिलती रहे।

0: अजी सुनते हो, कहाँ मर गए?
1: आया बेगम,
2: बस मुन्नू को लोरियां सुना रहा था।
0: अजी तुम्हें कितनी बार कहा है कि लोरियां मत सुनाया करो, सिर्फ लोरी से ही काम चला लिया करो।
2: अच्छा बेगम, आइंदा से ऐसा ही करूँगा।
0: लेकिन चले कहाँ, मुन्नू तो सो गया, अब मुझे कौन सुलाएगा?
2: मैं हूँ ना, मैं सुलाऊंगा।
1: अखियन में नींदिया आजा आजा।
0: पागल हो गए हो क्या? मुझे गुस्सा आ जाएगा तो बहुत बुरा होगा। हाँ
2: नहीं जी, तुम्हें गुस्सा क्यों आने लगा? गुस्सा आए तुम्हारे आशिक के जहाँ को।
0: तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है।
2: नहीं जी, मैं कह रहा था तुम्हारे दुश्मन को।
0: पर मुझे गुस्सा आ रहा है।
2: पर क्यों बेगम?
0: तो फिर तुम हाथ चलाना शुरू करो, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा।
2: तो क्या मैं हाथ चलाऊं?
0: हाँ जी हाँ।
2: पर कहाँ से शुरू करूं?
0: ओफ ओफ, दिमाग खराब कर दिया। अरे भाई पंखा जरा जल्दी जल्दी चलाओ, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा।
2: नहीं नहीं बेगम, तुम गुस्सा मत किया करो, तुम्हारी सेहत के लिए बहुत ही बुरा होगा। और यूं भी तुम कितनी कमजोर होती जा रही हो, आज दूध नहीं पिया क्या?
0: अजी कहाँ हम गरीबों को दूध मिले, मुआ मंगलू न जाने कहाँ मर गया, आज भी नहीं आया, कमबख्त कल आए तो मैं उसकी खबर लेती।
2: नहीं बेगम, खुदा रहा अपना गुस्सा काबू कर दो, वो तो कल ही कहकर गया था कि 2 दिन नहीं आऊंगा।
0: पर क्यों?
2: तुम्हें मालूम नहीं, उसकी बीबी कहीं गायब हो गई है।
0: कमबख्ती की मारी की फितरत खराब होगी, तभी तो घर छोड़कर भाग गई।
2: बिल्कुल बजा फरमाया बेगम।
0: तुम चुपचाप पंखा हिलाते रहो, बीच में बकबक मत किया करो।
2: अच्छा बेगम, गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ।
0: अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं क्या बोल रही थी?
2: हाँ, तुम नौकर मंगलू की जाती जिंदगी के बारे में बोल रही थी।
0: हाँ, वो बड़ा ही बेवकूफ है, ऐसी बेगैरत बीवी को छोड़ क्यों नहीं देता, कहीं अच्छी जगह किसी शरीफ लड़की से शादी कर लेता।
2: बिल्कुल बेगम, जो बीबी शौहर की कदर न करे उसे रखने की क्या जरूरत है?
0: फिर तुमने बकबक की, मैंने कहा ना बीच में बकबक मत किया करो।
2: अच्छा जी, मैं मुंह बंद कर लेता हूँ।
0: और अब ज्यादा बकबक मत करना, मुझे नींद आ रही है, पता नहीं कहाँ से ऐसी गंदी आदत लगा आते हो।
2: अच्छा बेगम, अब तुम आराम से सो जाओ, मैं लोरी सुनाता हूँ।
1: आ जा रे आ जा।
0: अपना बेसुरा भिंपू बंद करते हो या मैं गुस्सा हो जाऊं?
2: नहीं बेगम, तुम गुस्सा मत होना, मैं ही बंद हो जाता हूँ, तुम खुद ही लोरी गालो।
0: ठीक है ठीक है, जरा तेजी से हाथ चलाओ।
2: बस ये लो बेगम।

हेलो, आप कौन बोल रही हैं जी? सलमा बेगम, माफ करें गलती हो गई, सलमा खातून। हाँ जी ठीक हैं। हाँ जी हाँ, अभी सो रही हैं। जी हाँ नहीं, थोड़ी तबीयत नासाज है इसलिए देर तक सो रही हैं जी। अच्छा, हाँ जी कह दूंगा। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।

0: हाजी किससे बातें कर रहे थे?
1: बेगम चाय हाजिर है।
0: मैंने पूछा तुम किससे बातें कर रहे थे?
1: हाजी सलमा बेगम का फोन आया था।
0: क्या कहा?
1: हाँ जी जी नहीं, सलमा खातून का फोन था।
0: फिर तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया?
1: जी मैं उठाना चाह रहा था पर उन्होंने ही मना कर दिया।
0: पर क्यों?
1: वो बात ऐसी है कि मैंने कह दिया कि तुम्हारी तबीयत नासाज है, रात पार्टी से देर से आना हुआ है।
0: वाह वाह क्या खूब।
1: क्या मैंने सही नहीं कहा?
0: पहली दफा अकल की बात की है तुमने।
1: जी जी शुक्रिया।
0: और हाँ क्या कहा सलमा ने?
1: जी वो कह रही थी कि रात में क्लब में जरूर मिले, साथ में अपने पेपर के लिए आर्टिकल वफादार बीवी जरूर लेकर आए।
0: ठीक है ज्यादा बकबक मत करो, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी काम करो। और हाँ मुन्नू का ख्याल रखना, मैं रात देर से आऊंगी। और हाँ घर से बाहर कहीं नहीं जाना।
1: अजी बेगम मेरी क्या मजाल जो नाफरमानी करूं। मालकिन मालकिन।
0: क्या है रे मंगलू, क्यों गज भाई की जबान से चीखता चला आ रहा है?
1: जी वो बात यह है मालकिन कि वो मालिक।
0: हाँ हाँ क्या हुआ मालिक को?
1: मालकिन पहले आप मेरी जान बख्शने का वादा करें।
0: क्या कोई मलहूस खबर लेकर आया है?
1: नहीं मालकिन, पर मालिक अब यहाँ नहीं आएंगे।
0: वो क्या रे मंगलू, मालिक ने कुछ कहा क्या?
1: मालिक ने तो कुछ नहीं कहा पर नई मालकिन ने सब कुछ कह दिया।
0: कौन नई मालकिन?
1: जी वही नई मालकिन, वो सलमा बीवी।
0: नई मालकिन और सलमा?
1: जी हाँ मालकिन, दोनों को एक होटल में जाते देखा तो मैं भी दौड़ा कि बात क्या है।
0: हाँ हाँ।
1: अंदर गया तो देखता हूँ एक कोने वाले टेबल पर दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे और मालकिन उन लोगों के सामने बेहतरीन से बेहतरीन और कीमती से कीमती। मालकिन अच्छा? हमने जरा मालिक को टोका तो वो कहने लगे कौन है बे?
0: क्या क्या ऐसा कहा उन्होंने?
1: हाँ मालकिन, और फिर दोनों ने विदेशी शराब के गिलास टकराए और हंस हंस कर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर पीने लगे। मैंने फिर कहा मालिक घर चले वरना मैं मालकिन से कह दूंगा।
0: हाँ?
1: वो कहने लगे कौन मालकिन, कैसी मालकिन?
0: ऐसा कहा उन्होंने?
1: आज मेरे ख्वाबों की मलिका मेरे पास ही है, फिर मैं दूसरों के बारे में क्यों सोचूं? जाओ अपना काम करो। और फिर सलमा बीबी ने कहा जाओ अपनी घमंडी मालकिन से कह देना अब वो अकेले ही जिंदगी गुजारे, जाओ जाकर कह देना आज शाम पुरानी मस्जिद में निकाह पढ़ाई जाएगी, आकर खुद से नजारा देख ले।
0: क्या कहा? या खुदा तौबा तौबा, ये क्या सुना दिया मंगलू तूने? मेरे बहते दूसरी शादी, किस बात की कमी थी मुझ में? या अल्लाह तू ही मदद कर मेरी, मैं अपने सारे तरीके बदल लूंगी, क्लब भी नहीं जाऊंगी, पर मुझे सौत से बचा ले।
1: मालकिन अब घर में रहने से क्या मिलेगा, अगर घर बर्बाद होने से बचाना चाहती हैं तो पुरानी मस्जिद जाएं।
0: हाय हाय हाय मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता मंगलू। ए मंगलू चल तू भी मेरे साथ चल।
1: हाँ चलिए।
0: हाय हाय हाय मेरी तो तकदीर ही फूट गई।
1: मालकिन जल्दी करें वरना आपके जाते जाते सारा काम तमाम न हो जाए और आप हाथ मलती रह जाए और उधर सलमा बीवी मालिक को लेकर।
0: हाँ जाहिल जैसी मनहूस बातें कर रहा है मन्नू, खुदा के वास्ते ऐसी बातें मुंह से मत निकाल। हाय हाय हाय मन्नू के अब्बू, आपने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी, मेरी दुनिया में आपके सिवा कौन है, अब मैं किससे गुस्सा करूंगी?
1: पता नहीं मालकिन, मालिक आपके होंगे या सलमा बीवी के।
0: उस चुड़ैल का नाम मत ले, उसने तो दोस्ती परवार किया है। अरे मम्मी मस्जिद तो आ गई पर मम्मी के अब्बा नजर नहीं आ रहे हैं।
1: सलमा बीवी ने तो पता यहीं का बताया था।
0: पर तेरे मालिक है कहाँ रे मम्मी? मम्मी के अब्बू।
1: मालकिन मालकिन वो देखें।
0: हाँ?
1: वो उस हुजरे में। मालकिन बस अब आप शुरू हो जाएं।
0: हाय हाय हाय मम्मी के अब्बू, आप मुझे तनहा छोड़कर यहाँ क्यों बैठे हैं? मैं भी आपके साथ हूँ, चलिए घर चलिए, मुन्नू आपकी राह देख रहा है, चलिए मुन्नू। आपकी राह देख रहा है मुन्नू के अब्बू। चलिए ना, अब गुस्सा थूक दे दे, मैं अब कभी आप पर हुकूमत नहीं करूंगी। सारा दिन आपकी खातिर तवाजा करूंगी, हर बात मानूंगी, बस आप घर चलें। देखिए मेरी नन्ही सी जान का क्या हाल है, अब मुझ में ताब नहीं है। आप नहीं चलेंगी तो मैं आपके कदमों में आज दम तोड़ दूंगी।
2: मंगलू, अपनी मालकिन से कह कि वो घर जाए, और काजी साहब आप तैयार रहें, अब सलमा भी आती ही होगी।
0: नहीं नहीं मुन्नू के अब्बू, ऐसा ना कहें, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मेरी सारी गलतियों को माफ करें और घर चलें। आज मैं आपको लिए बगैर नहीं जाऊंगी। और काजी साहब, खुदा के लिए आप मेरी जिंदगी को तबाह होने से बचाएं।
2: नहीं नहीं काजी साहब, आप इनकी बातों की परवाह न करें, बस कुछ देर और इंतजार करें, बस सलमा आती ही होगी।
1: नहीं, आप घर जाएं, क्योंकि जब ये अपने गुनाहों की माफी मांग रही हैं, खुदा रसूल और कुरान पाक का हवाला दे रही हैं, तो आप मान जाएं। जब इंसान अपनी गलतियों पर

0: अजी, सुनते हो?
1: क्या है?
0: हाय, आज मौसम कितना सुहाना है।
1: तो
0: तुम तो कुछ ध्यान ही नहीं देते हो।
1: किस पर?
0: मेरे ऊपर और किस पर?
1: आज क्या हो गया है तुम्हें?
0: क्यों, मुझे क्या होगा?
1: कैसी कैसी बातें कर रही हो? मौसम कितना सुहाना है, तुम मुझ पर ध्यान नहीं देते हो, ये सब क्या है?
0: आप समझी। सुनो जी, मैं तो ये कह रही थी कि मौसम कितना सुहाना है, इस मौसम में पार्क में घूमने में कितना मजा आएगा। अब तो बस वही घर, वही बच्चे, ओफो, मैं तो तंग आ गई हूँ।
1: अरे रे रे, इतनी सी बात से रूठ गई? अरे यही चाहती हो ना, आज पार्क में बैठकर पिकनिक मनाई जाए।
0: मेरे चाहने से क्या होगा भला, तुम्हें फुर्सत होगी तब तो। सारे ऑफिस का भार तो तुम्हारे सर पर है, एक वो है तुम्हारा बॉस, पता नहीं उसके घर में बीबी बच्चे हैं कि नहीं, मुझे तो उसके माथे का हेलीपैड देखकर ही जी जल जाता है।
1: अरे उस बेचारे को क्यों कोस रही हो रानी जी, चलो आज तुम्हारे मन मुताबिक पार्क में बैठकर पिकनिक ही मनाई जाए।
0: लेकिन तुम्हारा ऑफिस?
1: उसकी चिंता छोड़ो, आज छुट्टी का एप्लीकेशन भेजवा देता हूँ।
0: सच?
1: 100% सच।
0: लेकिन घर को मंगरू के भरोसे छोड़ना क्या ठीक होगा?
1: अरे हम लोग कोई 3-4 दिनों के लिए थोड़े ही जा रहे हैं, 3-4 घंटे की तो बात है। मोनू स्कूल गया है और मुन्ना तो सो रहा है, मोनू के स्कूल से लौटने तक हम लोग भी लौट आएंगे।
0: हाँ ये ठीक रहेगा, लेकिन वहाँ कुछ खाने पीने की चीजें तो होनी चाहिए ना, फिर इतने कम समय में।
1: इसकी चिंता मत करो देवी जी, बाजार से हम लोग कुछ फास्ट फूड खरीद लेंगे बस।
0: लेकिन मुन्ने को दवाई भी तो देनी है।
1: अरे भाई वो मंगरू दे देगा, मैं उसे बुलाकर समझा देता हूँ। अरे रानी जी अब तो रोनी सूरत पर जरा मुस्कान तो लाओ।
0: नटखट कहीं के।
1: ये हुई ना बात, अब जाओ तैयार होकर जल्दी से आ जाओ और मैं मंगरू को बुलाकर सारी बातें समझा देता हूँ।
0: अच्छा जाती हूँ।
1: मंगरू, अरे ओ मंगरू।
2: आया माली।
3: क्या बात है मालिक?
1: बाहर क्या कर रहा था? अरे
3: जाकर के कि मिलान कर रहा था मालिक।
1: मिलान कर रहा था? क्या मिलान कर रहा था?
3: जाकर के अपनी सूरत मालिक।
1: अरे किससे मिलान कर रहा था अपनी सूरत?
3: जाकर के बैल से मालिक।
1: अरे तो तू अपनी सूरत बैल से मिलान करने लगा रे?
3: जाकर के कि आप ही तो हरदम कहा करते थे ना कि मैं बिल्कुल बैल हूँ, इसलिए आज मैंने बाहर सड़क पर एक बैल देखा तो खड़ा होकर मिलान करने लगा।
1: ओ, तो ये बात है, तो क्या मैं झूठ कहा करता था रे मंगरू?
3: जाकर के बिल्कुल नहीं मालिक, आप और झूठ यह कैसे हो सकता है? लेकिन मालिक जाकर के बैल के माथे पर तो दो दो सिंह था, वो हमको नहीं है मालिक, इसका हमें बेहद अफसोस है।
1: अरे मंगरू तू चिंता मत कर, खूब मन लगाकर काम क्या कर, तुम्हारे माथे पर भी सींग हो जाएगा।
3: क्या सच मालिक?
1: हाँ रे एकदम सच। अच्छा सुन मंगरू।
3: हाँ मालिक।
1: तुम्हारी मालकिन और मैं बाजार जा रहे हैं, 3-4 घंटे में लौटेंगे।
3: हाँ ठीक।
1: क्या कहते हैं, मुन्ना तो सो रहा है, जागने पर उसे दवा पिला देना।
3: एकदम पिला दे,
1: समझ गया ना?
3: जी मालिक।
1: और मोनू स्कूल से आए ना तो उसे भी नाश्ता दे देना, समझ गया?
3: हाँ, जाकर के एकदम समझ गया मालिक।
1: तो हम लोग जाएं?
3: हाँ मालिक जाइए, शौक से जाइए।

0: वर्षों बाद खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला है। उधर देखो, अरे देखो ना,
1: देख रहा हूँ भाई।
0: पेड़ पर कबूतर का जोड़ा बिल्कुल हमारी तरह बैठा है, और वो उधर देखो, आकाश में उड़ते पक्षियों का झुंड।
1: हाँ, ये सब तो अच्छा लग रहा है देवी जी, लेकिन यही सब देखती रहोगी कि घर भी जाओगी? पता है पूरे 3.5 घंटे बीत चुके।
0: जी करता है समय बिल्कुल ठहर जाए और हम दोनों यूं ही प्यार भरी बातें करते रहे।
1: लेकिन देवी जी, हम लोग यूं ही प्यार भरी बातें करते रहे तो घर की हालत क्या होगी मालूम है? मुन्ना जग गया होगा तो रो रो कर आसमान सर पर उठा रहा होगा।
0: बस तुम्हें तो हमेशा वही घर, वही बच्चे, और कुछ सूझता है?
1: सूझता है देवी जी, सूझता है। ये सामने रखा फास्ट फूड सूझता है, जल्दी से इसे खत्म करो और घर का रास्ता नापो।
0: चलो घर चलते हैं।
1: लेकिन ये फास्ट फूड
0: मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा ये फास्ट फूड।
1: अरे रानी जी, बिना फास्ट फूड खाए फास्ट चलने की तैयारी कर रही हो? पहले इन्हें खत्म तो कर लो। पूरे 350 रुपए लग गए हैं इसमें।
0: 350 रुपए लग गए हैं तो अपने पेट में ठूस लो सबको।
1: पहले बोलने में मुंह में ताला लग गया था, खरीदते समय तो दांत निकाल रही थी और अब नखरे दिखा रही हो।
0: देखो देखो जी, मुझसे ऐसी वैसी बातें मत करो, कह देती हूँ।
1: जब द्वंद युद्ध ही करना था तो घर में ही बोलती, ये पार्क में पिकनिक मनाने का बहाना बनाने की क्या जरूरत थी? मौसम कितना अच्छा है, सुहाना है।
0: देखो देखो, मुझे चिढ़ाओ मत, घर चलना है तो चलो जल्दी से। मुझसे ही गलती हुई जो यहाँ आने के लिए कहा।
1: हाँ, और मुझसे ये गलती हुई कि मैंने तुम्हारे साथ आकर के अपने 350 रुपए का सदुपयोग किया। और अब चलो चलो ना, क्या निहार रही हो मेरा थोबड़ा?

0: मंगरू, अरे ओ मंगरू,
1: आया मालिक।
2: जाकर के क्या है मालिक?
0: क्या कर रहा था रे?
2: जाकर के मनु को स्नान करवा रहा था मालिक।
0: ये शाम को नहाना, क्या बात है रे?
2: ए, जाकर के बात ये है मालिक कि मनु जब स्कूल से आया ना तो उसका बदन एकदम गर्म था, इसलिए मैंने सोचा कि पानी डालने से ठंडा हो जाएगा।
0: अरे बेवकूफ, ये तू कैसे सोच लिया?
2: जाकर के लीजिए मालिक, आप इतनी सी बात नहीं समझते हैं। उस दिन अपनी लोहे वाली कुर्सी धूप पे रहने से गर्म हो गई थी ना, तो मैंने उस पर पानी डाल दिया था, बस पल भर में ठंडी हो गई।
0: अरे घोचू, मोनू को तो बुखार आ गया होगा और तूने उसे नहला दिया, कहाँ है वो?
2: जाकर के अपने बेड पर लेटा है मालिक।
3: हाय राम, ये क्या हो गया?
0: अरे क्या हुआ? क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो?
3: देखिए ना जी, मुन्ना आंखें नहीं खोल रहा, सांसें तेज चल रही है।
0: दिन में तो ठीक था। अरे मंगरू, मंगरू
1: आया मालिक।
2: जाकर के क्या है मालिक?
0: तूने इसे दवा पिलाई थी?
2: जाकर की बिल्कुल पिलाई थी, एक नहीं बल्कि 10 चम्मच पिलाई थी।
3: क्या 10 चम्मच पिलाई थी?
2: जाकर के हाँ मालकिन, मैंने सोचा एक एक चम्मच पिलाने से मुन्ना जल्दी ठीक नहीं होता, इसलिए मैंने 10 चम्मच पिला दी। ठीक किया ना मालकिन जाकर के?
3: अबे मालकिन के बच्चे।
0: मंगरू तू जा बर्तन साफ कर।
2: जाकर के जाता हूँ मालिक।
0: अब इस पर गुस्साने से क्या फायदा, कहीं भाग गया तो इतना सस्ता नौकर मिलना बहुत मुश्किल है।
3: अब बहस ही करते रहोगे कि डॉक्टर के यहाँ भी चलोगे।
0: अरे डॉक्टर के यहाँ कहाँ से जाऊं, सब पैसे तो फास्ट फूड में लग गए।
3: अच्छा चलो ना, मेरे पास कुछ पैसे हैं।
2: जाकर के मालिक, वो दूध वाला आया है पैसा मांगने।
0: ये लो एक और मुसीबत, जा मंगरू उसे ही भेज दे।
2: जाकर के जाता हूँ मालिक।
0: अब क्या होगा?
3: अरे होगा क्या, किसी बहाने टालो इसको।
4: प्रणाम मालिक।
0: आओ जनार्दन।
4: मालिक आज तो पैसे दे ही दीजिए, बड़ा जरूरी काम है।
0: जनार्दन महीने लगने में अभी 20 दिन बाकी है।
4: देखिए मालिक, ये बात अच्छी नहीं है, आप लोग दूसरे की मजबूरी नहीं समझते हैं, खाली रोज रोज परेशान करते हैं। दूध खाते समय कितना अच्छा लगता होगा और पैसे निकालने में दम फूलता है। कल आऊंगा तो पैसे दे दीजिएगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अभी मैं जाता हूँ, हराम का दूध आता है।
0: कहिए देवी जी, मौसम कितना सुहाना है।

श्रोताओं, अभी आपने क्रमशः नाटक सुना अक्लमंदी की कीमत और मौसम सुहाना है। इन नाटकों के लेखक थे क्रमशः मोहम्मद शफी अनवर और सत्यनारायण प्रकाश। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

0: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है अंगिका लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंजे बिहार।

0: सुख संगीत, मिट्टी की खुशबू, श्रम की सुगंध, इसी से सराबोर है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गुंजित बिहार। बिहार की लोक संस्कृति का संवाहक गुंजित बिहार, आकाशवाणी भागलपुर से नामी ग्रामीण लोक गायकों की मधुर गायकी के रस में आकाशवाणी भागलपुर का प्यार गुंजित बिहार।
1: नमस्कार, गुंजी बिहार के इस भागलपुर अंक में आपका हार्दिक स्वागत है।
2: जहाँ

0: भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं। पावस के काले काले मेघ इसके कुंतल केश हैं। भारत वंदन की भूमि है, भारत तर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए।
1: जय

सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामला धरती, जिसका गुण गाते कवि कलाकार साहित्यकार और शब्दकार थकती नहीं थी। देश की माटी, देश का जल, हवा देश का फल, सरस बनी प्रभु सरस बनी, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बनी प्रभु विमल बनी, धरती के श्रृंगार का, बंजर के उद्धार का।

वृक्षों का समूह ही भगवान का सर्वोत्तम मंदिर है। काश ये शांति हमारे आपके हृदय में भी आ जाती तो विश्व शांतिमय हो जाता।

यही कारण है कि प्रकृति हमें कभी सूखा, कभी बाढ़ और कभी प्रदूषित वायु देती है। ये हमारी भोग वासना का ही प्रतिफल है। यदि हम अपनी आवश्यकताओं का परिसीमन नहीं करेंगे तो हमें प्रकृति का अनुचित दोहन करना ही होगा। ओजोन की छतरियों में छेद, जहरीली वर्षा और प्राकृतिक चीजों का अभाव, ऐसा होगा कि हमारा जीवन दुभर हो जाए।

सृष्टि के विनाश का मार्ग प्रशस्त हो गया है। कहीं ऐसा न हो कि पृथ्वी का जल रस सूख जाए, औषधीय पौधे अपने प्रभाव से वंचित हो जाएं। इसलिए आइए, लाखों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि महर्षियों ने जो जीने का मार्ग बताया है, उस पर चलने का मन बनाएं।

लोक संगीत, मिट्टी की खुशबू, श्रम की सुगंध, इसी से सराबोर है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गूंजे बिहार। बिहार की लोक संस्कृति का संवाहक गूंजे बिहार, आकाशवाणी भागलपुर से प्रत्येक मंगलवार रात 10 बजे नामी गिरामी लोक गायकों की मधुर गायकी के रस में आकाशवाणी भागलपुर का प्यार गूंजे।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे अंगिका लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंजे बिहार। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है गीतों और गजलों पर आधारित हमारा कार्यक्रम भावगीत। दोस्तों, हर नगमा अपने भीतर एक कहानी छुपाए बैठा है। कभी बचपन की मासूमियत, कभी मोहब्बत की तड़प और कभी जुदाई का दर्द। आज का भावगीत कार्यक्रम इन्हीं एहसासों का संगम है। तो चलते हैं सबसे पहले आज अपने पहले गाने

और दोस्तों, ये गाना ना हमें उन दिनों की याद दिलाता है जब जिंदगी में कोई बोझ नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी। जिंदगी में कुछ था तो सिर्फ हमारा वो मासूमियत से भरा खेल, सुकून भरी दोपहरें, बेफिक्र शामें और माँ का बवाचल। दिल आज भी वही तलाशता है।

दोस्तों, ये सच में बिल्कुल जैसा मैंने आपको कहा, आपने काफ़ी महसूस किया होगा उस चीज़ को। अगर इन दिनों आप काफ़ी भागा दौड़ी कर रहे हैं, खासकर जैसा मौसम है उस हिसाब से, तो इंसान के लिए काम करना सच में बहुत मुश्किल हो गया है इन दिनों। लगातार चाहे वो सर्दी हो, सर्दी बहुत पड़ती है, गर्मी हो, गर्मी हद से ज़्यादा पड़ती है। और इन दिनों में ना बचपन हमें तो बहुत याद आता है, क्योंकि उस समय हम गर्मियों की छुट्टियाँ कितना इंजॉय किया करते थे, है ना। तो दिल बचपन के वो दिन तो ज़रूर ढूंढता है। हर किसी को अपने पुराने दिन याद आते हैं। जो लोग आज जॉब में हैं उन्हें वो दिन याद आते हैं जब वो कॉलेज लाइफ में रहे होंगे। जो लोग कॉलेज में भी हैं उन्हें वो अपने स्कूल टाइम के दिन याद आते हैं। और स्कूल वालों को तो बचपन के वो सारे दिन याद आते हैं हमेशा। इंसान की फितरत ही यही है कि उसके पास जो रहता है उससे ज़्यादा उसे चाहत उस चीज़ की होती है जो उसके पास उसे दोबारा मिल नहीं सकता या उससे बिछड़ गया हो। फिलहाल हम चलते हैं कार्यक्रम में आगे और बताते हैं कि भाई जो अगली गज़ल है ना, वो एक ऐसी गज़ल है जो हमें उस दर्दनाक सच्चाई से रूबरू कराती है, जहाँ मोहब्बत और मजबूरी आमने सामने खड़ी होती है। यह नगमा सुनते ही दिल में एक अजीब सी खिसक उठती है। क्या अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, तो आइए सुनते हैं, फिर बताइएगा।

सच्ची कहा है कि जब दिल टूट जाता है ना, तो लगता है कि हम क्यों हैं, कहाँ हैं, वजह क्या है। हम हर चीज़ में बस एक वजह ढूंढते हैं कि कोई तो कह दे हमसे कि शायद तुम्हारी गलती नहीं थी, यही होना था। आते हैं लोग कहने, वो हमारा दिल मानने के लिए तैयार नहीं होता है। दिल और दिमाग की जंग जारी रहती है। फिलहाल दोस्तों, हम बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर, और अगला गीत जो है ये आर डी बर्मन का संगीत और किशोर कुमार की आवाज़। ये गीत ना मोहब्बत की दर्द और जुदाई की आग को बयां करता है। ये नगमा सुनते ही दिल में वही कसक उठती है जो हर अधूरी मोहब्बत छोड़ जाती है। तो आइए देखते हैं आपके अंदर लगती है या नहीं ये जुदाई की चिंगारी।

ये तो सच कहा है कि मोहब्बत कक्के मारे कहीं के नहीं होते। फिलहाल दोस्तों, अब ना हम अपने कार्यक्रम के अंत की ओर आ गए हैं, लेकिन आपको ना उससे पहले एक ऐसे मतलब गज़ल की ओर ले जा रहे हैं जिसमें ना इंसान जो है उसके ऐसे एहसास हैं जिसमें उसे लगता है कि ये सारी दुनिया जो है उसका गप उठाने के लिए ही वो आया है। ऐसे एहसास बहुत खतरनाक होते हैं। मुझे लगता है कि हर इंसान के ज़िंदगी में वजह कुछ भी हो, कई बार हमारा एकेडमिक प्रेशर, कई बार वर्कलोड, कई बार दिल टूटना, कई बार डाइवोर्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी के हर किसी के साथ वो फेज़ आता है जब उसे लगता है कि शायद दुनिया का बोझ मैं ही उठा रहा हूँ। लेकिन उस वक्त यकीन मानिए, आपके अपनों का आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है, आपके दोस्तों का। तो अगर ऐसा कोई वक्त आए तो अपने दोस्तों का भरपूर साथ दीजिए, खासकर लड़के, क्योंकि हम लड़कों को ना कभी मनाना या समझाना सिखाया ही नहीं गया है। हम हर चीज़ को हंस के टाल देते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि आपके दोस्तों के साथ कोई ऐसी समस्या है या फिर ऐसा कोई मसला हो रखा है, तो आप ज़रूर उससे बातें करें, जी भर के उससे बातें करें। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों, बातें बंद, और सुनिए प्यारी सी गज़ल।

खुद की बर्बादी देखने के लिए ना अक्सर लोग हर हद से गुजर जाना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं वो चाहते हैं कि वो खुद को दिखाना चाहते हैं कि उनकी हद क्या है। मेरी सलाह है कि ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल ना करें। ज़िंदगी में हर इंसान को हर कुछ नहीं मिल सकता, पर ऐसा नहीं है कि आपको ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं मिलेगा। फिलहाल दोस्तों मैं बता दूं कि आज के भावगीत कार्यक्रम में सबसे पहले हमने सुना एक गाना फिल्म मौसम से लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में। उसके बाद हमने सुनी गज़ल उमराव जान फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में। फिर उसके बाद हमने अमर प्रेम से एक गीत सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। और ये आखिरी जो है ये इसे हमने लिया था फिल्म मेरे हुजूर से, और इसे आवाज़ दी थी मोहम्मद रफ़ी ने। मुझे लगता है कि शायद आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिलहाल दोस्तों अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं और बढ़ते हैं आगे। और आपको मैं बता दूं कि कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधा कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी न्यूज रेड बाय RS रघु। Prime Minister Narendra Modi today addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Mark in Arm campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudeva Kutumbakam, the world is one family.